0: வந்தே மாதரம்.
1: வந்தே மாதரம் சுஜலாம் சுஃபலாம் மலயஜ சீதலாம்.

नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक सम्मत 1948 के वैशाख मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 मई सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी समय सुन सकते हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: ड्यूरिंग द विजिट यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री

0: आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन भागीदारी से भाग्योदय लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन वार।

आज का चिंतन। आचार्य चाणक्य का कथन है, जीवन भर विद्यार्थी बने रहें, गुण सीखने में कभी भी आलस्य ना करें और दूसरों की गलतियों से भी सीखें। ये था आज का चिंतन। अब लीजिए सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस कान भाग 188। छह बजकर 45 मिनट पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा, इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। सात बजे भूले बिसरे गीत 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम सुनेगा। ये आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या पर। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान, इसके अंतर्गत सुनेगा शायर और सेवानिवृत्त राजेश रेड्डी से बातचीत। 11 बजे रंग तरंग।

महफिल और 1 बजे सुरीला सफर, 2 बजे सुनिए त्रिवेणी। 2:30 पर सुनेगा सदाबहार नगमे और 3 बजे सखी सहेली। सखी सहेली के अंतर्गत सुनेगा दोस्ती बिना जगसूना कहानी पद्मश्री भूरीबाई, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध चित्रकार भूरीबाई के बारे में सुनिएगा। और मुझे कुछ कहना है, किस्तों पर खरीदारी कितनी सही, और कुछ उपयोगी टिप्स

शाम 4 बजे हेलो फरमाइश, 5 बजे छाया गीत सुनेगा। शाम 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आपको फिर से बता दें, श्रृंखला सुनिएगा ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा, इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। 7 बजे पहुंची साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए, इसके अंतर्गत सुनिएगा गिटार वादक अनिकेत गुंदेवार से जयंत पात्रिकर की बातचीत भाग दूसरा। 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनिए नाटिका मंगल वरदान, लेखन कुंभेश श्रीवास्तव, निर्देशन है पुरुषोत्तम दारव्हेकर का। 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार। 10 बजे चाहेगी 10:30 पर ढलती जाए रात, और रात 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

शोक संतप्त तथा पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही हैं। ज्ञान के उदय होने पर भी चाहे मन का मोह न मिटे, किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकते। पुरोहित तथा कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर चिता सजाकर दाह संस्कार होता है और एक दिन शुभ घड़ी और लग्न देखकर राजसभा में मुनिवर वशिष्ठ मंत्रियों तथा महाजनों की उपस्थिति में युवराज भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देते हैं।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार और विविध भारती के स्टूडियो में एक बार फिर स्वागत कर रहे हैं अनूप जी आपका।
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: किलक की उठत धाय गिरत भूमि लट पटाए धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। श्री राम की महिमा का गान संत तुलसीदास ने जैसा किया है वैसा संभवतः अन्यत्र दुर्लभ है और श्री अनूप जलोटा अपने कंठ से इन रचनाओं को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। अपने सुरों से वे ऐसा चित्र खींचते हैं कि श्री राम बाल रूप में आंखों के सामने उपस्थित हो जाते हैं। अनूप जी हमें इस भक्ति रचना के बारे में बताइए जिसका हमने जिक्र किया।
2: ठुमक चलत रामचंद्र सबसे पहले पंडित डीबी पलुस्कर जी ने गाया था और ऐसा गाया था कि अब सब लोग उसे गाना चाहते हैं लेकिन वैसा कोई नहीं गा सकता क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से गाया जिस प्रेम से गाया वो उनका ही कमाल था, कोई नहीं कर सकता वैसा। उसके बाद उस भजन को मेरे पिताजी ने बहुत गाया

पंडित डीबी पलुस्कर जी ने गाया था और ऐसा गाया था कि अब सब लोग उसे गाना चाहते हैं, लेकिन वैसा कोई नहीं गा सकता, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से गाया, जिस प्रेम से गाया, वो उनका ही कमाल था, कोई नहीं कर सकता वैसा। उसके बाद उस भजन को मेरे पिताजी ने बहुत गाया और बहुत प्रसिद्ध किया, क्योंकि उन्होंने कुछ अपना रंग उसमें जोड़ा। उसके बाद लता मंगेशकर जी ने उसे रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छा गाया। मेरे पिताजी के साथ साथ मैंने भी गाना शुरू कर दिया था और मैंने भी कुछ अपने ढंग इसमें डाले हैं, जिससे कि ये भजन औरों से बेहतर तो नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा अलग जरूर लगता है।

भगवान राम की वो आयु है, वो अवस्था है कि अभी चलना सीख रहे हैं, चलने का प्रयास करते हैं, गिर जाते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं, कोई उठा देता है, फिर चलने लगते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो मेरा प्रयास है कि वो सुंदर दृश्य आपकी आंखों के सामने आ जाए।

0: और कोई कवि होता तो कह देता कि भगवान राम का चेहरा इतना सुंदर है जैसे सूर्य है या जैसे चंद्रमा है या जैसे गुलाब का फूल है, कमल का फूल है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही जो इस योग्य हो कि उसकी तुलना भगवान राम के चेहरे से हो। तो बहुत सोचा और अंत में ये कह दिया कि भगवान राम का चेहरा इतना सुंदर है जितना सुंदर भगवान राम का चेहरा है।
1: क्या बात।

0: बहुत सुंदर। सचमुच हम आंखें बंद करके बैठे थे और जिस तरह से आपने शब्द चित्र उकेरा, आंखों के सामने उपस्थित हो गए थे श्री राम जी। अनूप जी, श्री राम भजन आपने खूब गाए हैं और खूब श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से उनकी कौन सी महिमा गाने में ज्यादा आनंद आता है, उनके किस रूप को आप ज्यादा गाना पसंद करते हैं?
1: भगवान राम के कुछ ऐसे भक्त हुए हैं जैसे शबरी हैं, जैसे केवट हैं। तो केवट का एक भजन है, मैं बहुत गाता हूँ, तो यदि आप अनुमति दें तो मैं वो भजन आपको
0: सुनाऊं। बहुत अच्छा लगेगा।
1: राग गुजरी तोड़ी के रंग को लेकर इसे कंपोज किया गया है।

भगवान राम ने सोचा केवट का तो यही काम है, इसको कुछ मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन केवट बोला, प्रभु एक ही काम करने वाले दो आदमी आपस में लेन देन नहीं करते। भगवान राम ने पूछा, जरा स्पष्ट करो, कुछ बात समझ नहीं आई। केवट बोला, प्रभु आए मोरे।

0: करवट की नाव चढ़े।
1: ऐसी लागी लगन। आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।

के नजर देख लो इधर चूड़ियां भी तुम करो ना फिकर भूल ना जाना दिल को लेकर घायल मन है जख्मी जिगर जब से लड़ी तुमसे नजर

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम का गाया रेल का डब्बा फिल्म का गीत। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था और गुलाम मोहम्मद ने इस गीत की धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए पतिता फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, शब्दकार शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि अब ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य धान के लिए 2,441 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2,410 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल तथा मूंग के लिए 8,780 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के MSP बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह निर्णय अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने व कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के साथ साथ समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा। खरीफ फसलों की MSP वृद्धि पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई है। वाराणसी के किसान दुर्गेश ने बताया कि इससे किसानों को फायदा होगा।
2: जो केंद्र सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मूल्य जो घट रहा था हम किसानों को बड़ा ही घाटा हो रहा था, लेकिन MSP बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की आय में भी दुगुना होगी और इस सरकार के फैसले को हम बहुत ही सराहनापूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं।
1: पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने 12 मई की शाम को एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मितव्ययिता, ऊर्जा संरक्षण और उत्तरदायी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। मुख्यमंत्री ने सचिवालय एवं निदेशालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने, प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग तथा आवश्यकता आधारित विद्युत उपभोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए वहां के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ

0: कल परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
1: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। विद्यार्थी रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। संशोधित दरें आज से पूरे देश में लागू हो रही हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने से 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सबसे ज्यादा मौतें भदोही जिले में हुई हैं, जहां 15 लोगों की जान चली गई, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर मौतें बिजली गिरने, दीवार गिरने और धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि के कारण लोगों और वाहनों पर पेड़ गिरने से हुई हैं। कल राज्य के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल गया और विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे उखड़ने और पेड़ उखड़ जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत, कहा समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा यह निर्णय। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन बचत और अनावश्यक सोने की खरीद न करने के प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भी ऊर्जा संरक्षण पर दिया जोर, कहा ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। और प्रदेश में आंधी पानी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत, प्रभावित लोगों की मदद करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
3: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।

0: स्वागत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में आप सभी को नमस्कार। सविता सिंह का
1: मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे। मैं तुझे प्यार कर

प्रेम कहानी फिल्म का गीत लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे। इसे आनंद बख्शी ने लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तर्ज बनाई थी। लीजिए अब सुनिए जख्मी फिल्म का गीत। ये आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, गौहर कानपुरी की ये रचना है और बप्पी लहरी की तर्ज।

0: आजा गोरी चोरी चोरी
1: तो रहा नहीं जरे,
0: ए आजा गोरी चोरी चोरी
1: तो रहा नहीं जरे,
0: हाय रे हाय रे हाय रे।
2: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

कब मिलोगी। यह फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें थी और संगीतकार थे आर डी बर्मन। लीजिए आप सुनिए लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में हाथ की सफाई फिल्म का गीत। गीत गुलशन बाबरा का है, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

हाथ की सफाई फिल्म का गीत लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे। गीत गुलशन बाबरा का था, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश और साथियों की आवाजों में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स एट 20 लचीला नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने इसके लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई

0: भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्ति करता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। LNG के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और UAE की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
1: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
2: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
3: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
4: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने ये भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
7: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

0: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेकिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय

0: लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रूपये बढ़ाकर 2441 रूपये किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रूपये प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर्राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1 year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A two-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Sayyed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Shri Hasak Phuangkatkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Ninh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia, Dato Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan, and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
3: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 80th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: The Assam government

0: probe traces guest paper to Kerala, CBI nabs 5 suspects. The Statesman headlines, Vijay government wins confidence vote, gets backing of rebel AIADMK MLAs. The same newspaper also informs decision on Kerala CM will be announced today. Indian ships given priority pass in Strait of Hormuz, says Iran Deputy Foreign Minister, writes the Pioneer. US President Donald Trump given a red carpet welcome in China. The Asian Age carries his picture during the welcome ceremony. The paper headlines, Trump in China on 3-day visit to hold Xi talk on Iran war on trade. The Times of India writes, deal maker and dragon, Trump seeks to do business with Beijing. The Hindu, in its editorial title, Testing Troubles, writes that leaks and breaches have destroyed the National Testing Agency's credibility. The K. Radhakrishnan Committee, which was constituted to recommend reforms in the examination process, recommended restructuring of the NTA and creating strong institutional linkages with state and district authorities in order to produce a secure test administration apparatus. And finally, the Times of India writes, in a rare and emotional moment during proceedings linked to passive euthanasia, the Supreme Court praised the family of Harish Rana for donating his corneas and heart valve after permission was granted to withdraw life support, observing that his life continues in others through the noble act. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grain and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोजा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती हमलो नकल पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। शदीद बारिश और धूल भरी आंधी से उत्तर प्रदेश में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की गई है। और आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी आईपीएल सेंचुरी लगाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की मीटिंग से कबल आलिमी रहनुमा कौमी राजधानी पहुंच गए हैं। यहां कल जो रहनुमा पहुंचे उनमें ईरान के वजीर खारिजा सैयद अब्बास अराकची, थाईलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा सिहासक फुआंग केट केओ, क्यूबा के वजीर खारिजा ब्रूनो रोद्रिगेस पारिल्ला और वियतनाम की नायब वजीर खारिजा गुयेन मिन हांग शामिल हैं। दीगर रहनुमाओं में मलेशिया के वजीर खारिजा तातो सेरी उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन और मुत्तहिदा अरब अमारात के उमूर खारिजा के वजीर मुमलिकत खलीफा शाहीन अल मिरार भी शामिल हैं। तफसील हमारे नामा निकार से।
3: इजलास के दौरान ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए खारजा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलम उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के रुकन और शराकत दार ममालिक एक इजलास में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू ब्रिक्स एट द रेट 20 इस्तेहकाम इख्तरा ताउन और पायदारी होगा। इसके बाद आलमी हुक्मरानी और कसीर जहती निजाम में इसलाहत के मौजू पर एक और इजलास मुनद होगा। ब्रिक्स वज़राए खारजा की पिछली मीटिंग 26 सितंबर 2025 को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर हुई थी। इस मीटिंग की सदारत भारत ने की थी। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: असम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख

0: सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे ये साली जिंदगी है का फिल्म का गीत। इसे संगीत से संवारा था निशात खान ने।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा ब्रेक।

फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। इरशाद कामिल का लिखा हुआ रांझणा फिल्म का गीत आप

रंजनम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें थी जावेद अली, कीर्ति सरगाथिया, और इसे इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा था। ए आर रहमान ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लुटेरा फिल्म का गीत, मोनाली ठाकुर की आवाज।

मोनाली ठाकुर की आवाज में आप सुन रहे थे लुटेरा फिल्म का गीत अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और अमित त्रिवेदी का संगीत था। लीजिए चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए डंकी फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज। स्वानंद किरकिरे के बोल हैं प्रीतम का संगीत।

0: दंगी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, अरिजीत सिंह की आवाज थी, स्वानंद किरकिरे के बोल थे, प्रीतम का संगीत था।
1: सुनिए
2: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी,
3: कहिए ना,
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

ब्रेक के बाद आपको सुनवा रहे हैं हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर और राम लक्ष्मण की आवाजें हैं, देव कोहली के बोल हैं और राम लक्ष्मण का संगीत।

निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या का आज जन्म दिवस है। जन्म दिवस पर उन्हें विनम्र नमन। उनके बैनर तले बनी फिल्मों में मैंने प्यार किया, प्रेम रतन धन पायो, हम आपके हैं कौन, विवाह जैसे सुंदर सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों ने परिवारों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। आज का आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या पर। प्रेम रतन धन पायो फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुझाल की।

तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम एक था टाइगर।

सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें।

सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल

0: बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाजों में बॉर्डर टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था और विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि सुबह 6:45 पर और शाम 6:45 पर आप सुनते हैं संगीत सरिता कार्यक्रम। आज सुनिएगा श्रृंखला शाम 6:45 पर, श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी आज। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए कार्यक्रम आज सुनेंगे। इसके अंतर्गत गिटार वादक अनिकेत गुंदेवार से जयंत पात्रीकर की बातचीत सुनेगा भाग दूसरा होगा आज। प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले। अब चित्रलोक कार्यक्रम में ये गाना, ये बनवास फिल्म का गाना है। नाना पाटेकर, शान और मोंटी शर्मा की ये आवाज है।

0: वनवास फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, नाना पाटेकर, शान और मोंटी शर्मा की आवाजें थी। सुनील का ये गीत लिखा हुआ था और मोंटी शर्मा का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये संदेश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
4: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
5: दिमाग चार्ज कर अपना।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
5: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
6: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना?
5: बुद्धू सुधर जा।
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
6: RBI कहता है
2: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

कुचामन सिटी राजस्थान के जिला मुख्यालय में 14 मई 1943 को प्रसिद्ध निर्माता ताराचंद बड़जात्या के यहाँ जन्मे राजकुमार बड़जात्या। खनन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 1962 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन पिता के अनुरोध पर राजश्री प्रोडक्शंस में शामिल होने के लिए इन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी।

प्रोडक्शन एक फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी फिल्में शामिल रही हैं। राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्में मनोरंजन की मांग को हमेशा ही पूरी करती रही हैं। फिल्मों के वितरण और प्रोडक्शंस के कार्यों को पूरा पूरा सफलतापूर्वक अंजाम देना राजकुमार बड़जात्या ने आरंभ कर दिया था। एक निर्माता के रूप में 1994 से लेकर 2019 तक ये सक्रिय रहे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में पिया के घर से लेकर मैंने प्यार किया तक का सफर इन्होंने पूरा किया। सह निर्माता के रूप में 1979 की फिल्म नैया से ये जुड़े।

राजकुमार बड़जात्या एक फिल्मकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बड़जात्या परिवार का एक ऐसा सदस्य जिन्होंने फिल्म निर्माण और वितरण के अपने पारिवारिक व्यवसाय को बड़ी ही शिद्दत से निभाया। फिल्म निर्माण की अपनी विरासत में इन्होंने कई पारिवारिक मूल्यों के साथ ली हुई लोकप्रिय संगीतमय कलात्मक फिल्मों का निर्माण किया। एक फिल्मकार की संपत्ति और समाज में मान मर्यादा उनकी फिल्मों से ही पहचानी जाती है। राजकुमार बड़जात्या हिंदी सिनेमा जगत में बेहतरीन कथाओं, अभिनय, गीत संगीत के माध्यम से आम और खास दर्शकों को उनके पसंदीदा विषयों की सार्थक फिल्में देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। राजकुमार बड़जात्या सबसे पहले 1972 की फिल्म पिया का घर से जुड़े। बासु चटर्जी की लिखी और निर्देशित इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ताराचंद बड़जात्या।

राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म सौदागर, जिसके निर्देशक थे सुधेंदु रॉय, नूतन, अमिताभ बच्चन, पद्मा खन्ना अभिनीत। इस फिल्म के राजकुमार बड़जात्या सहयोगी निर्माता थे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने तपस्या फिल्म में काम किया, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म। इस फिल्म का निर्देशन अनिल गांगुली ने किया और निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या। ये फिल्म अनुभवी बांग्ला उपन्यासकार आशा पूर्णा देवी की कहानी पर आधारित थी। फिल्म में राखी, परीक्षित साहनी, ललिता पवार ने मुख्य भूमिकाएं अदा की थी। संगीत रविन्द्र जैन का था। इस फिल्म ने 1976 वर्ष की संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही राखी। सन 1980 में इसी फिल्म को तेलुगु भाषा में भी बनाया गया। सन 1976 की चितचोर, 1980 की एक बार कहो, 1984 की सारांश और 1989 की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में भी राजकुमार बड़जात्या एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में रहे।

हम आपके हैं कौन? राजकुमार बड़जात्या की एक निर्माता के रूप में आई संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसे इनके पुत्र सूरज बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया और राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के बैनर तले इसका निर्माण किया गया। माधुरी दीक्षित और सलमान खान अभिनीत 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई ये फिल्म वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने फिल्म वितरण के नए तरीकों को अख्तियार कर साफ सुथरी कहानी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग को हिंसक कहानी ली हुई फिल्मों के बीच बदलाव का एक सुकून भरा एहसास दिया। साथ ही साथ निर्माण और वितरण का तरीका भी बदला इस फिल्म ने। राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य अवार्ड्स में इस फिल्म की धूम रही। पहला

एच ए एच के बाद 1999 में आई निर्माता राजकुमार बड़जात्या की हम साथ साथ हैं। अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या, अपने परिवार के सदस्यों के साथ राजकुमार बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्माण किया। कहानी और निर्देशन सूरज बड़जात्या का था। ये फिल्म भी उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली और दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। समीक्षकों ने भी इसे खूब सराहा। ये फिल्म टोरंटो में 6 स्क्रीन्स पर कनाडा के सिनेमा घरों में प्रदर्शित होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे ये फिल्म अपनी निर्धारित प्रदर्शित तिथि से पहले ही रिलीज हो जाती, पर संगीतकार राम लक्ष्मण ने साउंड ट्रैक एल्बम की जांच के लिए समय लिया। पोस्ट प्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी के साथ साथ अन्य सभी काम पूरे होने के बाद आखिरकार 5 नवंबर 1999 को स्क्रीन्स पर ये फिल्म आई और छा

दो में फिल्म आई हम प्यार तुमसे कर बैठे। जुगल हंसराज और टीना राणा इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। 2003 की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ जो चितचोर पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म के कलाकार थे ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन। राशि प्रोडक्शंस की इस फिल्म

राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित सन 2006 में फिल्म आई विवाह। मुख्य कलाकार थे शाहिद कपूर और अमृता राव। रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें सगाई से लेकर शादी तक के सफर की कहानी को बखूबी प्रदर्शित किया गया था।

हम राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। 2010 में इन्होंने फिल्म बनाई इस लाइफ में, 2011 में लव यू मिस्टर कलाकार। ये फिल्में राजकुमार बड़जात्या की अन्य फिल्मों की तरह लोकप्रिय नहीं हुई।

एक विवाह ऐसा भी, इस नाम की फिल्म लेकर आए राजकुमार बड़जात्या साल 2008 में। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी ईशा कोप्पिकर, सोनू सूद और आलोक नाथ।

इसी क्रम में 2011 में सचिन पिलगांवकर के निर्देशन में राष्ट्रीय फिल्म्स की प्रसिद्ध फिल्म अक्षियों के झरोखों से की सीक्वल आई जाना पहचाना, जिसमें सचिन और रंजीता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिर 2015 में आई राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म। ये फिल्म उस वर्ष की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म थी प्रेम रतन धन।

सलमान खान, सोनम कपूर, नील नितिन मुकेश अभिनीत ये फिल्म दर्शकों के मापदंड पर खरी उतरी। 2019 में एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या अपनी आखिरी फिल्म लेकर आए हम चार। अभिषेक दीक्षित लिखित और निर्देशित इस फिल्म में चार नए चेहरों को पेश किया गया था। ये राजश्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की 58वीं फिल्म थी।

0: राजकुमार बड़जात्या का 21 फरवरी 2019 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने पारिवारिक फिल्मों की अपने परिवार की परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय दर्शकों के लिए अपनी जमीन से जुड़ी हुई कहानियों को, भावनाओं को, रिश्तों को बड़े ही जतन और प्यार से सिनेमा के पर्दे पर प्रदर्शित किया। इनकी फिल्में भारतीय सिनेमा इतिहास में बेहतरीन कथानकों और प्रस्तुतिकरण के लिए हमेशा ही चिन्हित जाएंगी। और जब भी दर्शक इन फिल्मों को देखेंगे, राजकुमार जी की कथा शैली और निर्माण कला के मुरीद हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म निर्माता राजकुमार बड़जात्या पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: संस्कृत भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल।
2: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक क्यों कहा।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर, जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी, जिसे पंकज उधास ने गाया, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर

0: और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
0: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
1: वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
0: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
1: इस यात्रा का तो कोई भारत में खास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से काम हुआ और हो रहा है।
0: बिल्कुल, अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
1: यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस जमाने में और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुनकर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाजें कानों को इतनी अच्छी लगती है, फिर फिल्म म्यूजिक की तो मैं बाद में बात करूंगा, जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में एक सुपरस्टार हुआ करते थे,
0: जिनकी
1: आवाज सुना, अनाउंसर, न्यूज रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते हैं, अच्छा अनाउंसर है आप, ये अनाउंसर का वो दर्जा था, मतलब वो पॉपुलरिटी थी। तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं आपको, लेकिन अगर अनाउंसर है आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर है। फिर रेडियो सिंगर होना, रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बात थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे, तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी इंद्र शुरू हुआ था।
0: जी,
1: तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक के रूप में, एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज ए प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये, कि आज मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक और उस जमाने का फिल्म म्यूजिक का तो कहना ही क्या।
0: जी,
1: तो जिनको, जिस चैनल को सुन सुन के, वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिनको सुन के हम लोग बड़े हुए विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा।
0: जी,
1: और न सिर्फ आऊंगा
0: बल्कि हेड करेंगे
1: उसका कार्यक्रम का, मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
0: वाह वाह वाह,
1: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ। कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस, एक से एक टेबल में क्या नाम लूं, और पूरी अच्छी टीम और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया भर का।
0: क्या बात है, मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युवाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युवाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताजा हो गई होंगी, मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताजा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युवाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युवाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी

0: जिस तरीके वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
1: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, आपको एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर का आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े दिग्गज,
1: बड़े दिग्गज लोग, नंदलाल शर्मा जी, फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहां पे,
0: गंगा प्रसाद जी,
1: हाँ हाँ, तो ये सब जो उसका मेयर था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
0: जी,
1: और
0: जी,
1: कर रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पर उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफर जो है आकाशवाणी का सफर, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफर शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
0: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए।
1: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है। हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गजल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो सांस्कृतिक मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए। तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला।
0: हम यहां एक पल के लिए रुकना चाहता हूं कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है इसके बारे में।
1: बिल्कुल सही है, वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं, तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर और मेरी पिताजी जो पोस्ट सेंट्रल ग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहां से निकल चुके थे नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही, हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का।
0: तो बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का एक बुनियाद का शहर रहा है, और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है। तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
1: ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसजी जा चुके थे।
0: ओके,
1: हाँ, और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, और एक सीखने का प्रोसेस जारी था
0: जी।
1: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का तुगलक,
0: क्या बात,
1: जो इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूं कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको क्रेडिट नहीं मिला, उनको काम नहीं मिला, जिसके हकदार थे वो दिलीप कुमार थे, वो
0: बिल्कुल
1: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ। तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायुग
0: जी,
1: ये सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे। तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा, जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप, दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक के कंसर्ट्स भी होते थे।
0: बिल्कुल, आज जयरंगम जैसी चीजें चल रही हैं, तो कैसा लगता है आपको?
1: नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं गया हूं उनके एक फेस्टिवल में, और जहां से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहां पे टीम लेकर के और प्लेज लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं और अच्छे ऑडियंस

0: भी आती है वहां पे और अच्छा चल रहा है मुझे
1: जी। और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस दौर की हम बात करें उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए, तो हाय रे वो दिन क्यों ना आए।
0: हाँ, अनुराधा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा
1: है ना ये गाना, सुन
0: मेरा पसंदीदा गाना है
1: बिल्कुल।

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था, जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुना हो?
0: बिल्कुल
1: हाँ। तो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें राज वाला वो भी था
0: जी,
1: शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे। फिल्म तो बाद में, थिएटर पहले देखते थे।
0: हाँ, वो टूरिस्ट मैप पर था।
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी।
1: तो राज मंदिर, जैम, पोलिविक्ट्री, ये सब उस वक्त फिल्में भी, मतलब आज कहीं नहीं इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती है।
0: बिल्कुल
1: है ना, इसने 100 दिन पूरे किए। तो उस वक्त वो जमाना था जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे, और फिल्मों का तो खैर दौर ही अलग था। हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे, ये सब भी होता था
0: जी, ये हुआ है, लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ है।
1: उपकार जैसी फिल्म हमने देखी थी,
0: वाह,
1: और कई फिल्में थी, और लंबी लंबी लाइनें, और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात, तो ये वो दौर देखा है हमने, जबकि थिएटर में जाकर फिल्म देखना, और स्कूल से भाग के भी देखना, और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, जी भारती चल रहा है, फिल्मी गाने, कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था, और म्यूजिक ही था
0: जी।
1: मैं

0: अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
1: अच्छा, क्योंकि गाना चलता था।
0: गाना चलता नहीं था
1: जी,
0: मैं गाता रहता
1: खुद गाते था।
0: तो वो घर वाले भी बार बार तो मुझे फिल्मी गानों का शौक
1: जी,
0: गुनगुनाने का शौक बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर धुने भी बनाने लगा और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वही का अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा था।
1: क्या बात है, और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका?
0: हाँ, मेरे कहने गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी और बड़े भाई साहब आज भी गायक हैं, वो सिखाते भी हैं। तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह से।
1: जी, रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया
1: जी।
0: वो एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था। हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प
1: जी।
0: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे जो दोस्त वो चला रहा है, हरी डायन उसका नाम है। तो हम चार लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था।
1: वाह वाह।
0: और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल की जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की और उस वक्त मैं ज्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है।
1: वाह वाह।
0: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
1: क्या बात है।
0: और एक नाटक जिसको बहुत ज्यादा जिसके हमने शोज किए, भूमिका, जिसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का ड्रामा कॉम्पिटिशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो बहुभाषी कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो। उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, सब मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था। मतलब आज इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं। होली हो, ईद हो और गणेशोत्सव हो, तो गणेशोत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेशोत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं।
1: वाह वाह।
0: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना, तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा। तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
1: गजब।
0: तो एक नाटक था शाम फड़के का, कॉमेडी, काका किशासा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी।
1: हा हा।
0: तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल,
1: क्या बात है,
0: इस नाम से किया। और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा।
1: वाह।
0: रविन्द्र मंच पर टिकटेड हाउसफुल वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब प्रसन्न किया और उसके बहुत शोज हुए।
1: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे, कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौरान?
0: नहीं, मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ।
1: अच्छा।
0: लेकिन उस दौरान में नहीं, वो जयपुर से जा चुके थे
1: उस दौर में जब आप
0: तो हमसे काफी से तो, लेकिन उनकी एमआर रोड से 5 बत्ती के पास में ही सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है
1: जी।
0: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी।
1: बिल्कुल।
0: फिर हमारे जो पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा।
1: जी जी बिल्कुल।
0: ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही।
1: हाँ।
0: तो लेकिन इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए वो स्टार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे।
1: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे, उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे, किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
0: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना, जब नाटक में तो नंबर वन हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे और उसके अलावा वहां पे जो आधा आधा घंटे के या एक एक घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपका नाम सुना होगा,
1: बिल्कुल,
0: गणपतलाल डांगी।
1: हाँ।
0: जिनका हवा महल में,
1: आज भी हवा महल में उनके नाटक ब्रॉडकास्ट होते हैं।

0: इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था, उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कपूरचंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था। उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहां काम किया और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
1: अच्छा,
0: ये 1980 की बात है।
1: क्या बात है,
0: 19 नवंबर, हाँ 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई। मैंने वहां ज्वाइन किया, 1 साल वहां काम किया।
1: तो वहां तब पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते थे।
0: हाँ हाँ हाँ, सब जगजीत सिंह, सुदर्शन फाकीर
1: जी,
0: इन लोगों के नाम से वो
1: ऐतिहासिक स्टेशन है जलंधर।
0: और वहाँ पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
1: बिल्कुल
0: पंजाबी राइटर्स, सोहन सिंह मीशा
1: जी,
0: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकादमी में अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पात्र, ये सब लोग वहाँ पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पात्र लुधियाना से, सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था एक तरह से,
1: बिल्कुल
0: पंजाब का जयपुर था वो। वहाँ बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत एक्टिव शहर था
1: जी।
0: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा और मेरे जो सीनियर थे वो सारे से पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहाँ पे।
1: हाँ।
0: हिंदी का प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहाँ पे, हिंदी का पैक्स था वहाँ पे मैं, लेकिन एक से प्रोग्राम पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं थी,
1: थी, थी।
0: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
1: कितने वक्त तक आप जलंधर में रहे?
0: 1 साल
1: जी। और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
0: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा
1: जी,
0: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहाँ पे
1: जी,
0: जो सुरजीत पात्र वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले, मेरे सब मिश्रा साहब को मिला।
1: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
0: हाँ, लिखना तो मेरा जयपुर में शुरू हो चुका था
1: जी।
0: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे सब कुछ। और गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलन में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था या पहचान या आत्मविश्वास जैसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलवाला था उस वक्त गीतों के राजकुमार,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनके नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे,
1: सुबह तो, तक लोग सुनते हाँ, थे और सबसे तो, लास्ट में उन्हें हाँ, पढ़वाया जाता
0: जी। और मेरा वो शुरुआती दौर था
1: जी,
0: तो नीरज जी थे वहां पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आके डाल दी।
1: अरे
0: तो ये एक आशीर्वाद था जो मुझे
1: आप बात है। क्या वो गीत याद है आपको?
0: हाँ, जो वो मेरे काफी पढ़ाई दर उधर
1: जी,
0: तरन्नुम में सुना हूँ।
1: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल स्वागत है।

0: और ये नवगीत का शुरू हुआ था तो ये
1: जी
0: अंत देख, बात क्या करे कोई हाफती हवाओं से,
1: हाफती हवाओं से क्या बात है।

0: क्या बात है, क्या बात है। जाहिर है कि इस रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा होगा।
1: वो बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना, तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला होता।
0: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद, तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
1: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चला थे सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना
0: मिनिमम।
1: हमारे नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सलून में भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर संडे आता था, पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी, वो दौर था तो हो सकता है कि आज तो खैर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं, पिताजी का एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे।
0: तो आपके जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा लगा है कि नहीं, क्या चल रहा है मन में,
1: बस वो उनको सूचना जरूर हो। और हमारे संवाद माँ से होता था
0: जी,
1: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना साहब, नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ पिताजी से घर में जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश होते थे, लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे।
0: वो दौर भी ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटी है कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है और आपकी कामयाबी उन्हें कितना खुशी दी।
1: बिल्कुल, ये पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया
0: जी,
1: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूं या कलाकार कला के क्षेत्र में हूं तो वो पिता के संस्कार है। पिता ने जो माहौल दिया बचपन से, अगर आप देखें तो कुमार गंधर, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खां, कोई नाम लीजिए, कोई नाम लीजिए, जिनको हमने बचपन में आगे बैठे
0: सामने देखा,
1: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
0: बापरे,
1: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है और उनके साथ उठे बैठे कई लोग हमारे घर आए, है ना। तो ये माहौल पिताजी ने दिया, उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए। संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा। तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूं तो हमारी कॉलोनी में जो मैंने कहा ना, वो एक मिनी भारत था वो
0: जी जी,
1: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था। मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से एक
0: ये तो नया खुलासा है हमारे लिए,
1: मतलब खेलना कूदना ये तो सही है ही, सभी बच्चे करते सब कुछ, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना, किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को तंग करना या मस्ती करना
0: जी,
1: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
0: शिकायत आती थी,
1: शिकायत मेरे पास आती थी कि आज से ये क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
0: अच्छा, क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
1: हाँ, मेरे बड़े भाई साहब थे, मैं नंबर दो था
0: जी,
1: तो पहले नाम ऐसे ही रखे जाते घर में,
0: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
1: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू
0: जी,
1: तो वो छोटू की शिकायत
0: रोज आ रही है,
1: मतलब हर दूसरे दिन या हर दिन जो है वो, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था। तो वो माँ थी
0: प्रोटेक्शन
1: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात, और पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो, तो वो मैं
0: उसका जिक्र ना ही करें।
1: तो ये एक अच्छा बचपन बीता, और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि वो दिन में नौकरी करना, आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच।
0: अरे
1: घर में वो पारिवारिक रिश्ते के पिता नहीं थे वो,
0: वो अपनी दुनिया उनकी,
1: वो अपनी दुनिया थी उनके, बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र मंच, वहां से लौटे, खाना खाए, सो गए। तो बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था, तो वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली।
0: क्या बात है। और क्या आपकी रचनाओं में माँ झलकती हैं?
1: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजारा, तो वो लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास मतलब सरकारी कर्मचारी जो है,
0: बिल्कुल
1: उनकी कॉलोनी थी तो अमुजी में, तो लेकिन बहुत खुशहाल, मतलब मैं अपने आपको अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक

0: रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं। मैं खुशहाल हूँ।
1: क्या बात है, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहाँ आशीर्वाद फिल्म का गाना सुनते हैं। हाँ,
0: एकता बचपन
1: क्योंकि ये जो बचपन के जो दिन है उनके नाम ये गाना।
0: बिल्कुल जी।

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखक की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहां पर जयपुर में?
1: जी, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं निजी मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक तो तारा प्रकाश जोशी
0: जी
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य फिल्मों में भी लिखा
0: जी जी, जी।
1: मेहंदी रंग लाई,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों के।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी आईएएस ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, मेरे गुरु तुम्हें देखते से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो हो हो, क्या अद्भुत है। हा? क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: क्या बात है।
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
0: क्या बात है, क्या बात
1: नहीं सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके साथ
0: गजब, बैठता गजब, था। गजब, ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: और हरिराम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही है।
1: तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, सिर्फ मंचीय नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था। मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म सहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नवर सिंह जी भी, मैं हिंदी में तो एमए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारे अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों का वो नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी,
0: उसमें
1: तो सारे अखबार आते थे। मतलब अखबार तो थे ही थे,
0: पत्रिकाएं भी,
1: ट्रिब्यून, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, तो ये मैं इन सबको चार्ट जाया करता था वहां जाकर के, घंटों घंटों वहीं बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए, और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, मेरे दो तीन घंटे निकल जाते थे
0: जी, जी।
1: तो बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था, तो ये सब चीजें जो है संस्कार में। और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे और बड़े थे, बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूं हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहां हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनता, तो आम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे। तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में, दो पंक्तियों में जो
0: सारी बात कह देने
1: का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित

किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गजलें कहने लगा। अमरूर लोगों को हमारे जो साथ में थे, अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजार साहब, तो ये सब लोग सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है, अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गजल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, मौलवी साहब आते थे मुझे।

0: नहीं, यूनुस के लिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए वो कि गीत से मेरी यात्रा शुरू हो चुकी थी
1: जी।
0: गजल की विधा को मैंने
1: अपने शिफ्ट किया है।
0: हाँ, गजल में शिफ्ट किया और उसको अपना लिया। मैंने कहा ना, हम उम्र लोगों के साथ उठते बैठते सुनते सुनाते उनसे आश्वस्ति मिली। और एक हमारे बुजुर्ग होते थे, कहना चाहिए टोंक में रहते थे वो, तो वो भी आया करते थे और शाम को बैठे और एक दूसरे को सुनना सुनाना। तो उन्होंने जब ये पहली बार सुनी गजल तो वो भी चौंक गए, मतलब क्योंकि ये ट्रेडिशनल ढंग की गजल नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल।
0: तो बोले ये, और ये जो जिसको कि गजल की जबान में या उर्दू में टेक्निकली रदीफ कहते हैं, है ना, जो गजल के भक्ति के आखिर में आती है और वो रिपीट होती है हर शेर में, से डरता है। अब ये रदीफ जो है वो अनसुनी सी थी, मतलब
1: और कभी इससे पहले मैंने सुना नहीं है।
0: तो खुद
1: मुश्किल भी है, मुश्किल
0: भी है, तो उसको निभा ले जाना। और उसके तो वो भी हैरान हुए कि ये यार तुम ये रदीफ ले आए और उसको तुमने शेर भी कह दिए और अच्छे शेर कह दिए सब कुछ है। और फिर वो शेर उसने तो मुझे मतलब सबसे ज्यादा प्यार दिया, पहचान दी। तो वो गजल मैं अगर कहें तो
1: जरूर सर, अरे स्वागत है बिल्कुल।
0: जो पंकज जी ने गाई उसकी धुन अलग है,
1: आपकी धुन
0: जो मैं सुनाता हूँ और जिसने मुझे मुशायरों में पहचान दी वो ये गजल।
1: स्वागत।
0: यहाँ हर शख्स हर

0: सृष्टि का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, यहाँ हर शख। और ये खास शेर है वो
1: स्वागत है।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना। यूनुस, इसकी एक शेर और सुनाता हूँ।
1: जरूर सर।
0: ये बच्चे वाला जो शेर है उससे सबसे ज्यादा प्यार मिला
1: जी।
0: ये शेर भी उतना ही सच्चा है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि हर जिंदगी में हर इंसान की कभी न कभी वो पल आता है कि वो ऊपर वाले से पनाह मांगता है।
1: बिल्कुल।
0: बहुत हो गया, अब नहीं रहा, अब नहीं
1: जी,
0: बहुत हो गया
1: जी,
0: है ना, ये आता है
1: सबके साथ, सबके साथ।
0: अरबपति खरबपति भी खुदकुशी करते हैं, उनके पास क्या नहीं होता
1: जी,
0: लेकिन वो जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आते हैं कि वो बस बहुत हो गया। लेकिन जब ऐसा पल आता है
1: तो आप कहते हैं अजब ये जिंदगी की,
0: तो हमारे क्या रिएक्शन होते हैं।
1: वाह।
0: और कोरोना में तो हमने देखा ही कैसे जान बचाते रहते हम लोग। तो ये शहर है जो सबका सच है।
1: वाह।
0: अमीर हो गरीब सबका, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान, रिहाई

0: है और रिहा होने से डरता है, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता है।
1: क्या बात है सर, हम बहुत खुश नसीब है कि विविध भारती के स्टूडियो में आप मौजूद हैं और आपसे ये सुन रहे हैं।
0: मेरी खुशनसीबी, थैंक यू।
1: ये अद्भुत गजल है और हजारों बार तो हमने पंकज जी की आवाज में सुनी होगी, पर जब आपके साथ काम करते थे तब तो हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की कि आपसे ये गजल सुननी है। आज ये मौका आया है, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अनमोल पल है। रेडियो की तरफ वापस लौटते हैं और जलंधर में एक साल बिताने के बाद आप कहाँ गए?
0: उसके बाद मैं अपने होम टाउन जयपुर।
1: जी जी,
0: मेरे साथ ये भी रहा और अभी भी होता है कि मैं शुरू से होम सिक रहा, मतलब
1: जी जी बिल्कुल,
0: जलंधर मुझे कोई कमी नहीं थी। हाँ। बहुत अच्छा शहर था, बहुत प्यारे लोग थे,
1: अच्छा खान पान था,
0: अच्छा मौसम था, सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था, केंद्र भी बहुत अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, मैं खुश था, सब भी था। लेकिन एक होम सिकनेस होती कि वो मुझे अपने शहर जाना है वापिस, तो मतलब मैंने रिक्वेस्ट की और वो सुन ली गई, मान ली गई और मैं वापिस अपने शहर में आ गया जयपुर। मैं वहाँ फिर वापिस शायद 5 साल जयपुर रहा।
1: तो ये बहुत ही अनमोल पल रहे होंगे कि जिस स्टेशन में आप बतौर कैजुअल आया करते थे, युवाड़ी करते थे, वहाँ आपकी वापसी होती है और अब आप प्रोड्यूसर बनते हैं।
0: और ये भी कमाल थी कि जिस केंद्र में मैं कैजुअल के लिए ऑडिशन देने गया हूँ,
1: है ना? बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो वही मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तौर पर एंटर हो रहा हूँ और ज्वाइनिंग के लिए सब कुछ है। तो और क्या टीम थी वो वहाँ पे,
1: बिल्कुल
0: क्रीम, बड़े लोग, अच्छे लोग, तो उनके साथ मिलना जुलना हुआ और वो एक अलग अनुभव था। और मुझे जयपुर, मेरा क्रिएटिव जैसा विविध भारती मेरा बाद में हुआ,
1: जी जी,
0: इसमें मैंने प्रोडक्शन कम किए लेकिन प्रोग्राम में उनकी परिकल्पना, उनको संवारना या उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सब रहा। मेरा क्रिएटिव जो बेस्ट था
1: जी
0: वो जयपुर में था।
1: जी जी जी,
0: नाटक लिखना, कंपोज करना,
1: बिल्कुल
0: प्रोड्यूस करना, इंटरव्यूज करना, वो सब जयपुर हुआ। मतलब वो मेरी जो पूरी जलंधर में मुझे आकाशवाणी की जानकारी सब हुई, सब कुछ हुआ। एक लिमिटेड काम था, ये हिंदी का कार्यक्रम अधिकारी था, हिंदी का लिमिटेड उसमें सब कुछ था। जयपुर मेरे पूरा खुला मंच था,
1: बिल्कुल। और फिर आप उस शहर में पले बड़े थे,
0: पला बड़ा
1: सब
0: था,
1: जानते थे।
0: और फिर उसने मुझे, मैंने कहा ना कि मेरे क्रिएटिविटी के सारे पहलू उसमें खुले
1: जी,
0: मेरा लेखक भी खुला, मेरा संगीतकार भी खुला, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी तो तब था ही था, सब कुछ, नाटक लिखे, निर्देशित किए, संगीतबद्ध किए, म्यूजिकल शो पूरा उसमें हुआ, अभी तो नहीं हो रहा है। उस वक्त जयपुर में और जयपुर के पूरे आकाशवाणी के दौर था कि वो आमंत्रित श्रोताओं के सामने
1: कॉन्सर्ट होते थे,
0: कॉन्सर्ट होते थे
1: जी,
0: तो उसके लिए भी मतलब तैयार करना, उसके लिए प्लेज लिखना, तैयार करना, गाने लिखना, ये सब जयपुर में हुआ।
1: वाह क्या बात है। तो उस दौर में कौन से नाटक आपने रेडियो के लिए बनाए, उनको कुछ याद कीजिए थोड़ा सा।
0: उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, राजेंद्र यादव की कहानी थी टूटना,
1: जी जी,
0: उसका हमने रेडियो नाटक रूपांतर किया।
1: वाह।
0: और उसका प्ले किया और बहुत पसंद किया गया लोगों के द्वारा। और ये तो हुआ टूटना, एक ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी थी अंधा सूरज,
1: क्या बात है,
0: उसका किया।
1: वाह।
0: और इसके अलावा गीत गोविंद,
1: अरे गजब,
0: ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात जो उपलब्धि थी, यूनुस, उसके आश्चर्य की बात यह थी कि गीत गोविंद का आपने ड्रामेटिक नाट्य रूपांतर किया। वो नाट्य रूपांतर तो हिंदी में हुआ, मतलब उसका कैरेक्टर जो राधा कृष्ण सखी ये सब कुछ है, गीत गोविंद मूल रूप से संस्कृत में है,
1: बिल्कुल
0: जयदेव जी का
1: जी।
0: हाँ, उसके जो गाने हैं, उसके जो गीत हैं, वो मूल संस्कृत में, मूल संस्कृत में मैंने कंपोज किए, रिकॉर्ड किए, गाए
1: संस्कृत में,
0: संस्कृत में,
1: अरे बाप,
0: तो गाने संस्कृत में है
1: जी,
0: और उनके इंटरप्रिटेशन करते हुए उनको एक तरह से समझाने के लिए मैंने कैरेक्टराइजेशन किया कि लोग, आम लोग समझ चुके इस गाने का क्या मतलब है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन कैरेक्टर है, ये राधा का दुख है, ये कृष्ण की पुकार है।
1: हाँ,
0: है ये
1: तो बहुत मुश्किल काम है।
0: हम बहुत मुश्किल, तो वो एक मेरे लिए वो मील का पत्थर जैसा हुआ और लोगों को भी हैरानी हुई कि लोगों ने उसका आनंद भी लिया और समझे भी, मतलब ये गोविंद को ओरिजिनल, क्योंकि मैं ये समझता था कि उससे पहले गीत गोविंद रघुनाथ पाणी ग्रही उड़ीसा में
1: जी जी,
0: तो वो करते रहे और वो बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, सब कुछ है, लोग गायक के रूप में वो पॉपुलर है वो वहाँ पे।

0: लेकिन मैंने उनका सुना है और वो तो कमाल है, मतलब वो भी, लेकिन मुझे ये लगा कि उनमें वो लोक तत्व ज्यादा है, मतलब कि बंगाल या उड़िया का, उनके कम्पोजिशन में भी, उनके गाने में भी। तो मैंने उसको बाकायदा एक, क्योंकि फिल्म का तो फाई था, तो सुगम संगीत के तौर पर मैंने उसको कंपोज किया और गाने वाले भी बहुत अच्छे थे, तो उस तरह से वो एक लोगों को लगे कि ये गाना है।
1: क्या बात है, ये तो बहुत मुश्किल है।
0: तो वो गाने के तौर पर वो हुआ और लोगों ने सुना और पसंद किया।
1: वाह वाह वाह, तो ये पूरा जयपुर का दौर था।
0: अभिज्ञान शाकुंतल
1: जी
0: कालिदास का, तो वो मैंने रेडियो एडॉप्टेशन किया, वो किया, तो ये दो बड़ी थे।
1: क्या शानदार बातें हैं, ये तो बहुत मुश्किल वाले काम आपने वहाँ किए। इसके अलावा वहाँ विकल्प भी चलता रहा आपका? हाँ, नाट्य समूह
0: नहीं, विकल्प ये दौर मेरा पहला था, मतलब रेडियो आने से पहले का था।
1: हाँ,
0: विकल्प अपने ढंग से चलता रहा, वो बीच बीच हम

0: वहां विकल्प भी चलता रहा आपका नाट्य समूह?
1: नहीं, विकल्प ये दौर मेरा पहला था, मतलब रेडियो आने से पहले का था।
0: हाँ,
1: विकल्प अपने ढंग से चलता रहा, वो बीच बीच हम लोग करते भी रहे, लेकिन वो सक्रियता नहीं रही
0: जी, क्योंकि हाँ, रेडियो में आप पूरी तरह से अपने आपने अपने आप को झोंक दिया था।
1: मतलब बीच बीच में हम करते रहे नाटक, लेकिन वो जो 10 साल लगातार जो किया वो रेडियो में आने से पहले किया
0: जी, और बाद में फिर आप पूरी तरह से रेडियो में व्यस्त हो गए।
1: हाँ, उसके बाद भी एक नाटक आला अफसर मुद्रा राक्षस का
0: जी जी,
1: जो गोगोल का उन्होंने
0: इंस्पेक्टर जनरल
1: नौटंकी की शैली में उन्होंने किया, तो उसका भी मैंने कंपोजिशन भी किया, डायरेक्शन भी किया, प्रूव किया।
0: तो संगीत जो है वो एक तो घर से मिला था, लेकिन ये एक लगातार चलता रहा कि कंपोजिशन भी करनी है आपको लगातार?
1: हाँ, इसमें करनी है वाला बात नहीं था,
0: जरूरत
1: से होता था
0: जी जी,
1: अंदर से होता था कि ये मैं करूं, मतलब मेरी कोई मजबूरी नहीं थी
0: बिल्कुल।
1: हाँ, कि कोई और भी कर सकता था, लेकिन अंदर से कहीं होता था कि ये
0: मैं करता।
1: हाँ, इसको जैसे लिखने का जो है वो अंदर से ही होता है
0: बिल्कुल।
1: आप तो उसी तरह से वो चाहे वो गीत गोविंद हो, जयपुर में उस वक्त 5 बड़े संगीतकार थे
0: जी,
1: जो स्टाफ में थे, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर भी एक पोस्ट होती है
0: बिल्कुल, होती
1: है ना, जानते होंगे। और विविध भारती में नहीं है वो, लेकिन मेन सेंटर्स पे बॉम्बे में हो या किसी भी सेंटर में कंपोजर की भी पोस्ट होती है
0: जी जी।
1: उस वक्त 4 मौजूद थे और वो 4 लोग भी परेशान होते थे कि हम हैं और ये आदमी कंपोज कर रहा है। तो उसमें मेरे उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे गिरीश चतुर्वेदी
0: जी जी,
1: तो उन्होंने मुझे छूट दी
0: कि नहीं नहीं आप करो।
1: हाँ, मतलब वरना ये होता नहीं है ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो 4 कंपोजर हैं, आप स्टाफ में मौजूद हैं,
0: तो आप उनको,
1: और उस वक्त आप अपना काम खुद कर रहे हैं
0: जी जी,
1: तो उन्होंने छूट दी और उसकी वजह से वो एज ए कंपोजर भी रेडियो पर, मतलब फिर गाने भी हुए, सब कुछ हुआ।
0: हाँ,
1: एक बार मैं बताऊं कि जब महादेव वर्मा का गीत,
0: हाँ,
1: मैं नीर भरी दुख की बदली,
0: हाँ,
1: और ये सब, मतलब ये सब हमने किए, मतलब जो एक वो जैसे यहाँ मंथन शुरू हुआ था ना
0: जी,
1: हमने 10 मिनट का प्रोग्राम होता था
0: जी,
1: एक अच्छा गीत या अच्छी कविता,
0: हाँ,
1: किसी के लेके उसको कोई पढ़ता था और गीत होता था, कोई गाता था,
0: वाह,
1: तो उस तरह का एक प्रोग्राम तो वो मैं करता था, तो उसमें महादेव वर्मा का और भारती जी का, फिर बाद में गालिब की गजलें कंपोज की,
0: क्या बात है,
1: कबीर को कंपोज किया,
0: फिर
1: स्टेज किया, स्टेज शो किया, तो ये सब मेरे संगीतकार के रूप में मेरे
0: ये चीजें चलती रही लगातार। ये बहुत अद्भुत बात है, ये एक अलग पूरा एक पक्ष है। हमारे सुनने वालों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि आप मंच पर तो गाते ही हैं, लेकिन आप अपने निजी जीवन में भी कुछ फिल्मी गीतों से आपका बड़ा लगाव है जो आप गुनगुनाते हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुनाइए।
1: चलिए मैं गुनगुना देता हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
0: वाह वाह,

ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधन, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: हाँ सुनो
1: ओ?
0: जरा राइमा की फीस भरने चले जाना, आज आखिरी तारीख है।
1: देखो मैं 3 बजे नहीं जा पाऊंगा।
0: क्यों क्यों नहीं जा सकते?
1: वो मैं
0: साहब बताओ क्या करना है 3 बजे?
1: करना नहीं है, सुनना है।
0: ऐसा क्या सुनना है तुम्हें? पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ।
1: वो मुझे सखी सहेली सुनना है।
0: तुम्हें सखी सहेली सुनना है? पर वो तो सखियों का प्रोग्राम है।
1: सखियां ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
2: सखी सहेली।
1: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी।

0: काशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

हम सुन रहे थे मनमस्त कबीरा एल्बम से बैजू मंगेशकर की आवाज में और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए, कबीर के द्वारा लिखे गए इन प्यारे से बोलों को। आइए चलते हैं, सुनते हैं अगला नगमा आज के कार्यक्रम रंग तरंग में। ये सुंदर सा नगमा लिया है हमने कागा एल्बम से, मिर्जा डेयर टू लव इस एल्बम का नाम है। कौशिकी चक्रवर्ती ने इसे गाया है, गुलजार ने इसे लिखा है और शंकर एहसान लॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

द खजाना कॉन्सर्ट अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के द्वारा संगीतबद्ध किए गए और गाए गए इस प्यारे से नगमे को हम सुन रहे थे। आइए सुनते हैं अगला नगमा कार्यक्रम रंग तरंग में, बड़ा खूबसूरत सा है, जिसे लिया गया है यूनिक जगजीत सिंह एल्बम से, जिसे जगजीत सिंह ने गाया है और उन्होंने ही संगीतबद्ध किया है। सहरी भोपाली ने इसे लिखा है।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं एहसास एल्बम से तलत अजीज के द्वारा संगीतबद्ध किए गए और गाए गए सईद राही के द्वारा लिखे गए इस प्यारे से नज्म को, और सुनते हैं ये प्यारी सी नज्म।

यार का दीदार चाहिए एल्बम से रामशंकर की आवाज में असीर भुरानपुरी ने इसे लिखा और दीपक पंडित ने इसे संगीतबद्ध किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, अनफॉरगेटेबल ट्रीट, आशा भोसले एल्बम से। आशा भोसले की आवाज में फानी बदायूनी ने इसे लिखा और जयदेव ने इसे संगीतबद्ध किया।

हम सुन रहे थे एल्बम प्यार का पहला खत से ये नगमा जगजीत सिंह की आवाज में जगजीत सिंह के ही संगीत के साथ। इसे लिखा है हस्ती ने।

0: हम सुन रहे थे गुलदस्ता अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज में उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए अमीर हनीफ के बोलों को। यहीं पर समाप्त होता है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।
2: टीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: करता है।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
0: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
0: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
0: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
0: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
0: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
0: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी
0: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
0: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
0: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
0: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
0: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वह सांस भी ठीक से ले पाएगा।
2: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS लें। लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
0: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें। उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
2: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं।
2: जी
0: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी।
2: जी
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
2: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ।

0: तो मारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ।
0: कमली और सोमारू चले घास

0: थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी, हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
3: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
0: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
4: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए।

0: बरसात और मेंढक। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
3: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।

0: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
1: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। और ये अंडे, तो अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
0: आजा खेलते हैं।
1: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
2: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
1: अच्छा वो क्या?
2: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
1: हाँ
3: दूसरा क्या?
2: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
0: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कडियाल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस

0: करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: देखो चुन्नीलाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है। हाँ। ये देखो, पास आ जाओ, आगे हो, आगे हो। ये देखो, यदि इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते।
3: हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
4: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
3: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
4: जी।
1: अच्छा,
0: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
5: उधर से दुश्मन आ रहे हैं।

0: रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूं।
1: ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैन गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे।

0: आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
2: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
2: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
0: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: निर्देशक राजकुमार बड़जात्या जी के द्वारा बनाया गया है। ये है प्रेम रतन धन पायो फिल्म से। अन्वेषा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर, शबाब सबरी और साथियों की आवाज में इरशाद कामिल के बोल हैं और हिमेश रेशमिया का संगीत है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।
2: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। बड़ी खूबसूरती से हमने सजाया है इसे सुंदर गीतों के साथ में। राजकुमार बड़जात्या के द्वारा बनाई गई फिल्मों के गीतों को हम सुन रहे हैं। अगला गीत हम सुनेंगे पिया का घर फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

विवाह फिल्म का यह गीत उदित नारायण श्रेया घोषाल की आवाज में रविन्द्र जैन के बोल और रविन्द्र जैन के संगीत के साथ हम सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल में। और इसी कार्यक्रम में हम सुनने वाले हैं एक और बहुत खूबसूरत सा नगमा जिसे गाया है शान ने और श्रेया घोषाल ने रविन्द्र जैन के बोल और उनके ही संगीत के साथ, एक विवाह ऐसा भी इस फिल्म से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस शुरू होगा थोड़ी ही देर के बाद।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि जैन और आज की इबारत मैं आप सबके साथ पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ श्रोताओं ने इस इबारत को ना पढ़ा हो क्योंकि वो फेसबुक पर ना हो। तो चलिए चलते हैं उस इबारत की ओर कि हमने जो इबारत आपको भेजी है वो ऐसी है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमने कहा कि डॉन पकड़ में नहीं आता। तभी उसी ने मुस्कुराकर कहा, आपके पैर बहुत हसीन हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत में तारीफ भी एक कला होती है, लेकिन मोहब्बत की दुनिया इतनी सीधी कहाँ है। कभी तो ये चाकू सी है, हाथ कट जाता है, कभी दिल को भी चोट लगती है। कई बार लोग पूछते हैं कि कितने अपने मिले और कितने पराए, या कहूं कि जिंदगी की भीड़ में जब लोग पूछते हैं कितने आदमी थे, तब अपने अपने हौसले गिनकर बता देती हूं। और कभी जीवन में लोग नहीं मिलते हैं और देते हैं तारीख पे तारीख, पर हम तो हर हाल में खुश हैं। मुस्कुराकर कहते हैं कि हम जहां खड़े हो जाते हैं भीड़ लग जाती है, जीतते जाते हैं पर डर लगता है मृत्यु से। तो मन कहता है, बाबू मुशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी तो रस्सी भी है। अपनों की याद में आंसू बहने नहीं देते, क्योंकि कोई ये ना कह दे कि सुनो आई हेट टीयर्स, पर जीवन की दौड़ अभी बाकी है, क्योंकि पिक्चर कहां खत्म हुई है अभी, तो ये जो पिक्चर है वो शुरू हो चुकी है। बहुत सारे संदेश हमारे पास आ चुके हैं और कई लोग संदेश भेज रहे हैं, उसकी कतार बड़ी है, बड़ी लंबी सी कतार हमारे बीच में है। तो हमारे जो श्रोताओं ने बहुत सारे गाने भी आपने चुने हैं, और सच बताऊं तो कई गीत ऐसे हैं जो हमारी प्लेलिस्ट से जो हमने बनाई है आपके लिए उससे मिल रहे हैं। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज की इबारत में कई फिल्मों के डायलॉग शामिल हैं। अब ऐसे दृश्यों में जो कलाकार दिख रहे हैं उन पर गीत होंगे, या ये डायलॉग इबारत को पूरा करने के उद्देश्य से डाला गया है, या इन डायलॉग्स में जो शब्द हैं उनको आधार बनाकर गीतों को प्रस्तुत होगा। ये बात वो समझ नहीं पा रहे, उनका कहना है कि बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं। पर हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज कुछ नए तरीके से आपने विचार व्यक्त किए हैं, फिल्म के संवाद गीतों का सफर लगता है और साथ साथ चलेगा तो क्या होता है। देखिए, सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की, बहुत अच्छी बात लिखी है कि सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती, पर वह तो अनुभव करना होता है, भोजन में नमक की तरह जो दिखाई नहीं देता पर होता है। कितनी बढ़िया गंभीर बात हमारे श्रोता ने लिखी है। और हमारे श्रोता ने एक और श्रोता ने एक बात लिखी है कि आज की इबारत केवल फिल्मी संवादों का संग्रह नहीं है, बल्कि सिनेमा के चश्मे से जीवन को देखने का एक खूबसूरत नजरिया है। यह याद दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इंसान को अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए, क्योंकि जीवन की कहानी का सुखांत होना अभी बाकी है। बिल्कुल सही हमारे श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत में कई फिल्मों के डायलॉग शामिल किया गया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिन फिल्मों के डायलॉग शामिल किए गए हैं उन्हीं फिल्मों के गाने शायद बज सकते हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैंने जिन फिल्मों के संवादों को पहचाना उनके नाम है दो बदन, डॉन, पाकीज़ा, वक्त, शोले, दामनी, खाली अमर, प्रेम, आनंद, मेरे महबूब। हो सकता है और भी कुछ फिल्मों के डायलॉग हो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बिल्कुल सही, जितना आपने पहचाना उतना अच्छा है। कितनी बढ़िया बात है कि आप पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, आज की इबारत पर यह शब्द हो सकते हैं, मोहब्बत, डॉन, हसीन, पैर, तारीफ, बहुत सारे शब्दों का इन्होंने जिक्र किया है। और वो लिखते हैं कि मोहब्बत की तारीफों का अजीब असर होता है, कभी मुस्कान दे जाती है, कभी दिल भी असर होता है, कुछ जज्बात आंखों तक आकर ठहर जाते हैं और कुछ आंसू बनकर बिना बहे ही दिल में उतर जाते हैं। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, सही बात है, क्यों करते हैं पता नहीं। पर हमारे श्रोता लिखते हैं, इबारत के अनुरूप संभावित गाने हैं, मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन, और उन्होंने कई सारे गानों के बारे में लिखा है। तो चलिए हम देखते हैं इनमें से क्या हो सकता है। हाँ, आपने एक बात तो बहुत अच्छी पकड़ी, हमारे एक श्रोता ने तो 15-20 गाने भेज दिए हैं चुनकर, कितनी बढ़िया बात है ना, कितनी मेहनत की होगी, उसके लिए आपको धन्यवाद है। हमारे श्रोता लिखते हैं, हम जहां से खड़े हो जाएं लाइन वहीं से शुरू होती है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है।

0: आज इबादत में मुझे, इबारत में मुझे फिल्म डॉन फिल्म नजर आ रही है। अच्छा, आपकी पसंद भी आपने हमको बता दी, बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यह भी एक खूबसूरत इत्तेफाक है कि हमसे हमारे इश्क का अंदाज पूछ रहे हैं और हमने भी हंसकर कह दिया रिश्तों में तुम्हारे बाप लगते हैं। तभी पलट कर उन्होंने सादगी से कहा, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। उस पर समझ में आया मोहब्बत में तकरार भी एक अलग सुकून देती है, मगर इस दिल की दहलीज का कदम रखना इतना आसान नहीं है। यहां कभी जज्बात कांच की तरह चुभते हैं, कभी खामोशी भी जान ले लेती है। क्या खूबसूरत बातें आपने लिखी हैं। और जब इतना अच्छा लिखा है तो हम चलते हैं हमारे उसी इबारत की तरफ। और हमने सबसे पहले लिखा है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमने कह दिया डॉन को पकड़ना, डॉन पकड़ में नहीं आता। और इसी इबारत से अगर हम समझ लें तो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये गीत यहां पर होने वाला है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूं। ये तो मैं मेरी पसंद से आपको एक गीत सुनवा दूंगी और हो सकता है यही मांग आपकी भी हो, लेकिन एक बात बताइए कि ये जो फिल्मों के डायलॉग्स होते हैं, इनमें से ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसे बहुतायत में आप प्रयोग किया करते हैं? जल्दी से मुझे संदेश भेजिएगा, ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसका उपयोग आप बहुत बार करते हैं और लोग उस बात पर, उस आपके उस अंदाज पर खुश भी हो जाते हैं। तो जल्दी से ये बात हमें बताएं। और हमारे श्रोताओं ने इस बारे में लिखा है, एक एक अलग अलग बातें लिखी हुई हैं डायलॉग्स के बारे में लिखा है। तो चलिए हम ये गीत बढ़िया सा सुनते हैं, और अगर आपकी पसंद का है तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आपकी और हमारी पसंद मिलती है।
1: अरे तुम का क्या बताई भैया, हमरा हाल का है।
2: बताए दे,
1: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

0: कि हम कभी आ गए कभी वहां गए कभी आ गए कभी वहां गए कभी इधर भागे कभी इधर।
1: अरे तुम काका बताई भैया हमरा हाल का है।
0: बताए दे
1: निकले थे हम हलवा खाने मुंह ही जल गया है।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए।

0: गीत जो हम सुन रहे थे वो था डॉन फिल्म से। इसके पहले भी हमने डॉन फिल्म की एक झलक सुनी। ऐसे कई गीत आए पान बनारस के ऊपर, जिनमें से सबसे बेहतरीन हम सबका पसंदीदा गीत है किशोर कुमार का गाया हुआ अनजान फिल्म अनजान के बड़े प्यारे से बोल हैं। कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीतबद्ध किया है और हम बात कर रहे हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में बड़े सुंदर से गीतों के बारे में और बड़े सुंदर से डायलॉग्स के बारे में। तो आपने हमें बहुत सारे डायलॉग्स भेजे हैं, कौन कौन से आपको पसंद हैं या क्या आप सुनना पसंद करते हैं तो या कहना पसंद करते हैं और कहते कहते लोगों को रिझा लेते हैं। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उन दिनों की याद आती है जब टेप रिकॉर्डर में मनपसंद फिल्मों के डायलॉग सुना करते थे और दोहराते थे। और हमारे श्रोता ने हमें बड़ी अच्छी सलाह लिखी है कि आपके पांव बहुत हसीन है रे दीवानो, मुझे पहचानो मैं हूं डॉन, जीवन जीने का भी बहुत हसीन बनाया जा सकता है, बस आपको आत्मविश्वास होना चाहिए और हम सफर का साथ हमेशा बहुत मायने रखता है। हमारे श्रोता लिखते हैं, आई हेट टियर पुष्पा, इन्हें यह लिखना था। और पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त अपने फ्रेंड से मिलते थे, कुछ बात हो जाती थी तो हम बोलते थे पिक्चर अभी बाकी है और हमारी फ्रेंड हम हमारा दिल दिखाई देते थे एंड कहते थे आई हेट टीयर्स, मतलब मैं जी हम स्कूल में जो थे वो सारे डायलॉग्स बोला करते थे, मर जावा गुड़ खा के। हाँ ये डायलॉग सभी लोग बोला करते हैं ना, मर जावा गुड़ खा के, गुड़ खा के कैसे मर सकते हैं, गुड़ खा के तो खुशियां होती हैं, ये बात भी ये डायलॉग भी हमारे श्रोता बोला करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्म शक्ति का संवाद, इनकी बातों में आकर किसी ऐसे रास्ते पर मत चले जाना जहां से चाहो तो भी वापस ना आ सको, यह संवाद दिलीप कुमार ने अमिताभ को समझाकर कहा था। ये भी बात सही है। और हमारे एक और श्रोता ने पसंदीदा डायलॉग लिखा है, जिनके मकान शीशे के होते हैं के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। ऐसे कितने सारे डायलॉग्स हैं ना जो हमें पसंद हैं। अभी इन डायलॉग्स के बारे में हम और चर्चा करेंगे, पर सुनते हैं ये संदेश।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
4: एक सुरीली

यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है सुरीला सफर। और सुरीले सफर में हम चल रहे हैं डायलॉग्स के साथ, वो डायलॉग्स जो कहीं ना कहीं आपके जेहन में, मेरे जेहन में कहीं ना कहीं बस गए हैं। और बस ऐसे गए हैं कि चाहे जब चाहे में ही निकलाते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि हम बहुत अच्छा सफर इसमें चल रहे हैं, और हमारे श्रोता ने एक बहुत अच्छी बात लिखी कि आज की इबारत महज शब्दों का समूह नहीं बल्कि बॉलीवुड के सुनहरे दौर और हिंदी फिल्मों के कालजयी संवादों के माध्यम से बुनी गई जीवन के प्रति एक दार्शनिक और बेबाक अभिव्यक्ति है। यह इबारत एक ऐसी शख्सियत को बयां कर रही है जो मजबूत है पर भावुक भी, निडर है पर संवेदनशील भी, और जो जीवन की हर परिस्थिति में एक सिनेमैटिक अंदाज में जीती है। यह हार न मानने की एक खूबसूरत दास्तान रचती है। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है। और हमारे श्रोता इसी बात में एक और बात लिखते हैं कि आप हमारे एक मेडिकल स्टोर की शॉप है, जब भी कोई हमारे बहुत पुराने ग्राहक शॉप पर आते हैं तो हम उन्हें शोले फिल्म का डायलॉग आओ ठाकुर ऐसा बोल देते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। कितनी अच्छी बात है ना, हमारे शब्दों से ही अगर किसी के जीवन में खुशियां आ जाए तो क्या कहना है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, कई पुरानी फिल्मों के डायलॉग हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर है, जैसे हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। कितने आदमी थे, बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा, ऐसी सारी बातें हमारे श्रोताओं ने बताया है। और हमारे श्रोता ने लिखा है, कभी कभी यह डायलॉग हम उपयोग में लाते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते और जेब में फूटी कौड़ी नहीं और चला महलों के ख्वाब देखने, ये सारी बातें हैं और बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे संवादों के लिए लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं कुछ फिल्मी संवाद को अपने जीवन में इस्तेमाल किया है, जिनमें एक संवाद है, तुमने सपने देखे हैं सपनों को टूटते नहीं देखा, दूसरा है जिनके घर शीशे के हों वो पत्थर नहीं फेंका करते, और तीसरा है मैं फेंके हुए पैसे आज भी नहीं उठाता। क्या बात है। हमारे श्रोता लिखते जरा सी परेशानी आती है तो हम कहते हैं साला ये तो काहे को खत्म नहीं होता। मतलब अगर हर बार भोजन यानी खाना पकाते हुए भी एलपीजी खत्म हो जाए तो भी यह डायलॉग दे ही देते हैं। क्या बात है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और शायद कुछ संदेश मैं पढ़ पाऊं या ना पढ़ पाऊं मुझे क्षमा कीजिएगा, पर ये जो अगला गीत है ना, इसके लिए हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि मोहब्बत में तारीफ नमक के माफिक होनी चाहिए, जरूरी भी है और जरूरत से ज्यादा भी नहीं। तारीफ पार्टनर को उसकी खूबसूरती अहमियत का एहसास दिलाती है। हम अक्सर अपनी खूबियों को नहीं देख पाते पर जब कोई चाहने वाला तारीफ करता है तो हम उसकी नजर से देखने लग जाते हैं, जिससे स्वयं आत्ममूल्य बढ़ता है और रिश्ते में सुकून आ जाता है। अगर तारीफ झूठी हो तो प्रेम नहीं बल्कि सौदाबाजी बन जाती है। सच्ची तारीफ भरोसा और अपनेपन को गहरा करती है। अक्सर प्रेम में पुरुष स्त्री की आंखों की और स्त्री पुरुष के मन की तारीफ करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन वही पुरुष स्त्री की आंखों को और स्त्री पुरुष के मन को पढ़ने की कोशिश करे, ये पढ़ ले तो मोहब्बत किसी बाहरी सुंदरता की तारीफ की मोहताज नहीं रह सकती बल्कि मोहब्बत की ही तारीफ हो जाती है। और एक बहुत खूबसूरत सा डायलॉग है जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, राजकुमार का बेहतरीन संवाद है कि आपके पैर बहुत हसीन है। राजकुमार जी का जरा बताइएगा, आपके पैर बहुत हसीन है, इन्हें

जमीन पर मत रखिए, मैले हो जाएंगे। ये डायलॉग पाकीज़ा फिल्म का है और उसका ही ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। हो सकता है ये आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों का मिलान हो रहा हो। बताइएगा, अगर आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों की पसंद मिल गई है तो जरूर हमें सूचना दीजिएगा और इतना सब बस बता दीजिएगा कि इस गीत के गीतकार कौन है। और साथ में ये बताइएगा, जो प्रश्न में चल रहा है उसको तो चलने ही दीजिए, कि आपका पसंदीदा डायलॉग कौन सा है। और उसके साथ ये बताइएगा कि कभी कोई डायलॉग किसी मित्र ने, किसी शिक्षक ने, कभी मां ने आपको ऐसे ही अनजाने में सुना दिया हो और आप हंस हंस के लोटपोट हो गए हो, जहां पर आपकी पिटाई हो रही थी या डांट पड़ रही थी, जरूर बताइएगा। सुनिए ये खूबसूरत सा नगमा, बताइएगा इसके गीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे पाकीज़ा फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में गुलाम मोहम्मद के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के संगीतकार कौन है, तो हमारे श्रोताओं से कहां क्या छुपा है। बहुत अच्छे से उन्होंने उत्तर दिया कि कैफी आजमी ने इस गीत को बोल दिए और गुलाम मोहम्मद ने कितना खूबसूरत संगीत दिया है ना। हमारे श्रोता लिख रहे हैं रेलगाड़ी की सीटी आकर्षण का केंद्र है, गाने के अंत में सुनाई देती है। हाँ, हमने भी सुनी इन्हीं हेडफोन्स के जरिए विविध भारती के स्टूडियो से, आपने भी सुनी होगी अपने अपने रेडियो हैंडसेट पर। और हमारे श्रोताओं को बड़ा पसंद आ रहा है ये गीत, तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे श्रोता लिखते हैं गीत रूह को छू लेने वाला एक एहसास है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो जब हमारे पसंद के गीत हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं शबे आखिरी शबे इंतजार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलती जलती। क्या बढ़िया शेर उठाया है आपने गीत से। हमारे श्रोता लिखती हैं, हमने पूछा था आपसे कि आपको कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपके घर वाले आपको देते हैं तो आप मार खाते खाते या डांट खाते खाते हंसने लगते हैं। तो हमारी श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी हमेशा मुझे डांटती है, कभी कभी जब मारने लगती है तो मैं कह देती हूँ डांट को ना, कभी दर्द नहीं होता। तो मम्मी हंसती है, फिर क्या ना एक और डायलॉग बोल देती हूँ, हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। फिर हम और वो और उनकी माँ दोनों बहुत हंसते हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपकी माँ आपके साथ आपको बहुत पिटाई करती हैं और बहुत सारा प्यार भी करती हैं। इन दोनों को संभाल कर रखिएगा। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे लिखे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के इस सुरीले सफर में डायलॉग की बात हो रही है, तो उन्हें जो डायलॉग पसंद है उन्होंने लिखे हैं, चल तनु बसंती आज चल धनो, यहाँ तनु नहीं या धनो होना चाहिए, चल धनो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। तुम्हारा क्या नाम है बसंती, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, मेरे पास गाड़ी है बंगला है पैसा है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है, आओ महारथी आओ। ये सारे डायलॉग ये बहुत प्यार से बोलते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बोला कि आज का मेरा खुद का डायलॉग है कि अपुन सफर के साथ सफर यानी डबल सफर करता है, हम विविध भारती मुंबई के सुरीला सफर के साथ साथ ट्रेन के सफर का भी आनंद ले रहे हैं, आपकी यात्रा शुभ हो, हम ये बात आपसे कहते हैं। और हमारे श्रोता लिखती हैं कि हमारी आदत है शांति तुम नहीं जानती ये बोलने की। हाँ, ये बड़े प्यारे से डायलॉग थे ना, मीठे मीठे सुरीले सुरीले। और हमारे श्रोताओं ने जब बहुत सारे डायलॉग्स के बारे में लिखा, तो हमारे एक श्रोता ने तो ढेर सारे डायलॉग्स ही पहचान करके लिख दिए और उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन सारे डायलॉग अभी हम नहीं बोल सकते। हमारे श्रोता लिखते हैं, जंजीर फिल्म का एक संवाद है, जब तक बोला ना जाए चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं। और हमारे श्रोता कहते हैं, अक्सर मेरे मित्र पूछते हैं कि आपके स्वस्थ और खुश रहने का राज क्या है, उनसे मेरा यही कहना है मैं विविध भारती सुनता। बहुत बढ़िया बात है, सुनते रहिए, ये डायलॉग बड़े काम का है। हमारे श्रोता ने लिखा, हमने कल रात को ही प्रोमो देखा फिल्मों के डायलॉग के गीत पर, सभी को नमस्कार, लेकिन आज उन्हें गोदड़ी सिल के भेजनी है तो गाने सुनेंगी, तो सुनते रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में जब हम घर पर बच्चे शैतानी करते थे, माँ हम सबकी शिकायत पापा से करती थी, तो हमारे पिताजी पूछते थे कितने आदमी थे, और अब तो हंसी आती है ये सोचकर। हाँ, लेकिन उस समय तो हम सबकी हालत पिटाई और डांट के डर

देखने वाली होती थी। ऐसे ही खुश रहिए, क्योंकि ये डायलॉग जो है ना बड़े प्यारे प्यारे हैं। और हमारे अगला जो डायलॉग है वो बहुत खूबसूरत सी हीरोइन का डायलॉग है, तो ये गाना आप सुनिए और उस डायलॉग का जिक्र कीजिए, और उसके साथ ही एक जिक्र और कर दीजिएगा कि वो अभिनेत्री कौन है, उनका वो डायलॉग कौन सा है और ये फिल्म कौन सी है। ये तीन प्रश्न मैं आपके पास रख रही हूँ, अभिनेत्री, वो डायलॉग और साथ में फिल्म का नाम। सुनिए।

हम सुन रहे थे ये गीत अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, और बता दीजिएगा जल्दी से, और यह भी बता दीजिए कि इसके साथ में डायलॉग कौन सा है। तो हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छे से इसका उत्तर दिया है कि जानी ये चाकू है, लग जाता है तो खून निकल आता है, श्रीदेवी, और फिल्म का नाम भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, चालबाज। हमारे श्रोता लिखते हैं, चुलबुली अभिनेत्री श्रीदेवी का असामयिक निधन हुआ, वो अफसोस की बात है, हम सभी उन्हें सच में याद करते हैं। और बड़ा खूबसूरत सा ये जो डायलॉग का सफर चल रहा है, हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब भी स्कूल के दिन अपने दोस्तों के साथ छुट्टी लेते थे या घर जाते थे तो लिखते थे कि अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगी, जब तुम कहोगे, ये डायलॉग इनके बीच में चलता था। और हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने कई सारे डायलॉग्स के बारे में बड़े प्यार से बताया है, और श्रोता अपनी बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां भी लिख देते हैं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि घर बच्चे छोटे थे, जब भी घर पर मैगी बनाते थे तो बच्चे कहते थे माम हो गए, वो खुश हुआ, और इस बात से हमारे श्रोता भी खुश हो जाते थे डायलॉग सुनकर। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शाहरुख काजोल का वो डायलॉग है पलट पलट, वो भी उन्हें बहुत पसंद है। बिल्कुल सही बात है, ये कई लोग ट्राई करते हैं इस डायलॉग को। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमें ये डायलॉग अच्छा लगता है, आपकी इबारत में भी है कि बाबू मशाई जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, और सही भी है। और शोले फिल्म का डायलॉग, बसंती का डायलॉग, हाँ बाबू जी कहाँ जाओगे, बेलापुर फतेहपुर, ये डायलॉग भी उन्हें बहुत पसंद है। पर ये डायलॉग पूरा याद करना बड़ा मुश्किल है, कैसे हैं उस अभिनेत्री हेमा मालिनी ने उसे याद किया होगा। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, तो एक फिल्म धमाल का एक डायलॉग है, प्रेम चोपड़ा साहब डब्ल्यू वाली बात पर बताते हैं तो जावेद जाफरी कहते हैं कि हम कोई उसके बाप के नौकर हैं जो उसका काम कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है। हमारे श्रोता लिखती हैं कि उन्हें मुगले आजम का डायलॉग बड़ा पसंद है, मेरा दिल आपका हिंदुस्तान नहीं है जिस पर आप राज कर सकें। क्या बढ़िया बात है, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का ये डायलॉग। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और अब हम आपको अगला जो प्यारा सा गीत है वो सुनवा रहे हैं। और इस फिल्म के जितनी ज्यादा से ज्यादा डायलॉग आप लिखकर भेज सकते हैं, जरूर भेजिएगा, और बस इतना ही बता दीजिएगा, वैसे आपको गाना सुनते ही पसंद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा इसके गायक कलाकार कौन है और फिल्म कौन सी है और किस सन में आई थी, ये बताएंगे।

हम सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार मन्ना डे की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल राहुल देवर्मन के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, शोले 1975 की फिल्म है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं उस समय वह 8वीं कक्षा में थे, यानी आपने अपनी 8वीं कक्षा में ही शोले देख ली थी, कितने सौभाग्यशाली हैं। चलिए हम हमारे श्रोताओं से हमने कुछ प्रश्न पूछे थे, उन सबके उत्तर हमारे पास आ रहे हैं। आज का सुरीला सफर में जुड़कर मुगैम्बो खुश हुआ क्यों मिस्टर इंडिया, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। और हमने पूछा था आपसे कि इस फिल्म के कई सारे डायलॉग शायद आपको पसंद होंगे तो जरूर भेजिएगा। मौसी जी तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं, ये हमारे श्रोता कह रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि असरानी का डायलॉग, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं क्या, आप सही बात है, शंभू का दिमाग दोधारी तलवार है, प्रेम चोपड़ा का ये डायलॉग उन्हें बड़ा पसंद है, एक हाथ का पंजा कटा हुआ है तो उसके ऊपर धातु का ग्लव यानी कवच पहना हुआ है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, यूं तो हमें बोलने की आदत तो है नहीं, चल बसंती आज धनों की इज्जत का सवाल है, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं ही। और हमारे श्रोता ने बहुत सारी

इधर लिखी है ठाकुर ये हाथ हमको दे दे, नहीं ये डायलॉग थोड़ा अलग है, ठाकुर हमका ये हाथ दे दे, क्या था सही डायलॉग आप जरा भेजिएगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मरते दम तक साथ चलना है चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये गीत के साथ बोल आपने लिखा है। पार्टनर अब बोल दिया है तो देख लेंगे, ये मेरा फेवरेट है, कितना बढ़िया डायलॉग है ना। तुम क्या लाए हो धोलिया, ये मुट्ठी भर ज्वार, बाकी क्या अपनी लड़की के बरातियों के लिए रख छोड़ा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें पुष्पा एट ईयर्स मुगे में खुश हुआ बड़ा पसंद है। हमारे एक और श्रोता ने बड़ा अच्छा डायलॉग दिया है, मेरा नाम सुरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है। अरे वो सांभा कितने आदमी थे, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर, हमारी इतनी बदलियों के बाद जब हम नहीं बदले तो तुम क्या बदलोगे। ठाकुर साहब गब्बर सिंह क्या कोई बकरी का बच्चा है तो जो दौड़ा और पकड़ लिया। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है और आपने लिखा है कैसे हो सुरमा भोपाली। ये डायलॉग भी बड़ा अच्छा है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये सही डायलॉग है और ये डायलॉग हम कई बार याद भी करते हैं। हमारे एक श्रोता ने बसंतीन के सामने नहीं नाचना ये भी लिखा है, इतनी खामोशी क्यों है भाई, ये डायलॉग भी यहाँ पर आया है। और इसके साथ ही बहुत सारे डायलॉग्स के साथ में हमारे श्रोता ने लिखा है कितना इनाम रखे हैं सरकार ने, ये बात भी कितने आदमी थे, ये सारे डायलॉग आपके रिपीट हो रहे हैं, कई सारे लोगों ने भेजे हैं और इसके साथ बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग हमारे बीच में आ रहे हैं। और इसमें हमारे श्रोता ने लिखा, जानते हो संसार का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है, बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। ये बड़ा बड़ा खूबसूरत सा है और बड़ा दिल को कुछ कलेजे में कुछ करने वाला ये डायलॉग है। शोले फिल्म पुराने जमाने के जेलर मूवी जितनी बार देखी उन्हें अच्छी लगी, हेमा मालिनी का सीन बहुत अच्छा है, जब कहते हैं प्रभु आप बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं क्या कन्या यूके यूके, वो सारी बात जो चलती है उनमें बड़ा मजा आता है। तो कालिया कहता है कि दो हैं कहां रे फौजी नंबर दो, ये कई सारे डायलॉग जो हैं लोगों को पसंद आते हैं। तो चलिए ऐसे ही सुंदर गीत आप सुनते रहिए और अगला जो गीत है वो हम आपको सौंप रहे हैं, बस यही करना है कि उस गीत के गायक को पहचान लेना है और जरा सा पहचानिए कि ये डायलॉग कौन सा हो सकता है। डायलॉग के साथ में आप पहचान लीजिए जल्दी से वो डायलॉग कौन सा होगा और ये फिल्म कौन सी होगी।

इस गीत का एक ही अंतर हम आपको सुनवा रहे हैं क्योंकि हमें सुनवाने हैं बाकी डायलॉग के गीत भी। और इसके साथ में हमने आपसे पूछा था कि ये गीत जो है वो किस फिल्म से है, और बता दीजिए जल्दी से। तो आपने हमें बता दिया कि दामिनी

हमें सुनाने हैं बाकी डायलॉग के गीत भी, और इसके साथ में हमने आपसे पूछा था कि ये गीत जो है वो किस फिल्म से है और बता दीजिए जल्दी से, तो आपने हमें बता दिया कि दामिनी फिल्म से है और बहुत अच्छे से बताया कि ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है, और इसके साथ तारीख पे तारीख शायद इसी फिल्म का डायलॉग है, बिल्कुल सही। चलिए, ये सारे डायलॉग तो आपने बताया, आपने लिखा कि तारीख पर तारीख मिलती रही लेकिन इंसाफ नहीं मिला, माय लॉर्ड इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख, बिल्कुल सही। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं, और खाली आ कितने आदमी थे ये डायलॉग भी हमारे श्रोता ने दिया है, और इसके साथ में आपको अलग अलग गीतों की कई सारी बातें बनाऊंगी। तो एक डायलॉग मैंने लिया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, उसके वह गीत है इस फिल्म ओम शांति ओम से, और उसके साथ ही हम एक और बड़ा प्यारा सा

आंखों में अदाएं भी हैं और एक और बात आ जाती है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ये डायलॉग भी इस फिल्म का है जो कि है फिल्म कालिया। तो सुनते हैं ये थोड़ा सा नगमा।

और अब हम चल रहे हैं आज के कार्यक्रम के अंतिम डायलॉग के साथ में, और वो डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा है। अगर आप बताएंगे कि वो डायलॉग कौन सा बचा है तो जरूर बता दीजिएगा। बाकी हम तो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि बाबू शाही जिंदगी पड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और ये फिल्म कितनी खूबसूरत थी ना, किस किस ने देखी, कब कब देखी जरूर बताइएगा। मैंने अभी 2 दिन पहले ही इस फिल्म को देखा है, हर रोज मैं इस फिल्म को देख सकती हूँ, जीने की एक ताकत देती है। सुनते हैं यह खूबसूरत सा नगमा, और आपको जो थोड़े थोड़े गीत सुनवाए हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कभी और किसी और रोज वो जो गीत रह गए हैं उन्हें पूरा सुनाऊंगी।

0: बसाए, कभी ये रुलाए।
1: आनंद फिल्म का ये गीत हम सभी सुन रहे थे और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी। उन्होंने वह पूरी कविता लिख डाली, मौत तो एक कविता है, मुझाए मुझसे एक कविता का वादा है। वो पूरी कविता पढ़ने का समय तो नहीं है, जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में किसकी डोर कट जाए ये बात है। और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी है और लिखा है कि आनंद फिल्म उन्होंने दूरदर्शन पर देखी थी और कई सारे और डायलॉग्स हम तक आए हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा डायलॉग दिया है और उसके साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन में, कार्यक्रम सुरीला सफर में आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार मित्रों, आज की त्रिवेणी आधारित है रंग पर। साथियों, इस संसार में जो कुछ भी भौतिक रूप से उपस्थित है वो स्वाभाविक रूप से प्रकाश को परावर्तित करता है। हम जिस भी चीज को देख रहे हैं वो उसका अपना रंग नहीं है, हम बस परावर्तित प्रकाश के रंग को देख रहे हैं। हम कहते हैं कि घास हरी है, लेकिन घास हरी नहीं है, ये हरे रंग के प्रकाश को लौटा रही है, परावर्तित कर रही है, इसलिए हमें हरी घास नजर आती है। आकाश नीला है? नहीं, आकाश नीला नहीं है। हमें ये पता है कि अंतरिक्ष तो नीला अंधेरा है, वहाँ नीला जैसा कुछ भी नहीं है। आकाश अगर नीला नजर आता है तो उसकी वजह बिल्कुल अलग है। नीले रंग का अपवर्तन गुण बाकी रंगों से बिल्कुल अलग है, इसी वजह से आकाश नीला है।

संसार में किसी भी चीज में रंग नहीं है। पानी, हवा, अंतरिक्ष, पूरा संसार रंगहीन है। यहाँ तक कि जिन चीजों को भी हम देखते हैं वो सभी रंगहीन है। रंग तो केवल प्रकाश में होता है, रोशनी में होता है। रंग वो नहीं है जो वो दिखता है, बल्कि वो है जो वो त्यागता है। जो भी रंग बिखेरते हैं वही हमारा रंग हो जाता है। हम जो अपने पास रख लेंगे वो हमारा रंग नहीं होगा। ठीक इसी तरह से जीवन में जो कुछ भी हम देते हैं वही हमारा गुण हो जाता है, हमारा व्यक्तित्व हो जाता है।

जो रंगों से परे है वो रंगहीन नहीं है, वो पारदर्शी है, वैराग्य है, जिसका मतलब है कि हम ना तो कुछ रखते हैं और ना ही कुछ परावर्तित करते हैं, यानी हम पारदर्शी हो गए हैं। अगर हम पारदर्शी हो गए हैं तो हमारे पीछे की कोई चीज अगर लाल है तो हम भी लाल हो जाते हैं, अगर हमारे पीछे मौजूद कोई चीज नीली है तो हम भी नीले हो जाते हैं। हम जहां भी होते हैं उसी का हिस्सा हो जाते हैं, लेकिन किसी भी चीज में फंसते बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम पारदर्शी हैं और वो रंग एक पल के लिए भी हमसे चिपकता नहीं है। हम शांत, संतुष्ट, उत्साही और जिज्ञासु रहते हैं।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं।

0: से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
0: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्य

0: पर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सबके लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता

0: प्राप्त हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: पेइजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज शी जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में यह 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में यह वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कल अबूधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत 12 o'clock फिल्म से मोहम्मद रफी की दत्त की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिलती हैं धाराएं 3 विचार स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं अगला गीत डिटेक्टिव फिल्म से, गीता दत्त हेमंत कुमार की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और मुकुल रॉय के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत आखिरी दाव फिल्म से आशा भोसले की आवाज में मजरूर सुल्तानपुरी के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा जो कि है फिल्म अनाड़ी से। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

हम सुन रहे थे मधुमती फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अंतिम गीत और इस गीत के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप सबका कल्याण हो ये प्रार्थना करती हूँ। और सुनिए ये गीत मालिक फिल्म से, सुरैया शमशाद बेगम और साथियों की आवाजें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं और गुलाम मोहम्मद का है संगीत।

0: की सहेली सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को, सभी सखियों को, प्यारे प्यारे जितने साथी बैठे हैं सभी को नमस्कार। और आज मेरे साथ इस मंच पर हैं दीपा, आपको भी दीपा प्यार भरा नमस्कार।
1: चंचल आपको और साथ में हमारी सारी सखियों, सहेलियों और हमारे श्रोता भाइयों को हमारा हेल्दी नमस्कार।
0: तो आपने पिछली बार भी हेल्दी नमस्कार किया, उसकी वजह बताई थी, और आज भी हेल्दी नमस्कार है, ये तो आज भी वजह बताइए
1: भाई। एक बार जब भी आते

0: बहुत सुंदर गीत था और जिस तरह से इस गीत में खनक थी ना, वैसे ही कुछ खनक रंगों में होती है और रंग भी मन को मोह लेते हैं। और आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं जो चित्रकार हैं, जो अपने रंगों का जादू ना जब वो चलाती है ना रंगों की अपनी कलम, तो वो नजर आता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और भूरी बाई, ये उनका सफर हमें यही बताता है चंचल कि कला छुपाए नहीं छुपती है, वो दुनिया तक एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए घर में कोई बच्चा हो या आप स्वयं हमारी सखी खास तौर पर, वो क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कला अगर आपके अंदर है तो उसे कहीं भी रोकिएगा नहीं, कभी दबाइएगा नहीं।
0: और ये जो अवसर है जब स्कूल के बाद बच्चों की छुट्टियां होती हैं, यही मौका उन्हें मिलता है कि उनके अंदर कोई कला है तो उसे आप उभारें और उन्हें कोई ऐसी क्लासेस में एक्टिविटी के लिए भी आप भेज सकती हैं, ताकि उन्हें खुद को जानने का अवसर मिलेगा इन चीजों से।
1: और बच्चों के साथ खुद भी क्यों नहीं, अगर आपको अब लगता है कि हाँ थोड़ा सा वक्त है, और अगर आपको मान लीजिए कि 40 पार या 45 की उम्र के पार आपको लगता है कि मैं कोई डांस क्लास सीखूं, लेकिन मन में एक पहला ख्याल क्या आता है, अरे अब कहां, तो ये ख्याल आने भी मत दीजिएगा। जरूर अपने पास की किसी कोई क्लास कहीं पे कुछ सिखाया जा रहा हो तो जाकर एक बार देखिएगा जरूर कि आप कर पा रहे हो या नहीं।
0: और 40-50 के पार तो मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा अच्छा समय होता है, उस वक्त अधिकतर महिलाएं या पुरुष बच्चों की जिम्मेदारियों से काफी हद तक मुक्त हो चुके होते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर अपने नौकरी के लिए या बड़ी किसी पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए होते हैं, या कहीं और किसी अन्य शहर में चले गए हैं, या अपने ही शहर में वो व्यवस्थित शादी ब्याह करके या नौकरी करके सेटल हो चुके होते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: तो आपको जब अपने लिए समय निकालने का अब वक्त आया है तो बिल्कुल पीछे ना हटें, अपने उस शौक को पूरी तरह से जी लीजिए।
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम बात कर रहे हैं चित्रकार भूरी बाई के बारे में, जो कि

0: प्रदेश के झाबुआ जिले में एक छोटा सा गांव है पिटौल, वहां पर इनका जन्म हुआ 1968 में। और उनके माता पिता बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते थे और मेहनत मजदूरी का काम वो किया करते थे। पढ़ाई लिखाई भी उनकी हो नहीं पाई ज्यादा, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं ना कि पृष्ठभूमि जो उनकी रही वो इस तरह की थी कि उन्हें पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिल पाया। और जब छोटी सी थी वो तो चित्रकारी का बड़ा शौक था उन्हें, और मिट्टी और गेरू जो आमतौर पर हम देखते हैं कि घरों में गेरू से कुछ रंगोलियां अल्पना बनाई जाती है, तो उन्हीं से बस उन्हें भी खेलने का शौक लगा। और खेलते खेलते रंगों से कभी हाथी कभी घोड़ा और कभी पेड़ों के जंगलों से जो चीजें मिल जाती थी उन्हें लाकर वो चित्रकारी का अपना शौक है उसे पूरा किया करती थी।
1: जी, अब क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी तो पड़ोस के ही गांव में उनका ब्याह हो गया। पति पत्नी दोनों आसपास के गांव शहरों में मजदूरी करके अपना जीवन चला ही रहे थे बस इसी तरीके से। और भूरीबाई भील आदिवासी समुदाय की भित्ति चित्र परंपरा में बहुत प्रशिक्षित भी थी और घर की कच्ची दीवारों पर गेरू से या कभी कोई दूसरे प्राकृतिक रंग से चित्रकारी वो करती थी। और ये हुनर कहीं कुछ ऐसा रहा कि राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ले आया। तो 1982-83 की बात थी, भोपाल में भारत भवन का निर्माण चल रहा था चंचल, तो प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आदिवासी कलाकारों को बुलाकर यहाँ के निर्माण में मदद लिया जा रहा था उस वक्त। तो भूरीबाई के पति को भारत भवन में बगीचे की देखभाल का काम मिल गया तो उनके साथ वो भी भोपाल चली आई।
0: और बिल्कुल, क्योंकि उस कच्ची मिट्टी से गेरू से खेलने का शौक तो उनको था ही, इन प्राकृतिक रंगों की चित्रकारी से जो हुनर उनको मिला था तो बस जब उनके पिता आए तो वो भी चली आई। और उनके पिता जो कि बगीचे की देखभाल का काम किया करते थे
1: जी, उनके पति चले आए।
0: हाँ,
1: पति के साथ
0: वो चली आई और उन्होंने भी भारत भवन में मजदूरी का काम करना वहां शुरू किया। और यहाँ उनकी मुलाकात हुई उनके जो गुरु थे जे स्वामीनाथन, उनसे हो गई। और उनकी जो संस्कृति थी वहां के जो देवी देवता थे उनको समझने के लिए भूरीबाई और उनके पति से उन्होंने बात की। इसी दौरान उन्हें यह भी पता लगा कि देवी देवताओं के चित्र घर की दीवारों पर बनाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है देश में। तो जे स्वामीनाथन ने पहली बार भूरीबाई से देवी देवताओं के चित्र कागज पर बनाने को कहा, यानी कि दीवारों पर तो बनते ही थे लेकिन ये चित्र उन्होंने कागज पर किस तरह उकेरे जाएंगे ये उनको कहा।
1: तो वे तो उंगलियों से बनाती थी, अब उन्हें कैनवास पर बनाने के लिए जब कहा तो बड़ी समस्या उनके सामने आन पड़ी कि जीवन में कभी कलम को तो हाथ ही नहीं लगाया। घर पर उन्होंने लेकिन क्या था थोड़ी प्रैक्टिस की और फिर पहुंची अपने कला गुरु के जे स्वामीनाथन के पास। भूरीबाई ने 5 दिनों में यह काम करके दिखाया जिसके लिए उन्हें उस वक्त 50 रुपए मिले। यहां जी
0: भाई उस समय की जब आप बात कर रही हैं तो 50 रुपए मिलना अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी। और यहीं से जो उनकी कला की यात्रा है ये भी शुरू हो गई और ये ऐसी शुरू हुई कि फिर आगे चलकर विश्व स्तर तक पहुंची है। और भूरीबाई भी अपने बारे में बताती हैं कि उन्हें चित्रों में जो जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर है, जंगल है, पशु पक्षी है और त्योहार, ये उनके मुख्य विषय थे जिनको वो चित्रकारी में उकेरा करती थी। और इन चित्रों को छोटे आयताकार वो बनाया करती थी जिनमें उंगलियों से बिंदी बिंदी लगाकर उसे वो बिल्कुल जीवंत बना दिया करती थी। हर कलाकार का चित्रकारी करने का जो एक अंदाज होता है तो वो उनका अंदाज था।
1: भूरीबाई कहती हैं कि उनको कला का पहला सम्मान 1986 में मिला और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी देवी अहिल्या सम्मान उन्हें दिया। 2018 में उनके चित्रों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगी जो कि अमेरिका में लगी। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे देशों में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। हर जगह उनकी चित्रकारी को इतना पसंद किया गया कि उसके बाद मतलब उन्हें हर साल बुलाया ही जाता था कि आप आकर के एग्जीबिशन लगाइए।
0: बिल्कुल, हम अगर देखें कि उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, किस तरह के परिवार से वो आती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने को स्कूल जाने को नहीं मिला, किसी बड़े स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं है उनके पास में, लेकिन जिस तरह के सम्मान उन्होंने पाए सिर्फ अपनी उस कला के जरिए, तो अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करें तो वो छोटा बड़ा नहीं, वो आपको कहीं एक जगह ले जाकर वो सम्मान दिलवा सकता है।
1: बिल्कुल, वे कहती हैं कि अपने समुदाय में वो पहली महिला है जिन्होंने कागज और कैनवास का इस्तेमाल किया है और पेंटिंग करने के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती है। एक मजदूर से लेकर विश्व स्तर तक अपने समुदाय के पेंटिंग को पहचान दिलाने वाली वे पहली महिला बनी जिसके लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
0: और भूरीबाई का ये मानना है कि आप चाहे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, किसी भी महिला को अपने क्षेत्र में हुनर को आगे ले जाते हुए जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए। और हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं अपनी सभी सखियों को और अपने सभी साथियों को कि आप उम्र को एक सिर्फ नंबर मान के चलिए और उम्र

0: पानी पता कैसा होता है कि जिस रंग में मिल जाए वैसा ही बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और दोस्ती भी ऐसी थी, अगर आपको दोस्त कोई बहुत अच्छा मिल जाए ना, आपके रंग में वो रंग जाए, तो बस ऐसा अगर दोस्त एक भी आपके पास है ना, तो वो 100,000 दोस्त के बराबर है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, यही एक संदेश हमारी एक सखी ने लिखा है, दोस्ती से ही तो प्रेरणा लेकर सखी सहेली का नामांतरण हुआ होगा। हम सब आपस में अच्छे दोस्त हैं, सोचो अगर सखी सहेली न होती तो हमारी दोपहर कितनी सुनी होती भाई। सखी सहेली के रहते आपकी दोपहर कभी सुनी नहीं होगी।
0: और पता है दीपा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए होते हैं, जिनमें से अधिकतर या तो हम कहें सभी रिश्ते जन्म से संबंधित होते हैं। और जन्म से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, इन्हें बदल पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन इन जन्म से जुड़े रिश्तों के अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, वो होता है दोस्ती का। और ये वो रिश्ता है जिसे हम अपनी सोच समझ के साथ में खुद चुनते हैं और खुद इस रिश्ते से जुड़ते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: और जीवन के हर कदम पर अलग अलग लोग हमें मिलते हैं, कुछ से अच्छी जान पहचान हो जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोस्त कह पाते हैं। और मुश्किल समय में जो व्यक्ति हमारे लिए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है, वही सच्चा दोस्त होता है।
1: लेकिन चंचल, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में दोस्ती नाम का कोई रिश्ता नहीं होता। सोशल नेटवर्किंग के जमाने में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दोस्त नहीं है। तो क्या हो ऐसा है कि उन लोगों को दोस्ती करने का सही तरीका मालूम नहीं है?
0: ऐसा तो नहीं हो सकता।
1: समय के साथ साथ दोस्ती के मायने भी बदल रहे हैं। आज जहां ज्यादातर लोग अपना मतलब और स्टेटस देखकर दोस्ती करते हैं, वहीं पुराने समय में दोस्ती का संबंध सिर्फ पहले कैसा होता था, बिल्कुल दिल से दोस्ती हुआ करती थी,
0: दिल से जुड़ जाते थे।
1: अब जो थोड़ा सा एक मॉडर्न जमाना कह लो या आधुनिकता कह लो, स्वार्थ की चकाचौंध कह लीजिए, आज दोस्ती को एक माध्यम की तरह बना दिया गया है, जबकि ऐसा कतई होना नहीं चाहिए।
0: इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा और सूना सा लगता है, क्योंकि दोस्त ही हर खुशी और जश्न और गम को हल्का बनाते हैं। वे भरोसे, ईमानदारी और बिना शर्त के हमारे सपनों को सहारा देते हैं। एक सच्चा दोस्त जीवन में सुकून, मस्ती और निस्वार्थ साथ लेकर आता है। दोस्ती के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे साथी ने हमें लिखकर भेजी हैं। खुशी का एहसास, दोस्तों के बिना जिंदगी बेरंग है, वो हर पल को खुशी से भर देते हैं। सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करे और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाए, भावनात्मक सहारा देते हैं। दोस्त सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते बल्कि रोते हुए को भी सहारा देते हैं, कड़वे सच बताने वाले भी होते हैं। और दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं, उसमें स्वार्थ, अहम, इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं होती।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक हमारी सखी कह रही हैं कि दोस्ती पर कोई बात की जाए जिसमें कृष्ण, सुदामा और कर्ण, दुर्योधन की मित्रता की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता।

0: बस मेरे साथ रहे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आज के युग में बनावटी दोस्त तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास भले अकुल संपत्ति हो हिचकते नहीं है, कभी कम होगा और कभी मांगते रहेंगे, जिनसे आप वापस कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल न करें, यानी कि वो बनावटी दोस्त के बारे में बता रहे हैं।
1: तो चलिए अब सिर्फ बातें नहीं करते हैं, कुछ सुन भी लेते हैं। अच्छा सा
0: चलिए,
2: हानि बाकी रह गए, दोस्ती यारी रद्द हो गई है, प्यार में दुनियादारी कैसी मुफ्त की चीज नगद हो गई है, चीची यार की ये पहचान, दोस्ती में कैसा एहसान, जब दोस्ती होती है तो।

0: पांडवों की पंचायत, जो सोचे सही होगा, हम पांडव हैं भारत के, जो कह दे वही होगा।
1: ओए जम के एक जमा दूं

बिल्कुल सही बात है कि दोस्ती में सिर्फ दोस्ती ही होती है, कोई एहसान नहीं होता। लेकिन इस वक्त समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ आपकी सखी चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी।
0: तो भाई हम बात कर रहे थे
1: दोस्ती की।
0: देखो दीपा, हम दोनों भी बड़े अच्छे दोस्त हैं ना
1: और हमारी सखियां भी तो सारी दोस्त हैं। तभी तो ये लिख रही हैं कि दोस्ती बिना जग सूना होता है। जैसे सखी सहेली प्रोग्राम में सब सखियां दोस्त हैं। हर रोज एक घंटा हमें मिलता है, सखियों के सुख दुख की बातें करते हैं हम सब। सखियों को जीवन के अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है और सखियां भी इस दोस्त से कमेंट करके बेझिझक बातें करती हैं। तो भाई यही तो होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास जरिया यही है कि हम कमेंट करके एक दूसरे से अपने हर मन की हर बात का को हम साझा कर सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए अगले संदेश में भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि दोस्ती अमूल्य होती है, जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती के बिना जग सूना है। यदि जीवन में दोस्त ना हो तो दुनिया सूनी सूनी और बेरंग लगने लगती है। मित्र हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और उदासी को दूर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन है जहां बिना किसी स्वार्थ के ये दिलों को जोड़ता है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। जीवन में कठिनाइयां जब भी आती हैं तो दोस्त हमारा हौसला बनते हैं। दोस्ती में अपनापन, विश्वास और समझदारी होती है। एक अच्छा दोस्त हमें सही राह दिखाता है, गलतियों से बचने

0: की सीख देता है। तो जहां इन्होंने लिखा ना कि दोस्ती अनोखा बंधन है, तो दोस्ती वो बंधन है जहां कोई बंधन नहीं होते।
1: सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और हमारा एक संदेश आया हमारे, ये तो श्रोता भाई हैं, ये कहते हैं, जैसे मेरी जिंदगी में विविध भारती सखी सहेली एक सच्चे दोस्त के रूप में आया, वैसे ही महसूस होता है कि एक सच्चे और प्यारे दोस्त के बिना जग सुना है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपनी हमें हमारी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन एक सच्चा मित्र बिना कहे मन की बात समझ जाता है। सखी सहेली ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि हर दिन अपनापन, मुस्कान और भावनाओं का एक सुंदर रिश्ता दिया है। ये कहते हैं, सच कहूं तो जैसे दोस्ती बिना जग सुना लगता है, वैसे ही सखी सहेली के बिना जीवन का एक हिस्सा अधूरा लगता है। तो क्या बात है, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये साथ यूं ही चलता रहे, ये इसी बात की हम कामना भी करते हैं।
0: और भी बता दें कि जो आने वाला महीना है यानी जून, 2 जून को सखी सहेली की वर्षगांठ है, तो आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए अपनी सहेली के लिए, इस दोस्त के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो अगला संदेश पढ़ते हैं, इसको हमारे श्रोता जो भी लिखने वाले हैं संदेश को, उन्होंने एक गीत की पंक्ति से शुरुआत की है कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा है और सूना है। दोस्त केवल साथ रहने वाले लोग नहीं होते बल्कि वे खुशियों को दुगना करने वाले, दुखों को आधा करने वाले हिस्सेदार होते हैं। उनके बिना हंसी, यादें, मुश्किल समय में डारस बंधाने वाले ये लोग होते हैं। सुख दुख बांटने के लिए दोस्त सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल जिंदगी की असली कमाई है और इसी दोस्ती के बिना जीवन में एक गहरा सुनापन आ सकता है। तो बिल्कुल आप दोस्त बनाइए। अगर आपको अकेले रहने की आदत है या आपको लोगों से मिलना जुलना कम पसंद है, तब तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप दोस्त बना रहे हैं तो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको धोखा देने वाले दोस्त मिल सकते हैं।
1: और एक हमारे साथी ने संदेश दिया है कि रेडियो तो हमारा बचपन से साथी रहा है। एक समय था एक बार के लिए खाना भूल जाते थे पर सखी सहेली सुनना नहीं भूल पाते थे, पर आज व्यस्तता के चलते बस सखी सहेली सुन पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम आपको सच्चा दोस्त मानते हैं, तो भाई हमारे लिए आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि श्रोताओं के बगैर, हमारी सखी और सहेलियों के बगैर तो ये प्रोग्राम पूरा अधूरा है। इसका ये जो रिश्ता है, इसकी डोर अगर एक तरफ स्टूडियो है तो दूसरी तरफ आप सब हैं, आप ही सबसे इसकी सुंदरता है।
0: बिल्कुल, अगर सोचिए हम दोनों ही मिलकर सारी बातें करेंगे तो, और इनके कमेंट्स नहीं होंगे तो प्रोग्राम कितना खाली खाली सा लगेगा ना।
1: बिल्कुल, इनके बिना तो सब वैसे ही सब कुछ सूना है।
0: हाँ, तो भाई चलिए सूनापन दूर करें, एक और संदेश पढ़ते हैं। दोस्ती की मिसाल देखना है तो हमारे विविध भारती के फेसबुक के मित्रों को देखिए, वहाँ हर रोज मिलते हैं और पर्सनल मुलाकात भी करते हैं।
1: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही सुंदर बात है।
0: तो अब दोस्ती की बातें बहुत हुई, क्यों ना एक दोस्ती से भरा गीत सुन ले।
1: चलिए।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: हम भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सृजन भारती के इस अगले अंक में आप जरूर हिस्सा बनिए इसका। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले विषय पर जिस पर हमने बताया था कि भाई किश्तों में अगर आपको कोई सामान लेना है तो वो कितना सही है या कितना गलत है, क्योंकि किश्तों पर खरीदारी करना इनकी कितना आसान ईएमआई पर किसी चीज को ले लेना जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये दो धारी तलवार की तरह होता है ना दीपा?
2: बिल्कुल सही कहा। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया गया तो ठीक, न किया जाए तो ये कर्ज के जाल में भी आपको फंसा सकता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि ये दो धारी तलवार है, अगर आसान है तो आपके लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। और इस पर इतनी सारी बातें संदेश के रूप में हमें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं, तो इनका कहना है कि किश्तों पर खरीदारी कितनी सही है। भाई आजकल ईएमआई और यूपीआई का जमाना है और समूची दुनिया ही नहीं ये बल्कि हर कोई इसी तरह से खरीदारी करने में चाहता है, लेकिन कहीं से कोई भी एक भी गलत क्लिक हुआ तो फिर लेने के देने पर जाया करते हैं। इसीलिए इसके उपयोग के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले ऋण लेकर घी पीने की आदत बन जाती है और हम लोग उसके अधीन होकर अपने चैन सुकून को खोते रहते हैं और तनाव भरी जिंदगी जीते हैं, फलस्वरूप तनाव अलग से झेलते हैं। तो ये बात सही है, जब महीने का वो समय आता है किश्त चुकाने का तो वो एक तलवार की तरह आपके सर पर वो लटका रहता है कि किश्त देनी है किश्त देनी है, और उस चक्कर में कई बार आपका सुख चैन नींद खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज इसके लिए आपको बड़ी किश्त चुकानी पड़ रही है और आपको लगता है कि आपकी आमदनी से बाहर वो चीजें फिर जा रही हैं।
2: लेकिन चंचल ये बताओ, देखो महंगी वस्तुएं हैं जैसे कि घर हो गया कार है या महंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर उनको लेना हो तो एक साथ थोड़ी ले सकते हैं, कितना आसान हो जाता है किश्तों में चीजों को लेना।
1: लेकिन आपको अपनी आमदनी को देखते हुए अपनी किश्त बनानी होगी ना। आपने कहा घर लेना है तो घर इतनी बड़ी कहते कि रकम वाली चीज होती है जिसे एक मुश्त लेना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है, तो आप ये

0: देखिए कि आप जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा बंगला बहुत बड़ा घर लेना है। अपनी जरूरत के मुताबिक आप कितने सदस्य हैं घर में या आपकी आमदनी कितनी है इसको देखते समझते हुए आप अपने बजट में घर लीजिए और फिर जो किश्त बनानी है वो भी इतनी ही बनाइए। मान लीजिए अगर आप अभी आप एक किराए के घर में रहते हैं तो जितना किराया अभी आप दे रहे हैं उतना देने की क्योंकि आपको बरसों से आदत है तो उतनी किश्त आप आसानी से निकाल कर दे पाएंगे। लेकिन उससे दुगना रकम अगर आपके पास में आ गया देने के लिए तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल का सबब बन जाएगा।
1: ये बात तो सही है लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई जरूरी चीज है जैसे आजकल लैपटॉप है या ये कहें कि फ्रिज, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, तो इनको लेना कितना आसान हो जाता है। हम एक साथ नगद नहीं भी हो हमारे पास, अगर जैसे इन दिनों बहुत गर्मी चल रही है अब हमें लगता है कि नहीं भाई फ्रिज हो जाए एक छोटा ही ले लें, नगद नहीं है तो किस्त में तो हम ले ही पाते हैं ना।
0: मैं फिर वही कहूंगी कि किश्त अगर आपको लेनी है तो बहुत सारी किश्तें जब आपके समय समय पर जाती है ना तो आप या तो उन्हें कहीं लिख कर रखें, अगर आप भूल जाते हैं उन किश्तों के बारे में लिखना। अब मान लीजिए हर हफ्ते आपकी कोई ना कोई किश्त भरने का समय है, आपने कार भी ले रखी है, आपने बड़ा टीवी भी लिया, लैपटॉप भी लिया और मोबाइल भी ले लिया कोई अच्छा महंगा वाला, तो किश्त अगर आप भूल गए तो जो वसूली के लिए जब उनका जो रवैया होता है वसूली करने वाली कंपनियों का वो आपके साथ बहुत सख्त हो सकता है और फिर आपको ही बुरा लगेगा कि अरे ये चीज हमारी वापस से मांगी जा रही है या इसके पीछे जो हमें जो भुगतान करना पड़ता है जुर्माना भी हो सकता है सजा भी हो सकती है। उन चीजों से अगर बचना है तो या तो समय पर किश्त देनी है उतनी आमदनी आपको रखनी या तो फिर किश्तों से ही बचना है।
1: बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, लगता क्या है अरे सिर्फ 2000 या 3000 की किश्त है तो वो हम वो जो सिर्फ जो 2000 या 3000 दिख रहा है ना महीने का सिर्फ उतना ही दिखता है, इसके पीछे जुड़ने वाला ब्याज या कहीं कोई ऐसी छिपे हुए कोई शुल्क हो जाते हैं ना, जैसे 0% के नाम पर अब कई बार हो जाते हैं कि फाइल चार्ज हो जाता है, प्रोसेसिंग फीस बाद में लग जाती है या इंश्योरेंस के नाम पर भी कई बार वो कुछ एक अमाउंट कुछ अतिरिक्त पैसा उसमें और जोड़ दिया जाता है। बाद में हमें समझ में आता है कि नहीं भाई ये 2 या 3 हजार की नहीं, ये तो जुड़ जुड़ के 4 या 5 हजार तक
0: चली जाती। और वो जो 20 हजार की चीज आपको खरीदनी थी वो आपको 20 की जगह हो सकता है कि 30 हजार या 35 हजार तक की वो पड़ जाए।
1: बिल्कुल,
0: तो इसीलिए आप किश्तों में खरीदने का जो एक कहते ना कि वो लुभावना जो एक प्रलोभन होता है उससे बचने का प्रयास कीजिए। और इसके बारे में हमारे साथी लिखते हैं कि किश्तों में खरीदारी अच्छी है क्योंकि आपने आपके पास ज्यादा रकम चुकाने की स्थिति नहीं है तो अक्सर लोग अब किश्तों में खरीदने को अच्छा महसूस करते हैं। हालांकि ये नकद खरीदने से महंगा पड़ता है लेकिन इस चलन के लिए सबके पास फ्लैट, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं। मासिक भुगतान का ये आइडिया ज्यादा लोगों को पसंद आता है। हाँ, आप हर महीने ईएमआई दे सकते हैं तो वही चीजें आप खरीदें क्योंकि 2 या 3 किश्तों की लेट लतीफी फिर ब्याज बढ़ने की महंगी पड़ जाती है और लोग अन्य कामों में उलझ जाते हैं। किश्त बाकी होने पर कंपनी वाले आते हैं और गाड़ी उठाकर ले जाते हैं और पैसा भी डूब जाता है।
1: बिल्कुल, ये सही कहा। देखिए, इन्होंने तो हमें बताया कि किश्तों के फायदे क्या है, नुकसान भी क्या है, लेकिन हमारे एक और साथी वो कहते हैं भाई किश्तों से खरीदारी के कई नुकसान है। जैसे वो कहते हैं कि फिजूल खर्च को बढ़ावा मिल जाएगा, छिपे हुए शुल्क जैसे अभी हमने बात करी वो भी हो सकती है, जीएसटी कहां लग सकता है हमें पता ही नहीं चलता, फिर भविष्य की जो एक आय है उस पर भी बोझ आता है, यानी कि हर महीने की कमाई का एक हिस्सा पहले से ही आप ब्लॉक कर देते क्योंकि हमें पता है ना कि ये इतनी किश्त तो हमें जानी ही है। फिर कर्ज का जो एक जाल है, एक साथ कई सारे ईएमआई चालू हो जाएंगे, फिर देखिए आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, डिफॉल्ट का भी खतरा हो जाता है कई बार कि किश्त बाउंस होने पर भारी पेनल्टी लगती है चंचल, और फिर क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है।
0: इसी तरह से हमारे एक साथी ने लिखा है कि किश्तों पर खरीदारी करना सही है जब आपको बहुत ज्यादा वैसा लगता है कि सही नहीं है क्योंकि इससे आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। इसलिए किश्तों पर खरीदारी तभी करें जब क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करनी हो या कभी कभार ही आप ऐसा करें तो इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी और मेरे हिसाब से तो ये खरीदारी ना ही करें तो अच्छा है, ऐसा हमारे जो साथी हैं जिन्होंने संदेश लिखा है उनका कहना है।
1: अच्छा, एक हमारे साथी ने कहा है कि 10% का नियम आपको, अगर आप ईएमआई के पक्ष में हैं तो 10% का नियम अपनाना चाहिए। वो क्या है कि आप सभी ईएमआई का कुल योग आपकी मासिक इनकम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब जितना आपका है इनकम आपकी उसका 10% ही सिर्फ ईएमआई में जाना चाहिए। सामान सस्ता लगने के कारण कई बार क्या होता है कि हम गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेते हैं, तो इस नियम को अगर आप पालन करते रहेंगे। ध्यान रखें।

0: देखो भाई, ये जो गाने हैं ना, ये कई बार मन को बड़ी शीतलता देते हैं, लेकिन वातावरण में जब हम बाहर निकलते हैं देखते हैं गर्मी बहुत है।
1: सही
0: और
1: बात,
0: ऐसी गर्मी जो है ना, इसमें पसीने छूट जाते हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही कि अब कभी कभी ऐसा होता है, हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है भाई कब अपने स्टॉप पर आएंगे और वहां उतरेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा दुर्गंध आने लगती है कि सामने वाला भी शर्मिंदा तो हो रहा होता है, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए उतनी देर बैठना एक दुभर और कठिन काम हो जाता है।
0: बिल्कुल दीपा, और शरीर से निकलने वाली जो तीखी गंध है, ये शरीर की गंध है, आम भाषा में लोग पसीने की बदबू के रूप में इसे जानते हैं। और बहुत से लोग शरीर की दुर्गंध की समस्या से प्रभावित भी होते हैं, और लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि शरीर से बदबू या दुर्गंध पसीना उत्पन्न होने के कारण होती है। हालांकि इस बात में आधी सच्चाई तो है। और हमारे शरीर से बदबू आने का जो कारण है, शरीर की गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया है ना, उनकी मौजूदगी होती है।
1: बिल्कुल, और हमारे शरीर की त्वचा में रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं, वो पसीने में जो प्रोटीन और फैट होता है ना, उसे खाते हैं।

0: शरीर के बाल वाले और नम हिस्से में लाखों जीव और बैक्टीरिया होते हैं जो पसीने के यौगिकों के बदबूदार को योगी उनको यौगिकों को बदबूदार गंध में बदल देते हैं। शरीर से दुर्गंध कई कारणों से भी आ सकती है, जैसे खराब खान पान, बढ़ती उम्र, अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं और खराब साफ सफाई, ये भी सब शामिल है। और शरीर की दुर्गंध के आसान उपाय और आसान घरेलू नुस्खों से हम इसे दूर भी कर सकते हैं।
1: तो उसके लिए सबसे अच्छा तो यही

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुशी पाठक।
0: सखी सहेली

श्रोताओं नमस्कार। आपके चहेते फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश के साथ हाजिर हूँ मैं शिफाली कपूर। साथियों, जिंदगी के

0: की बातचीत और साथ होंगे आपके पसंदीदा गाने। साथियों, कुछ गीत मुस्कान बन जाते हैं, कुछ धुनें यादों का कारवां ले आती हैं और कुछ फरमाइशें दिल से सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला। लेते हैं पहला कॉल। सुन रहे हैं ना, फोन की घंटी बज रही है, कहीं ये आपका ही कॉल तो नहीं? हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी। नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला।
0: आहा, क्या बात है, अपना नाम तो बताएं।
1: प्यार का ही एक पर्यायवाची शब्द है प्रेम। मैं प्रेम कुमार गौतम बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: मेरा नाम ये है मोहब्बत प्यार प्रेम।
0: वैसे कहते हैं ना कि प्यार बांटते चलो, प्यार जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है ना?
1: जी। तो मेरे आगे दो शब्द लगे हैं, तो प्रेम, दूसरा गौतम, और गौतम बुद्ध, दोनों ने ही प्रेम का संदेश दिया।
0: क्या बात है। तो आज आप क्या संदेश दे रहे हैं और किस शहर से बात कर रहे हैं, जरा तो ये भी बता दें।
1: कि मैं झांसी से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी।
1: पूर्व लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: बिल्कुल।
1: और गर्व करते हैं।
0: बिल्कुल गर्व है।
1: आपको भी गर्व होगा।
0: बिल्कुल गर्व है जी, बिल्कुल गर्व है। अपने बारे में भी कुछ बताएं प्रेम जी, आप क्या करते हैं?
1: मैं शब्दों की साधना करता हूं, मैं राइटर हूं, लिखता हूं।
0: क्या
1: और
0: बात है।
1: कविता से मेरे आत्मिक जुड़ाव है, मैं मूल रूप से कविता का विद्यार्थी हूं।
0: अच्छा, कैसी कविताएं लिखते हैं आप?
1: छंद में तो मैंने बहुत कम लिखा, लेकिन

0: हम मुक्त छंद की कविताएं लिखते हैं, हम मानवतावादी कविताएं हैं जो मुक्त छंद की हैं, हम मुक्त लिखते हैं।
1: अच्छा, तो चार लाइनें आप क्या हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ पर सुना सकते हैं?
0: जी जी, जरूर सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है दो मिनट का मौन है। आओ मित्र दो मिनट का मौन रखें, आओ मित्र दो मिनट का मौन रखें। वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा, आओ मित्र दो मिनट का मौन रखें।
1: क्या बात है, क्या बात है भाई आपकी, तो इस कविता ने निशब्द कर दिया, तारीफ में क्या बोलूं मैं। और बहुत खूब, आपकी कलम यूं ही चलती रहे और दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करें। प्रेम जी, तो बताएं आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत आपकी पसंद का सुनवा लिया जाए?
0: एक बहुत फिलोसफी का गीत है, तीसरी कसम का, और बहुत भोले भाले राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश ने गाया, शैलेन ने लिखा। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, आप इजाजत दे तो मैं गुनगुनाऊं।
1: चलिए गुनगुना दीजिए जरा।
0: सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास।

0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम तो बताएं।
1: जी मैं तकिया मरिया हूँ, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से। मैम मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ।
0: जमील भाई नमस्कार।
1: जी नमस्कार मैम, नमस्कार। और मैम क्या हाल चाल है?
0: बस सब मेहरबानी है ऊपर वाले की, और आप सभी की शुभकामनाएं हैं। वो विविध भारती परिवार के साथ तो हमेशा है ही, तो हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं।
1: बहुत आज खुशकिस्मती है मेरी कि आज मुझसे शिफाली कपूर जी से मेरी बात हो रही है।
0: जमील भाई खुशकिस्मती तो हमारी है जो आप सभी श्रोताओं से बात करने का मौका मिला हमें। जी
1: 2019 में मेरा कॉल लगा था, अब जाके मेरा कॉल लगा है मैम।
0: अरे वाह, बड़ा लंबा अरसा हो गया। अच्छा ये बताएं जमील भाई कि इतना लंबा अरसा 2019 से आज है 2026, तो इतना जो दरमियान जो वक्त रहा, तो उसमें आपने ट्राई किया होगा फोन बीच में, अभी जब शुरू हुआ है ये हेलो फरमाइश, तो निराश तो नहीं हुए ना?
1: निराशा हुआ है मैम, बहुत अच्छा। दिल से मैं ट्राई कर रहा था, आज जाके कामयाबी मिली है तो बहुत खुशी मिल रही है मैम।
0: आपकी खुशी हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद को आपकी जगह रखकर महसूस कर सकती हूँ भाई कि कितनी खुशी होती है। तो बताएं जरा जौनपुर के हालचाल बताएं, अपने हालचाल बताएं।
1: जी जौनपुर का हाल तो मैम बहुत गर्मी पड़ने लगी है मैम, और लगभग इस वक्त 37 डिग्री हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर है मैम।
0: मुंबई भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर भी।
1: जी जी, और गाने पे आ जाते हैं मैम।
0: आ जाइए गाने पे, बिल्कुल अपनी पसंद बताएं।
1: टीम का नाम है महबूब की मेहदी, और आवाज मोहम्मद रफी साहब की, और इसको मैम थोड़ा सा गुनगुना देना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल गुनगुनाइए।
1: ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ओ ये जो चिलमन है दुश्मन।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। विविध भारती के कार्यक्रम हेलो फरमाइश में किसने फोन किया, कहाँ से फोन किया?
1: जी नमस्कार मैम, मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से फोन किया है। मैं विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: विश्वजीत जी, अपने बारे में तो कुछ बताइए।
1: मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए रेडियो अच्छा। कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है विश्वजीत जी?
1: हेलो फरमाइश छाया गीत, और बहुत ही प्रोग्राम आपका है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप ये बताइए कि आप मोबाइल ऐप पे सुनते हैं या ट्रांजिस्टर रखा हुआ है आपने?
1: नहीं नहीं ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, तो ट्रांजिस्टर में बहुत अच्छा से सुन लेता हूँ, आवाज का बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा ये बताएं कि आप करते क्या हैं?
1: मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, खेती बाड़ी में काम करता हूँ। मेरा घर के आसपास से थोड़ा सा खेती बाड़ी में काम कर लेता हूँ।
0: अच्छा अच्छा
1: मेरा माँ है पापा है तो उसके साथ जाता हूँ खेत में, तो थोड़ा सा देखभाल करती है तो इसीलिए थोड़ा सा खेती बाड़ी में कुछ कुछ काम मैंने कर लेता हूँ।
0: और गीत संगीत से लगाव है आपका?
1: हाँ तो गीत तो जब भी कार्यक्रम सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा इधर मौसम बहुत बारिश हो रही है, ज्यादा तो गर्मी थी तो इसीलिए बारिश हुआ है तो बहुत अच्छा है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, तो हमारा इधर एक मंदिर है, विख्यात मंदिर है माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर।
0: अच्छा
1: तो यह से बहुत ही लोग आती है वो घूमने के लिए, बाहर से डिगी है और डिगी के आसपास से बहुत ही सुनसान है, बहुत अच्छा लगती है वो डिगी के बारे में।
0: तो वहाँ पर आने का कोई खास मौसम होता है या किसी खास महीने में आया जाता है घूमने के लिए, या 12 महीने में किसी भी समय आ सकते हैं?
1: किसी भी समय में आते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा इधर तो हर मौसम में बहुत अच्छा है।
0: अच्छा ये बताएं कि आज आपने हेलो फरमाइश कार्यक्रम में फोन किया है तो कोई गाना भी तो चुना होगा अपनी पसंद का?
1: जी जी मेरे को गाना सुना दीजिए, साजन चले ससुराल मूवी से, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके वादा निभाना चाहती है। हमारे इधर बांग्ला चलते है, बंगाली भाषा
0: जी,
1: तो बंगाली लोग रहती है तो कार्यक्रम हिंदी में होती है तो बहुत अच्छा, लोग जानती है हिंदी भाषा सीख जाती है
0: जी,
1: तो बहुत अच्छा लगती है आपका कार्यक्रम।
0: और विश्वजीत जी आपने जितने मेहनत से हिंदी बोली है बहुत अच्छा लगा, और आपने जो ये बात कही कि आप विविध भारती सुनते हैं, हिंदी में कार्यक्रम आते हैं उसके माध्यम से आप हिंदी सीख लेते हैं, तो ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा। और पूरी करते हैं आपकी पसंद, सुनिए ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: जी बहन जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, आप बताएं कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं
1: जी? मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूं। बहन जी
0: बताएं जरा अपने बारे में।
1: एकदम अच्छे हैं और हम खेती करते हैं और साथ में फूलों वाला काम डेकोरेशन का।
0: अच्छा, और वैसे खेत में आजकल क्या लगा हुआ है?
1: इस समय खेत में कुछ नहीं है, खेत तो खाली है। इस समय बस जुताई हो चुकी है, अब बारिश हो जाए और उसके बाद फिर मूंगफली की बुवाई होगी।
0: अरे वाह, अभी तो चटक गर्मी होगी।
1: जी जी,
0: तो खेत वेत में जाते हैं अभी कि नहीं जाते हैं?
1: जी जाते हैं, अभी क्या है ना, कुछ कटहल के और आम के पेड़ लगे हुए हैं।
0: अच्छा,
1: तो जाते रहते हैं, उसमें फल भी लगे हुए हैं।
0: कौन से फल लगाए हैं?
1: अभी आम है और कटहल है।
0: आम कौन सा है, आम की कौन सी जाति?
1: दशहरी है, दशहरी।
0: क्या बात है भाई, अपने उत्तर प्रदेश की तरफ का जो दशहरी होता है उसका तो स्वाद ही अलग होता है।
1: बिल्कुल, सबसे नंबर एक का स्वाद होता है उसके।
0: और बताएं आपके जो शहर है वहाँ के क्या हालचाल है और क्या चीज प्रसिद्ध है? अगर हम आते हैं महोबा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा?
1: हमारे यहाँ तो देखने के लिए जैसे काफी मंदिर भी है, जैसे झांसी हमारे पास में झांसी रानी लक्ष्मीबाई का किला है और महोबा भी किला बने हुए हैं राजाओं के, और हमारे बुंदेलखंड में जो चरखारी है वहाँ पे कई तालाब है और एक दूसरे से सभी तालाब ज्वाइंट है।
0: अच्छा,
1: वो भी बहुत जी देखने लायक है।
0: क्या बात है, तो यानी हमें एक बार महोबा आना ही पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल आना पड़ेगा आपको।
0: लेकिन ऐसे सीजन में आना पड़ेगा जब हमें दशहरी आम मिले।
1: अभी 15-20 दिन बाद बस पकने ही वाले हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, खूब आनंद लीजिए भाई, तो बहुत ही अच्छा फल है और इस तो आमों का राजा कहलाता है ये। बहरहाल चलिए, ये बता दीजिए कि आज आपका फोन लगा हेलो फरमाइश में, तो कौन सी पसंद है आपकी, गाना बताएं?
1: जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है संगीत और गीत के बोल है सुनो हसीना काजल वाली।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: अरे

0: हेलो फरमाइश।
1: शेफाली कपूर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद बनारस से आपसे मुखातिब हूँ मैम।
0: भाई बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत।
1: और मैं 2003 से रेडियो भी भारतीय का सुनने वाला हूँ मैम। मैं घाट कोपर में रहता था तब से सुनता हूँ, लेकिन अभी आज मेरी बात हो रही, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: तो ये बताएं कि मुंबई के घाट कोपर से बनारस कैसे पहुँच गए?
1: जी मैं वहाँ 5 साल हेयर कटिंग किया हूँ मैम, उसके बाद मैं फिर बनारस शिफ्ट हो गया हूँ। बनारस में ही यहाँ एक दुर्गा कुंड एरिया है, अस्सी घाट के बगल में, वहीं मैं रहता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं?
1: यही अपना ही बिजनेस है, हेयर कटिंग का ही काम करता हूँ मैम।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, अपना सैलून है परवेज भाई का वाराणसी में?
1: जी जी 20 साल से ऊपर हो गया होगा, मेरी फोन आज लगी है।
0: क्या बात है भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ये आप सभी का अपना कार्यक्रम है हेलो फरमाइश।
1: रेडियो सुन सुन के मैं जो इतना जो भी बचपन से फिर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है आप लोग की आवाज।
0: जो इस समय आपकी आवाज है और आपके अंदाज है ना, वो बता रहे हैं कि आप खुशी से लबरेज हैं इस समय विविध भारती के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और जरा ये बताएं कि बनारस की गलियों में वो जो आलू की सब्जी और कचौड़ी मिलती है, उसका आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं?
1: जी जी मैम, बीच फेमस है, उस गली का नाम है कचौड़ी गली मैम, बहुत फेमस है वो रहता है। उस गली की खूबसूरती है कि अगर आप गली के अंदर जाएंगे, इतनी अच्छी खुशबू आती है, हींग की खुशबू आती है, घी देसी घी की खुशबू आती है कि एकदम खाने का मन तो हो ही जाता कोई भी रहे। यहाँ तक विदेशी पर्यटक भी वो स्वाद चखते हैं मैम। और एक नया घाट बना है हमारे यहाँ नमो घाट मैम, वो बहुत फेमस घाट हुआ है।
0: गंगा आरती तो बहुत ही बढ़िया होता है।
1: गंगा आरती मैम आप दशा समीप घाट पे देखिएगा, बहुत खूबसूरती होता है। और हमारे अस्सी घाट पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी अब गंगा आरती होने लगी है मैम, बहुत ही अच्छी होती है।
0: जी जी, और उसका जो अक्स गंगा जी में पड़ता है वो तो अद्भुत होता है। चले परवेज भाई, आपकी इस खुशी को हम दुगना कर देते हैं, अब बताएं आपकी आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
1: जी मैम, फिल्म रहेगी लव इज शिमला मैम, गाने का बोल है अलिफ जोहर आल अली जोहर आल अली जोहर ए अली तो, ये मोहम्मद रफी जी की मीठी आवाज में है मैम गाना ये।
0: अच्छा, सुने अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार शेफाली दीदी
0: नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बात कर रहा है हमसे?
1: जी। मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: ओ साहिल भाई, क्या हालचाल है?
1: ठीक हो? आप सुनाइए दीदी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक हैं। आप सबकी शुभकामनाएं साथ में हैं। और अपने बारे में बताएं साहिल भाई।
1: जी मैं पश्मीना, जो कश्मीर आर्ट है ना, उसी के साथ करता हूँ दीदी।
0: शॉल वगैरह बनाते हैं?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, तो ये सारा हाथ का काम
1: जी
0: होता होगा, हाथ से ही करते होंगे आप?
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी अपनी शॉप है या आप कहीं जाते हैं या घर से करते हैं ये काम? कैसे करते हैं?
1: मैं घर से ही करता हूँ दीदी, ये काम बनाते हैं तो फिर उसको खुद ही बेचते हैं।
0: अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम?
1: जी बिल्कुल, लगभग 2012 से।
0: तो काफी लंबे समय से जुड़े होंगे आप विविध भारती के साथ भी।
1: जी विविध भारती के साथ तो मैं जुड़ा हूँ, और आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने 2 मई से प्रोग्राम शुरू किया है मन चाहे गीत,
0: जी जी जी जी
1: और आपने कुछ प्रोग्रामों में चेंजेस भी लाए हैं, तो बहुत अच्छी लग रही है हमें वो आपकी चेंजेस।
0: अच्छा, तो आपको ये जो बदलाव हुए हैं ये पसंद आ रहे हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: और वैसे क्या आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं या कुछ खास ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें आप बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं?
1: प्रोग्राम तो मैं सभी सुनता हूँ दीदी, आज के फनकार आता है, सुरीला सफर आता है, और छाया गीत, ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो आपके हमें मिलते हैं पिटारा, वो हमें सभी सुनने को मिलते हैं।
0: विविध भारती से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है?
1: प्रोग्राम तो सभी अच्छे हैं।
0: और अब ये बताएं जरा कि आप श्रीनगर के इस समय हाल कैसे हैं, मौसम कैसा है?
1: तो इस वक्त मौसम बहुत ही अच्छा है, गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, तो फिलहाल जो दिनों पहले यहाँ का जो तापमान था वो 31 भी हो गया।
0: अच्छा, तो आज साहिल भाई कौन सा गाना सुनवा दिया जाए आपको?
1: फिल्म का नाम है डोली, उसी का एक नगमा है आशा जी की आवाज में, आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर।
0: भाई साहिल भाई, ये तो आपने मेरी पसंद चुरा ली। तो चलिए अपनी इस प्यारी सी बातचीत को यहीं रोक देते हैं और अब सुनते हैं आपकी पसंद का, और हमारे तमाम श्रोता होंगे उनको भी ये गाना पसंद होगा, तो हम सब सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, जरा बताएं तो।
1: मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम भाई क्या हाल चाल है।
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं सबसे बड़ा फैन आकाशवाणी विविध भारती का हूँ और उसमें से सबसे अच्छे मुझे आपके कार्यक्रम लगते हैं। हेलो सहेली में आप आते हो, सखी सहेली में आप आते हो, हेलो फरमाइश में आप आते हो, तो चार चांद लग जाते हैं।
0: चलिए भाई, आपको विविध भारती के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आप विविध भारती से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
1: मेरी आपसे बात हो रही है ना, तो यूँ समझिए कि मेरी धड़कन एकदम से तेज हो चुकी है।
0: भाई ऐसा
1: मुझे
0: क्यों?
1: बहुत खुशी हो रही है क्योंकि विविध भारती पे कॉल लगना है ना, ऐसा होता है कि आपको मतलब सारी खुशियां मिल गई एक साथ में।
0: हम तो अपने सभी श्रोताओं के लिए हमेशा यही कामना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी में तरक्की करते रहें। तो अब अपने बारे में बताएं प्रेम भाई, क्या करते हैं वहाँ पे?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और मोबाइल ऐप से आकाशवाणी विविध भारती और जितने भी प्रोग्राम आते हैं ना उनको सुनता हूँ मोबाइल ऐप से। और अगर हम कहीं बाहर भी जाए ना फिर भी हमें मोबाइल ऐप से आपके कार्यक्रम आसानी से सुनने को मिल जाते हैं। मैं बताऊँ आपको, विविध भारती के जो कार्यक्रम आते हैं ना उसमें से मुझे हेलो फरमाइश और हेलो सहेली, इसके अलावा पिटारा के तहत में जो आता है पहले सेहतनामा आता था, अभी सेलुलाइट के सितारे शुरू किए हैं, और इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं। और जब रात में हवा मेल आता है ना 8 बजे, उसका तो हम सबसे बड़े फ्रेंड हैं।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने तो सभी कार्यक्रमों के नाम ले दिए क्योंकि सभी कार्यक्रम आपको पसंद हैं, यानी आप तो सुबह से शाम सुनते ही सुनते हैं विविध भारती। जरा ये बताइए कि इस समय जो आप हमें कॉल कर रहे हैं खेत से कर रहे हैं क्या?
1: ये इस समय तो हम घर पे ही हैं, अभी गर्मी का टाइम है ना तो खेत में अभी काम कुछ भी नहीं बचा है, बस फसल निकाल के घर ले आए हैं, खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया है, तब बरसात होगी ना तो सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी जुलाई में।
0: अच्छा तो जरा ये बताएंगे आज कौन सा गाना सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है अर्पण और गाने के बोले लिखने वाले ने लिख डाला मिलन के साथ जुदाई, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गाना काफी अच्छा लगता है।
0: जी गाना है ही अच्छा, इसका गीत संगीत दोनों।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती विदर्भ महाराष्ट्र से हिम्मत राज श्रृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी, आपका पुराना श्रोता।
0: हिम्मत भाई नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। अब आप अपने बताएं, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या चल रहा है आजकल?
1: आजकल कुछ नहीं दीदी, काम पर था, काम पर से अभी फोन लगाया मैंने।
0: अच्छा, तो आप बताएं वहाँ पर क्या काम करते हैं अमरावती में?
1: मैं मजदूरी का काम करता हूँ दीदी।
0: अच्छा, तो इस समय छुट्टी लेकर आए हैं फोन लगाने के लिए?
1: हाँ दीदी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने छुट्टी ली, तो वो छुट्टी जो है ये हो गया कि आपका काम बन गया उस छुट्टी में।
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे शिपाल दीदी हमारे आमने सामने बैठी है रेडियो के।
0: देखिए रेडियो ऐसा माध्यम है हिम्मत भाई कि ऐसा लगता है कि हम सब आमने सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बताएं अमरावती के क्या हालचाल है? खूब गर्मी पड़ रही है?
1: अमरावती विदर्भ में बहुत गर्मी दीदी, इधर पारा बहुत गर्म है दीदी, 70 डिग्री सेल्सियस है, किसी 47 है।
0: तो ये बताइए कि गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं?
1: मैं तो दीदी छतरी लेके जाता हूँ साइड पर, कान को बांधता हूँ कपड़े और ठंडा पानी पीता हूँ और समय पर भोजन करता हूँ दीदी और शाम में 5 बजे घर पे आता हूँ।
0: आप जरा बताएं आज कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: पूरी जब जब जुल्फे तेरी और आशा भोसले यानी मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना है दीदी।
0: तो चलिए अब पहुंच रहा है अमरावती में आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: आंखों में रहने वालों को याद नहीं करते, दिल में रहने वालों की बात नहीं करते। आप तो हमारी रूह में बसे हैं, इसलिए मुलाकात की फरियाद नहीं करते।
0: अरे वाह भाई वाह, ये

0: कौन शायर आए हैं भाई, जरा बताएं अपना नाम तो बताएं।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम।
0: दिलीप पाहुजा जी ने उदयपुर से झीलों की नगरी से हमें फोन किया है। गर्मी के क्या हाल चाल है उदयपुर में?
1: गर्मी तो 40-42 के आसपास चल रही है।
0: ऐसे में आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: अभी थोड़ा ठंडा है।
0: गर्मी के मौसम में कामकाज बहुत इफेक्ट करता होगा, क्योंकि इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपका किस चीज का काम है?
1: टेलरिंग वैसा ही है मतलब, सिलाई का
0: अपनी शॉप है,
1: जमा कोट वगैरह अभी भैया की शॉप है।
0: अरे वाह क्या बात है। आप जेंट्स टेलर हैं और या लेडीज टेलर हैं या दोनों, लेडीज जेंट्स?
1: जेंट्स।
0: अच्छा,
1: जेंट्स ओनली।
0: तो गर्मी का मौसम है तो कामकाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपका? आपको जल्दी जल्दी देना पड़ता होगा, तो उसके लिए कारीगर ज्यादा लगाने पड़ते होंगे।
1: कारीगर तो ज्यादा ही है मैडम, मालिक की कृपा से, और उनको टाइम पे भी मिल जाते हैं कपड़े।
0: क्या बात
1: लेकिन
0: है।
1: लेकिन इस बार थोड़ी सी शादियां कम है।
0: अच्छा,
1: इस हिसाब से थोड़ा फर्क है।
0: अच्छा,
1: पर्यटकों की तो भारी धूम मची हुई है अभिषान के अंदर।
0: हम इसी पॉइंट पर आने वाले थे, वही बात आपने छेड़ दी कि भाई उदयपुर और राजस्थान में पर्यटकों के क्या हालचाल हैं, भाई इतनी गर्मी में भी पर्यटक हैं या नहीं है?
1: जी बिल्कुल है मैडम, 12 ही महीने उदयपुर के अंदर पर्यटक मिलेंगे ही मिलेंगे।
0: जी जी जी,
1: चाहे गर्मी कितनी भी हो।
0: तो ये बताएं कि उदयपुर में और चीजें ऐसी क्या हैं जो देखी जा सकती हैं झीलों के अलावा?
1: झीलों के अलावा तो एक मानसून पैलेस है, और वो भी अच्छा है। थोड़ा सा ही आगे कुंभलगढ़ है, और 40-45 किलोमीटर की दूरी पर नासिक द्वारा श्रीनाथ जी का बहुत ही शानदार मंदिर है।
0: जी जी,
1: उसके बीच में एकलिंगपुरा जी का, एकलिंगपुर मतलब एकलिंगगढ़ के नाम से महादेव जी का मंदिर है, और अभी पिछले 3-4 वर्षों में नया एक वैष्णो देवी माता का मंदिर है, उदयपुर में ही हमारे सिंधी समाज के द्वारा ही बनाया गया है, निर्मित किया गया है।
0: अच्छा,
1: सेम टू सेम जैसा वैष्णो देवी में बना हुआ है, ज्योत भी वहीं वैष्णो देवी माता जी से ही आई थी, और लंगर 12 ही महीने चालू रहता है।
0: अच्छा, अब ये बताएं कि हमें इंतजार है इस बात का कि आप बताएं अपने पसंद का फिल्मी गाना आज के कार्यक्रम के लिए।
1: एक रफी साहब का गाना याद आ रहा है मुझे, हवस मूवी से, तेरी

0: हेलो फरमाइश।
1: शेफाली बहन को नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। और
1: आज हमारे मन में इच्छा थी कि शेफाली बहन से बात करेंगे, तो आज पूरी हो गई।
0: क्या बात है, तो हम जाने कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: जी मैं आपका बड़ा भाई उदयलाल टेलर उदयपुर से बात कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, जरा हालचाल तो बताएं अपने।
1: हालचाल हमारा मस्त है, गर्मी 44 डिग्री चल रही है और राजस्थान में गर्मी बहुत ही होती है।
0: जी राजस्थान की गर्मी तो फेमस है। उदय भाई वहाँ पर क्या काम काज है?
1: हमारा टेलरिंग का काम है, जेंट्स कपड़ों की सिलाई करते हैं।
0: क्या बात है भाई।
1: मैं 55 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ और अभी मेरी उम्र है 74 साल।
0: क्या बात है, 55 साल से आप विद्यार्थी के साथ जुड़े हुए हैं।
1: जी
0: आपने इन 55 सालों में बहुत बदलाव देखे हैं विविध भारती में।
1: मैंने सबसे पहले तो वाल वाले रेडियो सुने थे, उसके बाद में चार चार सेल वाले ट्रांजिस्टर आए थे, फिर दो सेल वाले आए थे
0: जी,
1: और अभी तो मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं।
0: सबसे
1: परिवर्तन हुआ है।
0: अच्छा ये बताएं कि सबसे ज्यादा आनंद कहाँ सुनने में, कैसे सुनने में आया? मोबाइल पर अब आप ज्यादा अपने को सहज महसूस कर पाते हैं या पहले जमाने में जैसे आप सुनते थे उसमें अपने को सहज महसूस करते थे?
1: नहीं, रेडियो पर जो आनंद आता था वो मोबाइल में नहीं आता है।
0: ये बात बिल्कुल आपने सही कही है।
1: समय होता उसके 5 मिनट पहले से हम वो ट्यून लगाते कोशिश करते।
0: सही कह रहे हैं,
1: ट्यून बड़ी अच्छी लगती थी।
0: जी जी जी, तो अभी भी रेडियो अपने पास रखा है या नहीं रखा है?
1: नहीं रखा है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आज बंद है।
0: हाँ तो ये पुरानी यादें हैं जो हमेशा साथ रहती हैं।
1: जी जी।
0: तो अब ये बताएं दिल खुश करने वाला वो कौन सा गाना है जो आपने हेलो फरमाइश के लिए आज पसंद किया है?
1: फिल्म वो कौन थी का काल जी गाना है, लता जी की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान साहब
0: जी
1: शब्द है
0: जी,
1: और मदन मोहन जी की मधुर धुन है
0: जी,
1: लग जा गले।

साथियों, घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा कि आज के लिए बस इतना ही। आपकी बातचीत और आपकी फरमाइशें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम सिर्फ गाने नहीं सुन रहे हैं, दिलों को जोड़ रहे हैं। साथियों, जिंदगी चाहे जितनी तेज क्यों न हो जाए, एक अच्छा गीत हमें हमेशा कुछ पल ठहरना सिखा देता है। बहरहाल, आपको बता दें कि फोन पर हमारी अगली मुलाकात होगी अगले सप्ताह सोमवार को सुबह 11 बजे से विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से। हम रिकॉर्ड करेंगे फोन पर आपसे की गई बातचीत। तो हमारे टेलीफोन नंबर्स फटाफट नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 400-24662, नंबर एक बार फिर से 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022022। चलिए अब हमारा दूसरा नंबर नोट कर लीजिए, 2867-0288, 2867-0288। और हाँ, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन, जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए, वे कृपया 2 माह के बाद ही हमें कॉल करें, ताकि अन्य श्रोताओं को भी उनके इस पसंदीदा कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिल सके। चलते चलते आपको ये भी बता दें, आज के कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस सुंदर सजीले कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। साथियों, रिश्ते सिर्फ मुलाकातों से नहीं, एहसासों से भी बनते हैं। तो हम फिर मिलेंगे इसी स्नेह और अपनेपन के साथ। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत।

0: आप मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: हेलो फरमाइश।

FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो दोस्तों, मैं हूं आज आपका दोस्त और होस्ट संजीव गौतम और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जिसमें होगी आज की बात कुछ रोचक जानकारियों के साथ और साथ ही करवाएंगे आपका मनोरंजन कुछ फिल्मी गीतों के साथ। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का युवा केवल नौकरी खोजने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह खुद का व्यवसाय शुरू कर दूसरों को भी रोजगार देना चाहता है। ऐसे सपनों को नई उड़ान देने का काम कर रही है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। दोस्तों, आज के डिजिटल और स्टार्टअप युग में छोटे उद्योग, ऑनलाइन बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प, मोबाइल रिपेयरिंग, डेयरी और कई स्वरोजगार क्षेत्रों में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण पर सब्सिडी प्रदान करती है। खास बात यह है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवा इसका लाभ उठा सकते हैं। यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं देती, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास भी देती है। आज जरूरत है कि युवा नौकरी के पीछे भागने के साथ साथ जॉब क्रिएटर बनने की सोच विकसित करें। यदि आपके पास हुनर, मेहनत और नया विचार है, तो यह योजना आपके सपनों को साकार करने का मजबूत माध्यम बन सकती है। युवाओं को चाहिए कि वे अपने कौशल को पहचानें, नई तकनीक को सीखें और सरकार की योजनाओं का सही उपयोग करें। याद रखिए, छोटा व्यवसाय ही बड़े सपनों की शुरुआत होता है। तो फिलहाल साथियों, हमारी चर्चा तो आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
2: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
3: लग जा गले पे फिर हंसी रात।
1: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं, हर लफ्ज में छुपी है।

0: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
1: मेरी गल होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
2: जब बीती कल की मिठास और आज की धड़कन

0: 103 आकाशवाणी झांसी पर।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह, फंसा।
2: अनजान ऐप से बचें।
0: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, यह कहावत आज के समय में पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आधुनिक जीवन शैली में युवा पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और मोबाइल की दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हैं कि खेल से दूरी बनती जा रही है। लेकिन खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि स्वस्थ और संतुलन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, खेल हमारे शरीर को मजबूत, सक्रिय और ऊर्जावान बनाते हैं। नियमित खेल से शरीर की कार्यक्षमता बढ़ती है और कई बीमारियों से बचाव होता है। वहीं मानसिक रूप से भी खेल हमें तनाव, चिंता, नकारात्मक सोच से दूर रखते हैं। खेल आत्मविश्वास, अनुशासन और टीम भावना विकसित करते हैं, जो युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के युवा करियर की दौड़ में मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं, ऐसे में खेल उन्हें नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच प्रदान करते हैं। मैदान में मिली हार और जीत जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाती है। आज भारत के कई युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा और मनु भाकर जैसे खिलाड़ी युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। आइए खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ, आत्मविश्वासी तथा सशक्त भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। तो फिलहाल साथियों, हमारी चर्चा तो आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है आप सभी के मनोरंजन का, तो करवाते हैं आपका मनोरंजन इस फिल्मी गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म बागी 2 से, जिसे गाया है अंकित तिवारी और श्रुति पाठक ने।

0: दोस्तों अभी सुना आपने गीत जिसे हमने लिया था फिल्म बागी 2 से, जिसे गाया था अंकित तिवारी और श्रुति पाठक ने। साथियों, मेहनत, अनुशासन और जुनून, यही खेल की असली पहचान है, क्योंकि आज का दौर केवल पढ़ाई और पारंपरिक नौकरियों तक सीमित नहीं है। खेलों की दुनिया अब युवाओं के लिए सफलता, पहचान और रोजगार का बड़ा माध्यम बन चुकी है। पहले खेल को केवल मनोरंजन माना जाता था, लेकिन आज यह करोड़ों युवाओं के सपनों का करियर बन रहा है। दोस्तों, स्पोर्ट में करियर की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। युवा क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स और शूटिंग जैसे खेलों में खिलाड़ी बन सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट कोच, फिटनेस ट्रेनर, योग प्रशिक्षक, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट पत्रकार, कमेंटेटर और स्पोर्ट मैनेजर जैसे अनेक क्षेत्र भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज खेलो इंडिया जैसी योजनाएं युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान कर रही हैं। वहीं नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु जैसे खिलाड़ियों ने साबित किया है कि खेलों में मेहनत करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा जा सकता है। जरूरत है केवल आत्मविश्वास, निरंतर अभ्यास और सही मार्गदर्शन की। याद रखिए, खेल केवल फिटनेस नहीं बल्कि उज्जवल भविष्य की नई पहचान भी है, और यही संदेश हमें स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में भी देखने को मिलता है। उन्होंने युवाओं से कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आज आवश्यकता है कि युवा खेलों को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व विकास और उज्जवल भविष्य का माध्यम बनाए। जब युवा स्वस्थ, आत्मविश्वासी और अनुशासित होंगे, तभी राष्ट्र भी मजबूत बनेगा। आइए स्वामी विवेकानंद जी के मार्गदर्शक विचारों को अपनाएं और अपने जीवन में खेल, मेहनत और सकारात्मक सोच को स्थान दें और अपने सपनों को नई उड़ान दें। और कैसे दें, आइए जानते हैं इस वार्ता के माध्यम से, जिसमें वार्ताकार हैं पीयूष कुमार।
1: उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी के इसी कथन के साथ मैं पीयूष कुमार 12 जनवरी 1863 में भारत के कलकत्ता शहर की माटी पर जन्मे विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बचपन से ही वे अत्यंत जिज्ञासु, तर्कशील और निर्भीक थे। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या ईश्वर

सचमुच है। यह प्रश्न उन्हें हर उस व्यक्ति की ओर ले जाता जो धार्मिक और आध्यात्मिक होते। अंततः यही प्रश्न उन्हें रामकृष्ण परमहंस के पास ले गया। जब नरेंद्र नाथ दत्त जी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? तो उत्तर मिला, हाँ मैंने भगवान को देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यही वह क्षण था जिसने एक जिज्ञासु व्यक्ति को एक महान साधक बना दिया। अब उस घटना की ओर चलते हैं जिसने भारत को विश्व मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ। तब भारत से कोई आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं भेजा गया। स्वामी विवेकानंद जी बिना किसी निमंत्रण के, बिना पैसे के वहां पहुंच गए। कई दिनों तक उन्हें वहां प्रवेश नहीं मिला, लेकिन जब अवसर मिला तो पूरे मंच पर वे खड़े हुए और बोले, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। इतना सुनते ही पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भर गया। उस भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से आता हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकारता सिखाई। यह कोई भाषण नहीं था, यह गुलामी में जकड़े भारत की आत्मा की गर्जन थी। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं को राष्ट्र की रीढ़ मानते थे। वे कहते थे, मुझे 100 ऐसे युवा दे दो जो चरित्रवान हो तो मैं भारत का कायाकल्प कर दूंगा। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मविश्वास, चरित्र, साहस और सेवा भाव था। उन्होंने स्पष्ट कहा, वह शिक्षा जो आपको आत्मनिर्भर ना बना पाए वह व्यर्थ है। आज जब युवा केवल डिग्री पैकेज के पीछे भाग रहे हैं, विवेकानंद जी हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल जीविका नहीं अपितु योगदान भी है। दोस्तों, आज के देश का सबसे बड़ा प्रश्न है कि हमारी युवा की ऊर्जा किस दिशा में बह रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने पहले भी चेतावनी दी है कि यदि युवा शक्ति को सही मार्गदर्शन न मिले तो फिर वह शक्ति राष्ट्र के लिए संकट भी बन सकती है। आज के समय में जब हम चारों ओर से डेटा, इन्फॉर्मेशन और र्यूमर से घिरे हुए हैं, तब विवेकानंद जी के सिद्धांत युवाओं की दिशा बदलने का सबसे मजबूत आधार बन सकते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है आत्मविश्वास। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि स्वयं पर विश्वास रखना ही धर्म की शुरुआत है। आज का युवा खुद को दूसरों से कंपेयर करके कमजोर समझता है, कभी सोशल मीडिया की चमक से, कभी गलत संगति की खनक से और कभी कभी असफलताओं से। विवेकानंद जी का मार्ग स्पष्ट है, जब तक युवा अपने भीतर की छुपी हुई शक्तियों को नहीं पहचानता तब तक कोई व्यवस्था उसे मजबूत नहीं बना सकती। यदि आज का युवा यह मान ले कि वह केवल भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि बदलाव की ताकत भी रखता है तो उसकी ऊर्जा भटकाव से निकलकर निर्माण की ओर मुड़ सकती है। दूसरा सिद्धांत उद्देश्यपूर्ण जीवन, डायरेक्शन फुल लाइफ। विवेकानंद जी अक्सर कहते हैं कि बिना लक्ष्य के जीवन नाव की तरह होता है, एक ऐसी नाव जो किसी भी दिशा में बह सकती है। आज बहुत से युवा मेहनत तो कर रहे हैं परंतु उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं। द ई मिथ रिविजिटेड जो कि एक रिवॉल्यूशनरी बिजनेस बुक है, उसके ऑथर माइकल ई गर्बर ने कहा है, सिस्टम परमिट्स ऑर्डिनरी पीपल टू अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रेडिक्टेबली, हाउएवर विदाउट अ सिस्टम इवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रेडिक्टेबली अचीव इवन ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। विवेकानंद जी का भी यही मानना है, एक विचार चुनो, उस पर काम करो और अपना जीवन लगा दो। सेट अ गोल एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तीसरा सिद्धांत चरित्र निर्माण, कैरेक्टर डेवलपमेंट। विवेकानंद जी अक्सर कहा करते थे कि एक चरित्रहीन व्यक्ति राष्ट्र के लिए खतरनाक हो सकता है। आज जब नैतिक मूल्यों को पिछड़ा समझा जाने लगा है तब विवेकानंद जी हमें ये याद दिलाते हैं कि सच्ची ताकत सत्य, ईमानदारी और आत्मसंयम में होती है। यदि शिक्षा के साथ साथ युवाओं में चरित्र, अनुशासन और जिम्मेदारी का विकास किया जाए तो एक इंसान एक अच्छा नागरिक भी बन सकता है। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया चौथा सिद्धांत है सेवा और संवेदना। विवेकानंद जी कहा करते थे कि गरीब की सेवा ही सच्चा धर्म है। आज का युवा जब केवल अपनी निजी लाभ के लिए सीमित हो जाता है तब समाज टूटता है, लेकिन अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि समाज में गरीबी, अशिक्षा, अन्याय, नफरत, स्वार्थ की भावना पर्याप्त है, जिसको केवल और केवल सेवा भाव से ही बदला जा सकता है। सेवा हमें केवल समाज से ही नहीं अपितु खुद से भी जोड़ती है। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया पांचवा सिद्धांत है निर्भीकता। विवेकानंद जी स्पष्ट तौर पर कहा करते थे, डरो मत, डर पाप है। आज का युवा सफलताओं से घबराता है, आलोचनाओं से डरता है
और कई बार सच बोलने से भी झिझकता है। यदि विवेकानंद जी की

0: निर्भीकता को जीवन में अपनाया जाए तो युवा अन्याय के सामने चुप नहीं रहे और सही बात करने से भी नहीं हिचकिचाएगा और यही साहस समाज को आगे बढ़ाता है। छठा सिद्धांत है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, राष्ट्र प्रेम। विवेकानंद जी के लिए राष्ट्र कोई भूमि का टुकड़ा नहीं अपितु एक जीवित चेतना थी। आज यदि युवा राष्ट्र प्रेम को केवल नारा नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों का पुनर्निर्माण ले चले तो निश्चित तौर पर विकसित भारत 2047 की संकल्पना की प्राप्ति होगी। विवेकानंद जी के लिए राष्ट्र निर्माण का अर्थ है सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना। आज का युवा यदि अपने करियर तक ही सीमित रह जाएगा तो वह राष्ट्र का निर्माण तो नहीं अपितु सिस्टम का उत्पाद बनकर रह जाएगा। युवा होना प्रश्न पूछना है लेकिन जिम्मेदारी के साथ। युवा होना विद्रोह करना है लेकिन विवेक के साथ। युवा होना अपने सपनों को देखना है लेकिन समाज को साथ लेकर। आज आवश्यकता है ऐसे युवाओं की जो धर्म को विभाजन नहीं बल्कि करुणा समझें, जो राजनीति को सत्ता नहीं बल्कि सेवा माने, जो सफलताओं को केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व समझें। और वैसे भी स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, ताकत शरीर में नहीं आत्मा में होती है। आज का युवा ताकतवर है। ताकतवर है तकनीक में, ताकतवर है जानकारी में और ताकतवर है सपनों में। लेकिन कई बार ये युवा भीतर से टूटा हुआ है, भटका हुआ है। हम रोज रील्स स्क्रॉल करते हैं, किसी की सफलता, किसी की चमक, किसी की परफेक्ट जिंदगी और फिर चुपचाप खुद से पूछते हैं, क्या मैं पीछे रह गया? दोस्तों, विवेकानंद जी भी पीछे से ही आए थे। ना संसाधन थे, ना पहचान थी, ना सिफारिश। शिकागो की सभा में वे सबसे अलग दिखते थे लेकिन जब वे बोले तो पूरी दुनिया ने सुना। क्यों क्यों सुना? क्योंकि उनके शब्द किताबों से नहीं आत्मविश्वास से निकले थे। आज का युवा भी यदि खुद पर भरोसा करना सीख ले तो कोई मंच छोटा नहीं, कोई देश दूर नहीं। हालांकि बदलते समय के दौर में हमारा देश भी बदल रहा है, देश का युवा भी बदल रहा है और हमारे देश का भविष्य भी बदल रहा है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान जब विश्व की बड़ी बड़ी सुपर पावरों की प्रणालियां ध्वस्त हो गई, तब हमारे भारतवर्ष ने 100 से भी अधिक देशों की वैक्सीन की सहायता की, ऐतिहासिक G20 का सफलतापूर्वक आयोजन किया, चंद्रमा की साउथ पोल पर लैंड करने वाले हम विश्व के पहले देश बने। आज भारत की युवा बेटियां भी हर एक क्षेत्र में आगे, फिर चाहे वो सेना हो या स्टार्टअप, ओलंपिक पैरा ओलंपिक हो या शोध, संसद में महिलाओं की संख्या का बढ़ना हो या ऐतिहासिक रूप से लिंग अनुपात में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या का बढ़ना, यह आंकड़े प्रमाण है कि अमृत काल का नया भारत 2047 का विकसित भारत कितना समृद्ध हो। बल्कि इसके माध्यम से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि युवा केवल शिकायत करना नहीं, युवा होना केवल शिकायत करना नहीं होता है बल्कि समाधान निकालना भी होता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए दुष्यंत कुमार जी की कुछ पंक्तियों का सहारा लूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद
1: दोस्तों। अभी सुनिए आपने वार्ता जिसमें वार्ताकार थे पीयूष कुमार। साथियों, युवा शक्ति जब अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करती है तब सफलता स्वयं रास्ता बना लेती है। आज के समय में युवा यदि मेहनत, धैर्य और अनुशासन को अपना साथी बना ले तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। अदिति स्वामी ने बहुत कम उम्र में तीरंदाजी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई और साबित किया कि प्रतिभा केवल बड़े शहरों की मोहताज नहीं होती। तीरंदाजी ऐसा खेल है जिसमें केवल शारीरिक ताकत नहीं बल्कि मानसिक एकाग्रता और आत्मनियंत्रण भी बेहद जरूरी है। अदिति ने लगातार अभ्यास और आत्मविश्वास के दम पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया। उनकी उपलब्धियां आज लाखों युवाओं को यह प्रेरणा देती हैं कि कठिन परिस्थितियां कभी सपनों को रोक नहीं सकती। आज कई युवा असफलता से घबराकर अपने लक्ष्य बदल लेते हैं लेकिन अदिति स्वामी का संघर्ष हमें सिखाता है कि निरंतर प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है। यदि युवा अपने समय का सही उपयोग करे और अपने हुनर को पहचान कर मेहनत

0: करें तो वे भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो फिलहाल साथियों, हमारी चर्चा तो आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
2: तुमने मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज करो।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
7: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: चलिए दोस्तों, इसी क्रम में सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लखनऊ सेंट्रल से और जिसे गाया है अमित मिश्रा और नीति मोहन ने।

दोस्तों अभी सुना आपने गीत जिसे हमने लिया था फिल्म लखनऊ सेंट्रल से, जिसे गाया था अमित मिश्रा और नीति मोहन ने। साथियों अब हमारे स्टूडियो की घड़ी हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रही है, तो कैसा लगा हमारा कार्यक्रम हमें सुझाव पत्रों और फेसबुक इंस्टा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हमारे कार्यक्रम का ऑफिशियल अकाउंट akashvani.jhansi.in के नाम से है, पिन कोड है 284128। इसी के साथ अपने मित्र संजीव को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी एफएम 103 पर। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।
1: विविधा

0: विविधः।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम विविधा में। और इस वक्त मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त दीपक शर्मा। दोस्तों, आज सुबह जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी छोटी भतीजी ने दौड़कर मुझे गले लगाया और कहा, जल्दी आना, शाम को साथ में खेलेंगे। उस एक पल ने मेरी सारी थकान, सारा तनाव जैसे चुटकियों में गायब कर दिया। तभी ख्याल आया कि हम दुनिया भर में सुकून ढूंढते हैं, लेकिन असली सुकून तो उस छत के नीचे है जिसे हम परिवार कहते हैं। आज हमारे विविधा कार्यक्रम का विषय भी यही है, परिवार, समाज की नींव, खुशियों का आधार। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, ईंट पत्थरों से मकान बनता है, पर अपनों के प्यार से घर बनता है। परिवार सिर्फ कुछ लोगों का समूह नहीं, ये एक संस्कार है। समाज की कल्पना परिवार के बिना अधूरी है। जैसे एक मजबूत इमारत के लिए उसकी नींव का मजबूत होना जरूरी है, वैसे ही एक सशक्त और सभ्य समाज के लिए एक स्वस्थ परिवार का होना अनिवार्य है। यही वो जगह है जहां हम पहली बार साझा करना सीखते हैं, माफ करना सीखते हैं और साथ चलना सीखते हैं। जब परिवार में संवाद यानी कम्युनिकेशन होता है तो समाज में विवाद कम होते हैं। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर करियर और सक्सेस के पीछे भागते हुए उस आधार को भूल जाते हैं जो हमें खड़ा रखता है। याद रखिए, ऑफिस में आपकी जगह कोई और ले सकता है, लेकिन परिवार में आपकी जगह कोई नहीं भर सकता। खुशियां महंगे खिलौनों या बड़े होटलों में नहीं, बल्कि साथ बैठकर चाय पीने और एक दूसरे की छोटी छोटी जीत का जश्न मनाने में है। दोस्तों, क्या आपने आज अपने माता पिता से बात की? क्या आपने अपने जीवन साथी को उनकी मदद के लिए शुक्रिया कहा? अगर नहीं तो आज ही कहिए, क्योंकि परिवार वह सुरक्षा कवच है जो दुनिया की हर मुसीबत और आपके बीच ढाल बनकर खड़ा रहता है। तो दोस्तों, आज का छोटा सा संदेश बस इतना ही है कि अपने काम को वक्त दीजिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को उड़ान दीजिए, लेकिन अपनी जड़ों को यानी अपने परिवार को कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब जड़ें मजबूत होती हैं तभी खुशियों का पेड़ लहलाता है। दोस्तों, परिवार की अहमियत पर बातें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन असलियत में इन रिश्तों को निभाने की कला क्या है, बदलते वक्त में कैसे हम अपनी नींव को और मजबूत कर सकते हैं, इसी विषय पर और गहराई से चर्चा करने के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के उपलक्ष्य में विशेष संगोष्ठी।

0: का विषय है परिवार असमानताएं और बच्चों का कल्याण, जिसमें प्रतिभागी हैं राजीव शर्मा, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, डॉक्टर विजयश्री शुक्ला, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, गिरीश किशोर विश्वकर्मा अधिवक्ता, संचालन है शिवानी वर्मा का और प्रस्तुतकर्ता है अंजलि कुमारी।
1: नमस्कार श्रोताओं, 15 मई को पूरे विश्व में इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है। यह दिवस हमें परिवार के महत्व, बच्चों के विकास में उसकी भूमिका और समाज की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करता है। कहा जाता है बच्चे वही नहीं सीखते जो हम उन्हें सिखाते हैं, बल्कि वे वह सीखते हैं जो वे अपने आसपास देखते हैं। यही कारण है कि परिवार बच्चे के जीवन की पहली पाठशाला माना जाता है। परिवार ही बच्चे की सुरक्षा, संस्कार, आत्मविश्वास और भावनात्मक सहारा देता है। लेकिन आज बदलती जीवन शैली, बढ़ते एकल परिवार, व्यस्त दिनचर्या, डिजिटल दुनिया का प्रभाव और सामाजिक असमानताएं बच्चों के मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित कर रही है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि परिवार, समाज और संस्थाएं मिलकर बच्चों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य के लिए गंभीरता से विचार करें। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में 3 विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजीव शर्मा जी, डॉक्टर विजयश्री शुक्ला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और गिरीश किशोर विश्वकर्मा जी जो कि अधिवक्ता हैं। आप सभी का आकाशवाणी झांसी के स्टूडियो में स्वागत है। आज की इस विशेष संगोष्ठी का विषय है परिवार असमानताएं और बच्चों का कल्याण। इस विषय से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि परिवार बच्चों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियाँ क्या है और समाज तथा शासन स्तर पर बच्चों के कल्याण के लिए क्या प्रयास आवश्यक है। सबसे पहले गिरीश सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एक मजबूत समाज के निर्माण में परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है।
2: परिवार को कुछ विषयों में विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे परिवार में देश प्रेम, देशभक्ति की भावना को जागृत करना चाहिए, परिवार के सभी मेंबर्स को संस्कारवान होना चाहिए और हमारे देश की जो महान विभूतियां हैं उनकी कहानियां उन्हें नियमित रूप सुनाई जानी चाहिए, जिससे कि एक अच्छे परिवार का निर्माण किया जा सके और एक अच्छे मजबूत समाज का निर्माण हो सके।
1: ये सही कह रहे हैं आप। अच्छा राजीव सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज के समय में बच्चों के सामने सबसे बड़ी सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियां क्या दिखाई देती है।
3: देखिए, आज परिवार की परिभाषा जो है वो बहुत बदल गई है। आज परिवार का मतलब है पति, पत्नी और बच्चे। एक परिवार तमाम परेशानियों का इसीलिए शिकार हो गया है। वास्तविकता ये है कि जब हम लोग संयुक्त परिवार में रहा करते थे तो बच्चों के सामने ना तो ऐसी कोई समस्या आती थी। बच्चों के दादा, दादी, ताऊ, ये सारे लोग उनकी समस्याओं को बांट लिया करते थे और अगर बच्चों को कोई परेशानी भी होती थी तो वो उसका हल निकालने के लिए उनके तमाम बुजुर्ग मौजूद रहते थे। आज की परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज क्या है कि परिवार में सब कुछ संसाधन उपलब्ध है, माँ बाप रात दिन प्रयास कर रहे हैं बच्चे के लिए, हर सुविधा जुटा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, वो ये समझते हैं कि हमने बच्चे के लिए बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, फीस दे रहे हैं, उसको अच्छे ट्यूटर लगा दिए हैं और क्लास में भी टॉपर रहे,
1: बिल्कुल
3: गेम्स हो रहे हैं स्कूल में उसमें भी टॉपर रहे, कल्चरल एक्टिविटीज हो रही है उसमें भी टॉपर रहे, कभी माँ बाप बच्चों के साथ उनकी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। आखिर बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ,
1: बिल्कुल ना।
3: जब माँ बाप से वो निराश हो जाते हैं तो अपने आप ही उनका भटकना शुरू हो जाते हैं। आज तमाम परिवार है, एक ही बच्चा है तो क्या करते हैं को उसको घर में रखते हैं, बाहर खेलने नहीं जाता है, समाज में मिलता जुलता नहीं है और बच्चों के साथ, तो जो सामाजिक एक अंदर उसके अंदर संगठन की भावना होना चाहिए। बच्चे जब घर के अंदर है तो क्या करेगा, या तो टीवी देखेगा या मोबाइल चलाएगा, और मोबाइल एक ऐसा अस्त्र है जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा भी है, बहुत ही डेंजरस भी है, लेकिन इसके दुष्परिणाम ज्यादा आ रहे हैं।
1: मतलब आपका कहने का मतलब है कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल ज्यादा चला रहे हैं। इस मोबाइल चलाने की वजह भी सर आप जो बता रहे हैं कि एकल मतलब अकेले हैं ज्यादातर बच्चे, और दादा दादी परिवार में जो एक साथ रहते थे
3: उनके
1: साथ,
3: परिवार के माता पिता बच्चों को समय नहीं देंगे, उनसे पूछेंगे नहीं बेटा तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम्हें स्कूल में कोई समस्या तो नहीं आ रही, तुम जिस वाहन से जा रहे हैं उससे कोई समस्या तो नहीं आ रही, ये सारी चीजें जब उससे पूछोगे आप, उससे डिस्कस करोगे तो उसके अंदर एक हौसला, आत्मविश्वास बढ़ता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सर बहुत अच्छी बात बताई कि परिवार में सब लोगों को एक साथ, मतलब इससे हम लोग ये सोचें कि सब लोगों को साथ में रहना चाहिए। विजयश्री मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि परिवार कल्याण की अवधारणा

0: धारणाएं बच्चों के समग्र विकास के लिए किस प्रकार जुड़ी हुई हैं और क्या वर्तमान की योजनाएं बच्चों के लिए किस प्रकार से स्वास्थ्य पोषण और सुरक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रभावी साबित हो रही हैं।
1: देखिए, बात की जाए परिवार कल्याण की अवधारणा, सीधे तौर पर ये बच्चों के जो समग्र विकास है उससे जुड़ी हुई है। बच्चों के साथ ही न सिर्फ हम परिवार कल्याण में बच्चों का स्वास्थ्य बल्कि माता का स्वास्थ्य, साथ ही जो प्रजनन स्वास्थ्य है उस पर भी काम करते हैं और ये सीधी तरीके से जुड़ी है, क्योंकि एक जो स्वस्थ परिवार होगा, शिक्षित परिवार होगा, आर्थिक रूप से स्थिर परिवार होगा, वहां पर बच्चों का भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास ये सभी बहुत अच्छे से हो जाता है।
0: सर, आपसे जानना चाहेंगे घरेलू हिंसा, उपेक्षा या परिवार विघटन के समानता मुख्य कारण क्या है और कैसे आपसी समस्या से रोका जा सकता है।
2: मैडम, घरेलू हिंसा में क्या है कि अब हम एकल परिवार में रह रहे हैं, हमारे घर में कोई वृद्ध माता पिता उपस्थित नहीं है और दोनों की ईगो इतने बढ़ जाते हैं, कभी कभी दोनों वर्किंग कंडीशन में होते हैं, दोनों के अपने ऑफिस के प्रेशर्स होते हैं, तो वो दोनों अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने के चक्कर में इतना घरेलू हिंसा में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको रोकने के लिए, उनके बीच बचाव के लिए घर में कोई उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर हम एकल परिवार की स्थिति में चले जा रहे हैं।
0: हाँ, अगर परिवार में कोई हो तो उनको कंट्रोल या फिर वो लोगों का थोड़ा डर भी रहता है कि हाँ,
2: तो ये एक मुख्य कारण है और इससे बचने के लिए हमें संयुक्त परिवार की प्रयास करना चाहिए कि माँ बाप हमारे साथ रहें और एकल परिवार की स्थिति ना आए और समाधान की तरफ जाए।
0: हाँ बिल्कुल, मतलब आप कहना चाहेंगे कि आप सभी से कि सब एक साथ रहने का कोशिश करें और अगर नहीं भी रहते हैं तो हम लोगों का संवाद बना रहे आपस में, हम लोग अपना फोन के थ्रू कई सारी चीजें कि हम लोग बात कर सकते हैं।
2: हाँ, और हम सिर्फ शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, संस्कार लगातार घटते चले जा रहे हैं, न तो स्कूल से संस्कार मिल रहे हैं न परिवार से, क्योंकि परिवार ज्यादातर एकल परिवार होते चले जा रहे हैं। पहले हम जो संयुक्त परिवार में रहते थे तो एक दूसरे को संस्कार हम दे पाते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी दादा से पिता, पिता से पुत्र की ओर ये सब चले आ रहे थे।
0: अच्छा राजीव सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या बच्चों के कल्याण के लिए ऐसी कौन सी विशेष योजनाएं हैं जो विशेष रूप से उन बच्चों को लक्षित करती हैं जो पारिवारिक टूटन या माता पिता के आपसी विवाद का शिकार हैं।
3: देखिए जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रखी है। एक योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
0: जी,
3: इसमें जिस परिवार में दो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए जन्म लेने के साथ साथ और जब तक वो बड़ी होती हैं और इंटरमीडिएट तक हायर एजुकेशन तक सरकार उनको बराबर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। एक है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, उसके अंतर्गत जिस परिवार में माता पिता या तो बिल्कुल असमर्थ है काम करने में, या कोरोना काल में जिसके माता या पिता या माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, तो उसको 2500 रूपया महीना बच्चे को, दो बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अनिवार्य रूप से उनको 2500 रूपया महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसी प्रकार एक स्पॉन्सरशिप योजना है कि अगर कोई बच्चे के माता पिता या माँ विधवा हो गई है या उनके माता पिता इस हाल में नहीं है कि उनकी आमदनी कुछ है, गरीबी की रेखा के नीचे है, उनकी आमदनी का कोई साधन नहीं है, बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो ऐसे बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत 4000 रूपये महीने दो बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार उनके परिवार के लिए देती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बीच में न रुक जाए। इसके अलावा भी सरकारी जो संस्थाएं उसमें जो ऐसे बच्चे रह रहे हैं जिनको देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता है, जिनके माता पिता नहीं है या माता पिता छोड़ के चले गए हैं या परिवार में कोई भी नहीं है, ऐसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाने पीने, शिक्षा की सारी व्यवस्था सरकार उसका उत्तरदायित्व वहन कर रही है। इसके अलावा एक और बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कोई भी बच्ची पॉक्सो के अंतर्गत किसी दुर्घटना का शिकार होती है तो उसको उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना के अंतर्गत उसको विभिन्न प्रकार से आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसकी राशि 3 लाख से लेकर 10 लाख रूपये तक की। ये सारी योजनाएं सरकार बच्चों के कल्याण, उनको मिड डे मील भी दे रही है, उनको ड्रेस भी दे रही है, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है कि कोई भी बच्चा अशिक्षित न रहे, केवल आर्थिक अभाव की वजह से कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रह जाए, सरकार इस दिशा में बहुत प्रयास कर रही है।
0: जैसे कि राजीव सर आपने इतनी सारी योजनाओं के बारे में हमारे सभी श्रोताओं को बताया, ये जानकारी बहुत कम रहती है लेकिन हमारे रेडियो के माध्यम से सभी श्रोताओं को ये मालूम चलेगा कि कौन कौन सी योजनाएं जो हैं वो हमारे लिए हैं। विजयश्री मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि पारिवारिक संवाद की कमी बच्चों में तनाव, अकेलापन और असुरक्षा की भावनाओं को कैसे बढ़ाती है, आज की व्यस्त जीवन शैली में माता पिता बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव कैसे मजबूत कर सकते हैं।
1: जी देखिए, पारिवारिक संवाद हम बात कर रहे हैं संयुक्त परिवार की भी, तो संयुक्त परिवार

0: में संवाद की कमी नहीं होती थी। हमारे घर में अगर माँ या पिता बाहर काम पर गए भी हैं तो परिवार के जो अन्य सदस्य होते थे वो बच्चों के साथ संवाद रखते थे, कम्युनिकेशन बना रहता था। लेकिन जब हम आजकल का देखते हैं, एकल परिवार है और उसमें भी माता पिता काम पर चले जाते हैं तो उसके बाद में बच्चा घर में अकेला रह जाता है, तो वो जो आपस में उनकी संवाद जो कम होता जा रहा है उसका सीधा असर बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ रहा है, उसके विकास पर पड़ रहा है। तो बच्चे में एकाकीपन आ रहा है, इसके अलावा बच्चे में बहुत ज्यादा एंजाइटी भी वो लोग फील कर रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं बच्चे, और उनमें जो व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं वो भी धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही हैं। तो माता पिता के पास समय भी कम है और जितना समय है तो वो घर आकर के या तो अपना मोबाइल में या फिर टेलीविजन में या अपने सोशल मीडिया में इसमें व्यस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि बच्चे के साथ में संवाद जरूर करें, बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम जरूर बिताएं, और रात का खाना कोशिश करें कि सारे लोग मिलकर के खाएं, दिन भर जो कुछ भी जिनकी भी जो भी गतिविधियां की हैं वो आपस में साझा करें, शेयर करें। जो पारिवारिक हमारे तीज त्योहार होते हैं, जो हमारे घर में फैमिली फंक्शंस होते हैं, उसमें हम जरूर मिलें और अपनी जड़ों से जुड़े रहें। उसके लिए जरूरी होता है कि हम जब भी छुट्टी मिले माँ बाप को, वो अपने बच्चों को जो उनके पेरेंट हैं, उनके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनके बीच में जरूर लेकर के जाएं। वीडियो कॉल से वो बात कर सकते हैं परिवार के बाकी सदस्यों से। तो कुछ इस तरह से कुछ अगर गतिविधि करते हैं तो जो बच्चों में जो संवाद की कमी होती जा रही है उसको हम लोग दूर भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग सब लोग एक दूसरे से परिवार में जुड़े रहें।
0: जी मैम,
1: नहीं तो अगर नहीं जुड़े रहेंगे तो बच्चों के लिए मैम बहुत प्रॉब्लम है।
0: बच्चा अकेला,
1: मैंने कई जगह अभी बच्चों को देखा है कि परिवार में जैसे आपस में भावनात्मक उनकी अटैचमेंट नहीं है तो वो बच्चे चिड़चिड़ाते बहुत हैं। उनसे कुछ कह दो तो वो नाराज हो जाते जरा जरा में। एक मेरे ख्याल से बच्चों के लिए एक टाइम टेबल भी बना सकते हैं अपन कि इस टाइम में आप टीवी देखेंगे, इस टाइम में
0: स्क्रीन टाइम कर सकते हैं कि हम स्क्रीन टाइम इतना ही रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। हम आउटडोर एक्टिविटीज में उनको एंगेज कर सकते हैं, पेंटिंग है, आप कोई वायलिन वगैरह बजाना या कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट बजाना, वो उसको में भी हम उनको एंगेज कर सकते हैं,
1: क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है, तो उनका हम लोगों को बिल्कुल इसी प्रकार से ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है परिवारों को कानूनी लड़ाई से पहले पारिवारिक परामर्श और संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए?
2: जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कानूनी कोई भी स्टेप लेने से पहले घर की जो मुखिया है उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें संवाद की स्थिति में बैठना चाहिए कि मेन प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी बहुत छोटी सी बात को लेकर हम बहुत बड़े बड़े इश्यूज बना लेते हैं जो आराम से बैठ के हम उसका समाधान कर सकते हैं। लेकिन ईगोज हमारे इतने बड़े हो जाते हैं कि हम बैठते ही नहीं और हम कानून का सहारा लेने लग जाते हैं और सालों उसमें खराब हो जाते हैं और बहुत सारे पैसे भी खराब होते हैं। तो हमें बड़ों को आगे आना चाहिए, हमें बैठना चाहिए, बैठ के बात करना चाहिए कि इसका सोल्यूशन क्या है। अच्छा, कई बार मेरी सलाह ये भी है कि जब पति पत्नी के बीच में विवाद हो तो एक महीना एक दूसरे से दूर बड़े प्रेम से रह के देख ले, क्योंकि जो पति पत्नी के लिए क्या कर रहा है, एक पत्नी पति के लिए क्या कर रही है, वो तभी दिखाई देगा जब वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो एक कूलिंग पीरियड कह सकते हैं हम इसको, एक कूलिंग पीरियड हमें रखना चाहिए, मतलब विवाद की स्थिति में नहीं बड़े प्रेम से। जब आप लोग अलग अलग रहेंगे एक महीने के लिए तो आपको समझ में आता है कि हाँ, एक दूसरे के लिए कौन चाय बना के देता था और कौन क्या करता था, ये दिखाई देता है
1: एक दूसरे की, मतलब
2: तो इससे बड़ा प्रेम उत्पन्न होता है कि हाँ वो ऐसा करते थे लेकिन वो ऐसा भी करते थे, ये भी करते थे। तो ये चीजें एक दूसरे को बड़े प्रेम से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने में सहायता प्रदान करती हैं। और सबको एक बार बैठना चाहिए, संवाद की स्थिति में आना चाहिए और कानून की स्थिति बहुत देर में हमें अपनानी चाहिए।
1: उससे बच्चों पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर माँ बाप के आपसी संवाद में प्रॉब्लमें आती हैं तो बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से असर बच्चे ही होते हैं, क्योंकि वो उस चीज को नहीं समझ पाते कि क्या चीजें चल रही
2: हैं, अधिकार की ओर जाना शुरू हो जाता है।
1: राजीव सर, आपसे जानना चाहेंगे कि वंचित और असहाय बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने में जो बाल कल्याण समिति है जो किस प्रकार कार्य कर रही है?
3: देखिए, बच्चों के साथ साथ तो हम लोग पूरा समय दे रहे हैं
1: जी,
3: उनके पुनर्वासन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए, हर बच्चे के लिए एक व्यक्तिगत देखरेख योजना बनाई जाती है। जो बच्चे हमारे संस्था में रह रहे हैं जिनके माता पिता नहीं है या किसी वजह से वो अपने परिवार से बिछड़ गए हैं और परिवार नहीं थे इसके ऊपर है, तो उस टाइम के बीच में हम लोग उनको बेहतरीन एजुकेशन, उनके लिए वो क्या चीज में उनकी रुचि है उसकी जाँच करना, उनका पर्सनल उनका केयर प्लान बनाना कि भाई उनके बच्चे के लिए क्या क्या जरूरी है। समूह में रह जरूर है सारे बच्चों के साथ, लेकिन सबके लिए इंडिपेंडेंट केयर प्लान हम लोग बनाते हैं कि बच्चे के कल्याण के लिए बेहतर क्या
1: क्या क्या
3: ये तो हो गई सरकार बात। आपको साजू

0: हुआ कि पिछले 3-4 वर्षों में लगभग 2000 बच्चे ऐसे हमारे सामने पेश हुए हैं कि जो अपने घरों से भाग के आए और हमने फिर उनकी काउंसलिंग की, उनके माँ बाप की काउंसलिंग की और बहुत मामूली वजह से बच्चे अपने घर छोड़ देते हैं। किसी ने माँ बाप ने बच्चे का मोबाइल छीन लिया, इसी बात से नाराज होकर वो आया स्टेशन, जो गाड़ी में नहीं बैठ गए, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं।
1: सही कह रहे हैं,
0: कुछ बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, गेम खेल रहे, किसी ने कहा यहाँ आ जाइए, बम्बई आ जाइए, फलाना आ जाइए, वो आंख बंद करके वो चल देते हैं। क्यों के माता पिता के पास उनके लिए समय नहीं है। तो मोबाइल में जो कोई भी उनसे टॉक करता है, मोबाइल में जो कोई उनसे संपर्क बनाता है, वो उसके साथ भावनात्मक रूप से
1: जुड़ जाता है
0: और वही खतरे की घंटी है। तो ऐसे बच्चों को जब हमारे सामने लाया जाता है, अभी हाल ही में एक बच्चे को झांसी का मामला है, उसकी मम्मी ने उसका मोबाइल छीन लिया, वो जाके स्टेशन पे पर्चियों के सामने खड़ा हो गया।
1: हाँ, इससे पहले भी सर अभी एक सुसाइड केस हुआ था कि एक 12 साल का बच्चा था, उसके फादर ने मोबाइल ले लिया तो उसने सुसाइड कर लिया।
0: अभी आपने पढ़ा होगा कि गाजियाबाद में 3 बच्चियों ने
1: तीन सुसाइड
0: कर लिया। क्यों? कि वो मोबाइल स्कूल नहीं जा रही थी, माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, वो क्या कर रही है दिन भर किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो गेम खेलते खेलते तीनों बेटियां बेचारी
1: तीनों
0: एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए और वहां से जो डायरेक्शन मिला तीनों ने छलांग लाया। बहुत छोटी उम्र की।
1: अच्छा सर, गेम्स का भी है कि मोबाइल में ऐसे ऐसे गेम्स आ रहे हैं, ये चीजें सर बंद होनी चाहिए।
0: सभी बंद हो सकती है जब माता पिता बच्चों के लिए समय निकाल
1: थोड़ा सा ध्यान दें।
0: बच्चों के साथ जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, उनके लिए समय नहीं निकालेंगे, उनसे डिस्कशन नहीं करेंगे, हर बात में उनको इन्वॉल्व
1: करिए,
0: तो उसका फायदा ये होगा कि बच्चे इस तरीके से परिवार से अलग होने की बात सोचेंगे नहीं। जो समस्याएं सेंटिमेंट्स हैं उनका आपको भी सम्मान करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: केवल एक आप सब सुविधा उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, और अगर आपकी अपेक्षा के अनुरूप कोई रिजल्ट नहीं आया तो आप उससे इतना नाराज हुए तो वो घबरा के घर छोड़ पा गए। स्कूल में नंबर कम आए, उन्होंने उठाया अपना बस से घर तक और सीधे गायब हो गए। हमने पूछा बेटा क्यों आ गए, बोले हमें स्कूल में नंबर आया, पापा आते घर डांटते। तो ये मामूली चीजें हैं, इसलिए हम लोग जब बच्चे आते हैं तो उनकी काउंसलिंग के साथ साथ उनके माँ बाप की काउंसलिंग करते हैं।
1: सर बहुत जरूरी है,
0: आप क्या कर रहे हैं, आपका इकलौता बेटा है और आप बेटी है इकलौती, और आप उसके साथ कैसा ट्रीट कर रहे हैं कि वो घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गई है। तो आपको अपने आप को बदलना होगा।
1: थोड़ा देखा है सर, माँ बाप की कमी रहती है, जो बच्चों के साथ ऐसी चीजें हो रही है, माँ बाप की पेरेंट्स की बहुत कमी रहती है।
0: क्योंकि हम लोग संयुक्त परिवार से हट गए हैं, पैसा कमाने की दौड़ में हम ये सोचते हैं भाई हमारे पैसे का लाभ हमारे भाई को ना हो जाए, हमारी बहन को ना हो जाए। जब ये भावना दिमाग में आ जाती है तो उस भावना से आप अलग हो जाते हैं परिवार से, और वही अलगाव फिर एक डेंजरस रूप ले लेता है। जब बच्चे जब उनको कुछ नहीं मिलता है, केवल माता पिता, तो उनको मालूम ही नहीं है कि बहन क्या होते, चाचा क्या होते, मामा क्या होते, दादा क्या होते। इन सब चीजों की जानकारी के लिए संयुक्त परिवार, जैसा डॉक्टर विजय सिंह जी कह रहे थे कि भाई उनको मालूम होना चाहिए उनके दादा कौन है, नाना कौन है और मामा कौन है। पहले हम लोग, आपको याद होगा, गर्मियों में की छुट्टी में अपने मामा के घर जरूर जाते थे, एक महीने दो महीने के लिए। अब आज बच्चे को सारा छुट्टी हुई और तुरंत उसके लिए लगा दिए कि जाओ फलानी कोचिंग, और कोचिंग में उसको मालूम ही नहीं है कि जीवन है क्या। एक कोल्डू के भेड़ की तरह वो फिस रहा है। देखिए, समाज की सबसे छोटी का ये परिवार, जब परिवार खुशहाल नहीं है, परिवार स्वस्थ नहीं है, वो बच्चे जिनके लिए परिवार बना वो सही नहीं है। तो फिर समाज कैसे सही बनेगा, ये बहुत जरूरी।
1: सबसे अहम रोल माँ बाप का ही है कि अगर वो गर्मियों की छुट्टी में मेरे ख्याल से जाएं अगर, तो पारिवारिक जो भावनात्मक जुड़ाव होता है ना वो बना रहेगा। वो बहुत कम हो गया है आजकल परिवारों में। आप आजकल गर्मियों की छुट्टी में नहीं जाते लोग बहुत बहुत समय के लिए, हम लोग भी जाया करते थे। सर बहुत अच्छी बात बताई आपने सारी चीजें। और विजयश्री मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज के युग में बच्चे जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं, तो माता पिता किन संकेतों से समझ सकते हैं कि बच्चा मानसिक दबाव या भावनात्मक परेशानी से गुजर रहा है, और इस परिस्थिति में वे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें, मतलब क्या।
2: ये बहुत अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि आज अगर हम ये सोचें कि बच्चे के जीवन से हम मोबाइल बिल्कुल हटा दें तो ये संभव नहीं है। ये चीज संभव नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के लिए, अन्य कार्यों के लिए उसको मोबाइल से जुड़ना ही पड़ेगा, और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज उसको करना ही होगा। हाँ, लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिससे माँ बाप ये जान सकते हैं कि बच्चे को दिक्कतें हो रही हैं। वो कैसे हम जानेंगे, तो उन्हें ध्यान ये देना चाहिए, बच्चा एकदम से चिड़चिड़ा तो नहीं हो रहा है, और इसके अलावा उसकी पढ़ाई तो नहीं डिस्टर्ब

हो रही है, बच्चे की नींद में कमी के हमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं, हम ध्यान देंगे तो स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जाता है। माँ बाप जब बच्चे के पास में जाते हैं तो वो अपनी स्क्रीन छुपाता है, अगर लैपटॉप पे काम कर रहा है तो तुरंत ही लैपटॉप बंद कर देता है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि बच्चा माँ बाप से कुछ चीज छुपा रहा है। ऐसे ही अगर हम देखें तो समय सीमा जो होती है उसका पालन नहीं करते हैं, जो उसको दिया गया है कि आपको इस टाइम पे पढ़ाई कर लेनी है, वो उसका पालन नहीं करते, क्योंकि वो धीरे धीरे मोबाइल की तरफ वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं।

0: कर लेनी है वो उसका पालन नहीं करते, क्योंकि वो धीरे धीरे मोबाइल की तरफ वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और इस वजह से वो अपना जो डेली रूटीन है उनका वो बिगड़ जाता है। तो इन संकेतों से माँ बाप बहुत अच्छी तरीके से ये पता कर सकते हैं कि बच्चा जो है हमारा वो मोबाइल का यूज नहीं मिस यूज करने लगा है। हम खुद परिवार के लोग भी बच्चों के साथ में इन्वॉल्व होकर के उनके साथ में खेलें, इस तरह की जो सामूहिक गतिविधियां होती हैं हम उनमें बच्चों को इंगेज करें, तो बच्चों का जो वो स्क्रीन टाइम है या जो मोबाइल की तरफ जो उनका अनावश्यक जुड़ाव होता चला जा रहा है उसको हम कम कर सकेंगे। क्योंकि बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है और बच्चे मोबाइल के बिना तो बच्चों की पढ़ाई और आगे उनकी जो ग्रोथ है वो भी सब रुक जाएगी।
1: अगर हम लोग अच्छा सर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के अवसर पर हम अपने श्रोताओं को संदेश देना चाहेंगे तो आप सभी सबसे पहले राजीव सर से कहना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पे क्या संदेश देना चाहेंगे।
2: मेरा यही संदेश है कि परिवार की सबसे छोटी इकाई बच्चा है और उस बच्चे के अगर कल्याण के लिए उसके संपूर्ण विकास के लिए अगर परिवार एकजुट हो जाएगा तो हमारा देश हमारा समाज बहुत अच्छा बनेगा और एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण की जो परिकल्पना है वो पूरी हो जाएगी।
1: बिल्कुल सर, आप विजयश्री मैम आपसे चाहूंगी कि आप भी एक संदेश दें।
0: देखिए मैं तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हूँ तो मेरा संदेश यही होगा कि स्वस्थ परिवार होगा तो स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की जो अवधारणा है वो जरूर पूरी होगी और पूरी पृथ्वी पर जो हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के चलते हैं तो पूरी पृथ्वी पर जितने भी निवासी हैं उन सभी का स्वास्थ्य बेहतर होगा।
1: बिल्कुल गिरीश सर आपसे एक संदेश सभी के लिए।
3: मैडम हम आजकल परिवार में केवल शिक्षा की ओर उन्मुख हो रहे हैं, केवल शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, अगर हम शिक्षा और संस्कार दोनों का सामंजस्य बना के और बच्चों को देना शुरू कर देंगे तो परिवार की स्थिति बेहतर होगी और समाज की स्थिति बेहतर हो सकेगी।
1: बिल्कुल आप सभी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, मैं हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सभी यहां आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी श्रोताओं को दी। तो श्रोताओं परिवार केवल रिश्तों का नाम नहीं बल्कि विश्वास सुरक्षा समानता और संवेदनाओं की वह नींव है जिस पर बच्चों का पूरा भविष्य खड़ा होता है। यदि परिवार मजबूत होगा संवाद जीवित रहेगा और समाज संवेदनशील बनेगा तो निश्चित ही रूप से हर बच्चे को सुरक्षित और उज्जवल बचपन मिल सकेगा। आज की संगोष्ठी का विषय था परिवार असमानताएं और बच्चों का कल्याण और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित थे बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजीव शर्मा जी, डॉक्टर विजयश्री शुक्ला जी जो कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हैं और अधिवक्ता गिरीश किशोर विश्वकर्मा जी। आज के कार्यक्रम में संचालन कर रही थी मैं यानी कि शिवानी वर्मा और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी। इन्हीं आशाओं के साथ आज की इस विशेष संगोष्ठी से दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।
4: तो श्रोताओं अभी आपने सुना अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के उपलक्ष्य में विशेष संगोष्ठी को जिसका विषय था परिवार असमानताएं और बच्चों का कल्याण। संचालन कर रही थी शिवानी वर्मा और प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी। तो श्रोताओं विविधा कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
5: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
6: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
5: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं, हर लफ्ज में छुपी है।

0: रहती हो।
1: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
2: मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
3: जब बीती कल की मिठास और आज की धड़कन

0: विविधा।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। यह कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है।

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम विविधा और इसी के साथ ही अपने दोस्त दीपक शर्मा को दीजिए विविधा कार्यक्रम से इजाजत। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार
3: विविधा।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सबरी किसान भैया बहन को अपने भैया पवन
1: और दीप्ति बहन की नमस्कार।
0: हाँ तो देखो दीप्ति बहन, अपन देखो बतकाव करते हैं आम के पीड़न की जो बात है आज की बात में, तो नमी बनाए रखने और बेन कहे ना बतकाओ बाद में कहने कहे ना, पहले किसी संदेश सुन ले जाए।
1: बिल्कुल भैया,
0: और संदेश तो अपन को सुनवा ही सुनवा है, कैसे बेन संदेश में कछु न कछु सार छुपो रहा थे और संदेश सुनने के लाने हम अपन को देखो सुनवाए हैं। लेकिन जब अपन नमी की बात करी है तो अपन को नियमित हल्की सी सिंचाई अपने पेड़ पौधन में करत रहने हैं। ऐसे जब अपन सिंचाई करो तब ही अपन को जो अपने पेड़ है आम के उनमें जो फल है वो भी अच्छो रहे।
1: बिल्कुल, और देखो भैया अपन अंगाई और बतकाव करें, काय नहीं सुन ले पहले जी संदेश।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बिजू का
3: पुतला बोल रहे।
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: और पवन भैया देखो, आज है गुरुवार और गुरुवार को अपन का लेके आउ थे
7: हेलो किसान।
6: तो सुनत है जो फोनिंग कार्यक्रम हेलो किसान।

0: किसान फोनिंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया और बहनों को दीप्ति बहन और
1: पवन भैया की नमस्कार।
0: और पवन भैया देखो आज का है
1: गुरुवार
0: और गुरुवार को अपन का लेके आओ थे
1: हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम।
0: तो किसान भैया देखो आज को हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को विषय है नए बागन की तैयारी और ई पे देखो जानकारी दें वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक यादव जो केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी से है। तो हमारे देखो किसान भैया ने खूब ही फोन लगाए हैं और देखो जो भी नए बागन की तैयारी कर रहे हैं जो बाग लगावो चाहते हैं या

0: जो उन्होंने बाग लगा ले, तो उनकी जो भी समस्याएं हैं देखो उन्होंने हमारे वैज्ञानिक भैया से पूछी और देखो उनको समाधान भी पाओ।
1: सही बात करी दीप्ति बहन। तो जो भी हमारे किसान भैया और कार्यक्रम से जुड़वो चाहते हैं तो अगले गुरुवार को अपन को समय बोई दे है 2 बजे से लेकर 2:30 तक, तो अपन फोन करवो ना भूले।
0: तो सुनो भैया हमारा हेलो किसान फोनी
1: कार्यक्रम।
0: तो डॉक्टर साहब अपन सबसे पहले जो बताओ, हमारे किसान भैया खेती बाड़ी भी करते हैं लेकिन भी चाहते हैं कि हम अपनी खेती बाड़ी के संगे संगे कछु ऐसे भी काम करें जिससे हमें अतिरिक्त आय प्राप्त हुए, तो अपनी बुंदेलखंड में ऐसे कौन कौन से बाग हैं जिन्हें हम लगा सकते हैं?
2: सर्वप्रथम आकाशवाणी झांसी और उससे जुड़े किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आकाशवाणी झांसी को जिन्होंने आज ये प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया। मैं सर्वप्रथम बात कर रहा हूं कि झांसी में कौन कौन से बाग लगाने चाहिए फल वाली फसलों के। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि वातावरण में बदलाव आ रहा है, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है और वातावरण में अभी टेम्परेचर तापमान की जब बात करें 48 डिग्री तक पहुंच जा रहा है।
0: मौसम का बदलाव तो जो भी हो रहा है कि डॉक्टर साहब के कहीं तो एकदम से
2: बारिश हो जा रही है
0: और एकदम से कहीं धूप निकल के और तेज गर्मी और लू लपट भी चल रही है।
2: जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें हम जो मनुष्य लोग हैं वो सहन नहीं कर पा रहे, तो पेड़ पौधे की बात ही छोड़िए। किसान भाई जो फसलें लगाते हैं जैसे सब्जियों की फसलें लगाते हैं या गेहूं या सरसों चना मूंगफली वगैरह लगाते हैं, तो ये खुले खेत में लगाते हैं, इसमें क्या है ना डायरेक्ट तापमान आता है उससे नुकसान पहुंच जाता है। तो बागों लगाने के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है, किसान भाइयों को बताते हैं कि कैसे पेड़ों के साथ खेती करनी चाहिए। आज का विषय बागों के साथ है तो हम बागवानी आधारित कृषि वानिकी भी बताते हैं, जिससे किसान जो अपनी फसल लगा रहा है उसको नुकसान भी कम होता है और किसान को इनकम ज्यादा मिलती है। और कई बार जैसे एक फसल को बारिश या वातावरण में बदलाव की वजह से नुकसान हो जाता है, बारिश की वजह से नुकसान हो जाता है, तो दूसरी फसल से अपनी आय प्राप्त करके वो अपना जो नुकसान है वो कम कर सकता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई बार हम जब फसल लगाते हैं तो हमें एक फसल अगर खराब हो जाए तो कम से कम दूसरी फसल है कि हमें कम से कम उसे थोड़ा बहुत आर्थिक हमें लाभ मिल सकता है। और अपन ने बहुत अच्छी बात बताई कि अपन देखो खेती के साथ साथ अपन जो बाग भी लगा सकते हैं तो दोनों साथ में अपन उनकी परवरिश कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं।
2: अब मैं बताना चाहूंगा जैसे आपने जो पहला जो प्रश्न पूछा था कि कौन कौन सी फसलों के बाग लगा सकते हैं, जैसे कि हमारा बुंदेलखंड जो एक एरिया है बड़ा सूखा है, लोग हमारे एक धारणा है किसानों के बीच में हमारे यहाँ कुछ नहीं हो सकता,
0: पानी की बहुत कमी है।
2: सबसे ज्यादा तो पानी की कमी
0: पथरीला इलाका है।
2: अगर हमारा बात करें राजस्थान की गुजरात की, वहां भी सेम टाइप का क्लाइमेटिक सिचुएशन आता है और वहां पे भी किसान मतलब अच्छे से बागों की खेती कर रहा है। तो हमारे झांसी या उससे जो किसान भाई हैं यहाँ के वो गुजरात या राजस्थान में जैसे खेती हो रही है उसको देख के प्रेरित होके अपने यहाँ बुंदेलखंड में भी आप फलों के बाग लगा सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं हम फलों वाली जो फसलें हैं जो हम लगा सकते हैं, तो इसके लिए हमारे आंवला हो गया, बेल हो गया, जामुन हो गया, नींबू वर्गीय की 4-5 फसलें हैं वो भी लगा सकते हैं, और संतरा मौसम्बी किन्नो ये हो गया, सीताफल लगा सकते हैं, लसोड़ा यहाँ पर लबेड़ा बोलते हैं उसकी खेती होती है, राजस्थान में जाऊंगे कैर होता है कैर की खेती कर सकते हैं, एक सांगरी होती है राजस्थान में होती है वो भी एरिया के लिए बड़ी सूटेबल है, उसका 1,000 से 2,000 रुपए किलो बिकती है। ऐसी फसलें जो कम पानी वाली हैं, और अनार की मैं बात करूं, अनार हमने यहाँ पर बंगरा और बड़ा गांव में 20 किसानों के यहाँ अनार भी लगाया है, अनार आधारित कृषि वानिकी की मॉडल बना रहे हैं। तो ऐसी कम जो फसलें हैं जो कि
0: कम पानी
2: में हो सकती है उनको हम किसान भाई लगाकर अपनी आय बढ़ा सकता है और उनके बीच में अपनी जो नॉर्मल जो फसल कर रहा है वो करता रहे।
0: कई ऐसी फसलें हैं जो मैं किसान भैया जानत भी नहीं है, जैसे अपन ने बताई राजस्थान की भी बात करी हो यहाँ पे भी, तो ये दाम भी अच्छे मिला था इन फसलों के।
2: हाँ जी,
0: हम लोग सिर्फ गिनी चुनी हुई है जैसे आंवला है, पपीता है, केला है और भी जो फसलें हैं, तो बस इन्हीं को जानत है।
2: कई बार क्या होता है कि किसान भाई बाग लगाने की इच्छा रखता है और जैसे ही वो नर्सरी में जाता है तो वहां पर उसको जानकारी ना होने के कारण वो बीज से तैयार किए हुए पौधे ले लेता है, परंतु आपको ग्राफ्टेड या बडिंग वाले पौधे लेने चाहिए जो गुट्टी से बांधे हों उस पौधे के, क्योंकि बीज से बनाया हुआ पौधा है वो आपको 8 या 10 साल में फलन देगा और कई बार क्या है ना वो फलन भी ढंग से नहीं दे पाता है।
0: अच्छा, तो बीज वाले पौधे
2: बीज से लगाए हुए पौधे ना ले किसान भाई, नर्सरी में जाएं, अच्छे जो ग्राफ्टेड पौधे हैं अच्छी वैरायटी का पौधा लें, और जब पौधा ले रहे हैं तो नर्सरी वालों से बिल लें ताकि वो 8 साल बाद अगर फलन ना हो तो बता पाए कि ये वैरायटी का पौधा फलन नहीं दे रहा है। कई बार किसान भाइयों के साथ मतलब धोखा हो जाता है और वो बीज वाला पौधा लेके आता है हमारे पास, बहुत बार किसान आते हैं कि हमारे में फल नहीं आ रहा है या थोड़ा फल आ रहा है या बिल्कुल ही फल नहीं आ रहा है, तो वो किसान भाई बाद में 8-10 साल मेहनत करता है फिर लगाता है, अगर फिर उसके बाद नहीं आता तो
0: हाँ तो फिर वो निराश हो जाता है, फिर वो कहता है अब नहीं हमें लगाना है बागवानी। सबसे पहले अब हमारे किसान भैया जुड़वो चाहते हैं, तो कौन से किसान भैया हमसे जुड़ रहे हैं? फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में अपन को स्वागत है।
3: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला दीदी मनोज नामदेव।
0: हाँ मनोज भैया।

0: बहुत बहुत स्वागत है अपन को फोन इन कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: धन्यवाद दीदी, कैसी हो आप?
0: अच्छे हैं। और मनोज भैया कैसे हैं वहाँ पे, मौसम कैसे चल रहा है?
1: मौसम तो दीदी काक है, इतना घाम पड़ रहा है, बहुत घाम पड़ रहा हो दीदी।
0: अच्छा, और अपन ने अपने खेत में कछु लगा है?
1: बिल्कुल, हमने अपने खेत में उर्द और मूंग दो ही भाई है।
0: अच्छा,
1: और पानी दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है हाल में।
0: तो मनोज भैया देखो, आज के मैं हेलो किसान को विषय है नए बागन की तैयारी, और विशेषज्ञ भैया है डॉक्टर अशोक यादव जी, जो एक वैज्ञानिक है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी से हैं। तो अपन को कोई भी देखो दिक्कत हो नए बागन की तैयारी में, तो अपन अपने डॉक्टर भैया से पूछ सकते हैं। अगली आवाज हमारे डॉक्टर साहब की है।
2: नमस्कार जी, बोलिए जी।
1: सर जी राम राम।
2: राम राम जी।
1: सर आप आकाशवाणी झांसी में आए, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।
2: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। बताइए, आपकी नए बाग लगाने के लिए आप इच्छुक हैं? जैसे आप तो अभी जो एग्रोनॉमिक फसल ही कर रहे हैं, उड़द मूंग कर रहे हैं, अगर आपको बाग लगाने में कोई इच्छा हो, कुछ चीजों के बारे में पूछना हो, किस चीज का बाग लगाना चाहिए तो बताइए।
1: बिल्कुल सर, उत्साह नहीं है सर, मेरा मन भी था और आज आप आए मुझे बहुत प्रशंसा हुई, तो थोड़ा मेरे को आप मार्गदर्शन दे दें कि अगर मैं इस चीज में अगर मैं घुसना चाहूँ तो मेरे को तैयारी कैसे और क्या करना पड़ेगी, आप मेरे को ये बता देना।
2: आपको बताना चाहूँगी जो नॉर्मल जो हम फसलें करते हैं उसमें इतना मुनाफा नहीं मिल पाता है जितना, हालांकि मेहनत कम लगती है उसमें। बागवानी वाली फसलें एक बार आपको मेहनत करना पड़ेगा, फिर बाद में आपको स्टार्टिंग में धीरे धीरे आपको थोड़ा कम मेहनत होता जाएगा, और बाद में आपको जो फल जो मिलेगा वो लंबे समय तक मिलेगा। और दूसरा, कई बार जैसे मान लिया आपकी जो फसलें लगा रहे हो उड़द मूंग, कई बार बारिश की वजह से नुकसान हो गया, कभी कीट के प्रकोप से नुकसान हो गया, तो कई बार दूसरी जो फसल आती है तो हमें उसमें बागवानी वाली फसलों से मुनाफा मिल जाता है। अगर बागवानी की बात करूं मैं, तो बागवानी में बहुत सारी फसलें आती है, जैसे कि फलों की फसलें आती है, सब्जियों की आती है, मसालों की खेती के बारे में आता है, तो और ये सब चीजें आती है, तो इनको कर सकते हो। और उद्यान विभाग में बहुत सारी स्कीमें चलती रहती है, उनसे जुड़िए, स्कीमों का फायदा उठाइए, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की स्कीमों का। तो अभी आप कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहिए तो बताइए।
1: सर आपने कहा पेड़ लगाना अनिवार्य है, मेरा तो ही जिंदगी पूरी पेड़ लगाते लगाते निकल गई सर, और जब तक मेरी सांस चलेगी सर, जब तक मैं बिल्कुल धरती पर बराबर पेड़, मेरे यहाँ कोई भी फंक्शन हो तो उस दिन मैं क्या करता हूँ कि 5-10 पेड़ अवश्य अपने खेत पर सर।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ कि आप प्रकृति के बारे में इतना सोच रहे हैं।
1: सर कहें कि हमारे यहाँ ऐसी भूमि है कि जामफल और पपीता होते हैं, उसकी खेती सर हमारे यहाँ बहुत होती है, तो क्या मैं इस दोनों खेती कर सकता हूँ क्या? दोनों
2: हाँ जी।
1: खेती
2: तो अमरूद की जैसे हम पहले जो पुरानी वैरायटी लगाते थे, आजकल उसमें इतना रेट नहीं मिल पा रहा हो, क्योंकि मैनेजमेंट वगैरह इतना अच्छा नहीं होता कि कई बार किसान नहीं कर पाता है, तो आपको थोड़ा कलर वैरायटी की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें अंदर जो गुदा होता है वो लाल कलर का पिंक होता है, तो उस टाइप की वैरायटी लगाइए तो मार्केट में अच्छा भी रेट मिलेगा, उसका टेस्ट भी बहुत मीठा होता है। और इसकी जो वैरायटी है कहाँ से मिलेगी वो मैं बता देता हूँ आपको, बेंगलोर में जगह है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, बेंगलोर में मिल जाएगी आपको। यहाँ पर पास में उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ मिल जाएगी। दिल्ली अगर कहीं कई बार दिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ दिल्ली में भी हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा है, वहाँ पर मिल जाएगी। जब ज्यादा पौधे लेने हैं तो आप गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो डिलीवरी वाला सिस्टम नहीं है उसमें, तो आपको वहाँ बात करके इंडेंट देके आपको पौधे मिल जाएंगे, अच्छी वेरायटी के पौधे मिलेंगे, आम के मिल जाएंगे, जामुन के मिल जाएंगे, अमरूद के मिल जाएंगे, अगर कुछ थोड़ा और लगाना चाहते तो अंगूर वगैरह के भी मिल जाएंगे आपको।
1: आज आपने मेरा समस्या का समाधान किया, धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: मनोज भैया अपन को भी बहुत बहुत धन्यवाद हेलो किसान में फोन लगावे के लाने।
3: जैसो कि डॉक्टर साहब अपन ने बताओ कि हमारे किसान भैया ने बागवानी कर सकते हैं, बागवानी में तमाम प्रकार की अपन ने फायदा बताए हैं।
2: हाँ जी।
3: तो डॉक्टर साहब जैसे हमारे किसान भैया ने नई बागवानी इस समय करवो चाहे तो कैसे तैयारी करें, और कितने का जैसे कि हमारे किसान भैया ने गड्ढा खोदा या कछु किसान भैया ने खुदे डले, तो तैयारी के बारे में बताओ कि कौन तरीका से हमारे किसान भैया, जैसे अगर हमारे किसान भैया नींबू वर्गीय जो पौधा है उनकी बागवानी करवो चाह रहे तो कौन तरीका से हमारे किसान भैया ने गड्ढा की तैयारी करें?
2: क्षेत्र के लिए मैंने फसलें बताई, यहाँ के लिए बहुत सारी फसलें सूटेबल क्रॉप्स हैं जो कि यहाँ हो सकती है, जैसे आंवला, बेर, अमरूद, नींबू, करौंदा, सीताफल, जामुन, बेल और बेर, ये फसलें हमारे यहाँ हो सकती है। इनके लिए बाग लगाने के लिए कैसे किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले किसान भाइयों को अपनी जमीन का चुनाव करना होगा कि किस खेत में लगाना है, ऐसा नहीं कि किसान के पास मान ली दो अलग अलग खेत हैं, एक खेत में जैसे पानी अगर नीचे आ रहा है तो उसमें फसल ना लगाएं।
3: जी,
2: पानी का निकासी अच्छे से होनी चाहिए, उस खेत को देखना चाहिए कि जहाँ पानी का ना हो,
3: मतलब कुल मिलाकर ढारू अपने किसान भैया के खेत में। तो डॉक्टर साहब बताओ अपन से बाद में करें, और किसान भैया को फोन आ रहा हो तो उनसे फोन उठा के बात करें पहले। हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार भैया।
4: नमस्कार।
3: का नाम भैया अपन को, कहाँ से अपन बोल रहे हैं?
4: सचिन लाल कुशवाहा जी बोल।

0: शक्की लाल कुशवाहा जी टेहरका से। हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में अपन को बहुत बहुत स्वागत है। और जैसो कि हम अपन को बता देवे कि आज हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में अपन ने विषय लो है नए बागों की तैयारी। और आज अपने बीच में विशेषज्ञ बैठे हैं डॉक्टर अशोक यादव, जो कि वैज्ञानिक हैं केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी से। तो अपन का कछु पूछबो चाहो और का कर रहे इस समय खेती बाड़ी में?
1: अभी तैयारी कर रहे हैं फलदार वृक्ष लगाने की।
0: आओ
1: किसान, हम गड्ढा मड्ढा कर रहे हैं ये।
2: हाँ जी।
1: अब जो सोच रहे हैं कि आम के बाग लगाना चाहते हैं हम, तो आम के बारे में बताइए कौन सी वैरायटी लगाएं अपन, क्या करें?
2: देखो, एक तो पहले आपने जो बगीचा जो लगाया है, क्योंकि आपको ध्यान में बता दूं थोड़ा सा, शुरुआती जो दौर में ध्यान रखना है, जो गड्ढा खोदा है उसमें आपने कितना खोदा है मुझे मालूम नहीं, परंतु कोशिश करिए एक मीटर बाई एक मीटर, एक मीटर चौड़ा, एक मीटर लंबा और एक मीटर गहरा गड्ढा खोदे। अब ये गहरा, इतना बड़ा गड्ढा इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि जब पेड़ बड़ा होगा तो उसकी जड़ों को अच्छे से, उसके जो सराउंडिंग एरिया में है अच्छे से खाद वगैरह अच्छे से पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो जब गड्ढा खोदा है तो उसकी आधी मिट्टी एक तरफ रखी, आधी मिट्टी एक तरफ रखी, क्योंकि और उसको 10-15 दिन अच्छे से धूप लगने दें। गड्ढे में जो भी अभी धूप अच्छी सी पड़ेगी तो जो मिट्टी में जो हानिकारक जीवाणु कीटाणु है वो मर जाएंगे, जो कीड़ा है वो मर जाएंगे। तो उसके बाद आपको जो जब बारिश का जब आएगा, फिर आपको गड्ढा, तो गड्ढे करने से पहले आपको लेआउट बनाना पड़ेगा कि कितनी कितनी दूरी पे करना है। जैसे आम के लिए 8 मीटर या 10 मीटर दूरी पे आप उसको पौधा लगा सकते हैं, तो 8 मीटर पे गड्ढे करने पड़ेंगे आप, ठीक है? और जब गड्ढा कर लें तो गड्ढे में फिर अच्छे से 20-25 किलो अच्छे से गोबर की खाद, नीम की खली भी डाली 1-2 किलोग्राम, फिर उसको फॉस्फोरस डाले 500 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश डाले 100 ग्राम, और थोड़ा क्लोरोपाइरीफास अगर दीमक की समस्या है तो, या फिर नीम आधारित कुछ दवाएं आती हैं वो डाल दीजिए, क्योंकि कीड़े वगैरह बाद में जड़ों पे ना लग पाए। इसके अलावा फंगीसाइड वगैरह, फंगस वगैरह का अगर प्रकोप होता है, कई बार हम पुरानी फसलों के जो अवशेष रह जाते हैं कुछ, तो उस पर कोई फंगस वगैरह रह जाता है तो उसकी वजह से फंगस का भी इन्फेक्शन आ जाता है। इसके लिए ट्राइकोडर्मा 50-100 ग्राम पर गड्ढे में डाल देना है। ये तो हो गया गड्ढे के बाद। इसके बाद जब पौधा लगाएं तो वो मिट्टी में मिला के ये सब अच्छे से लगा दे बारिश स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि अगर अभी पौधा लगा दोगे, अगर आप मैनेज कर पाए तो ठीक है, परंतु कई बार क्या है ना, लगाने के बाद पौधा गर्मी से ज्यादा झुलस जाता है। तो कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से सफल बगीचा लग जाए तो हम बारिश आने के बाद पौधे लगाते हैं। वो तो हो गया पौधा लगाना, गड्ढा लगाने की बात होगी। अब आपको चाहिए आम की अच्छी वैरायटी कहाँ से मिल सकती है? तो आम की अच्छी वैरायटी हमारे को यहाँ से केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ, और हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली है। और अच्छी वैरायटी कुछ चाहिए तो मतलब तीन इंस्टीट्यूट है, एक बेंगलोर में है जहां से आप अच्छी वैरायटी ले सकते हैं। मैं अपना नंबर बताना चाहूंगा, आप नंबर लिख लीजिए कोई भी समस्या हो, 7042360966। कभी भी आप बागों से रिलेटेड या बागवानी से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में पूछना हो तो आप मेरे को निसंकोच फोन करें, मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। और कुछ आपकी समस्या हो तो बताइए।
1: नहीं, समस्या बस बाग लगाना था, हम सोच रहे थे आईटी संबंधित आप कुछ जानकारी दे दी है, बहुत अच्छा है।
0: फिलहाल जी अपन ने हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में फोन करो, हो सका थे अपन की जो समस्या थी वो अपन को समाधान मिल गए हुए, अपन को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: भैया पवन भैया है का?
0: जी जी छक्की लाल जी,
1: नमस्ते।
0: नमस्कार। जैसो कि डॉक्टर साहब हम अपन से बतकाव कर रहे थे नींब उबर की, जो हमारे किसान भैया ने बागवानी करवो चाह रहे, तो जैसो कि जो अपन ने आम की बागवानी कराना, जो गड्ढा की अपन ने साइज बताई है 1 मीटर लंबो, 1 मीटर चौड़ो, 1 मीटर गहरो, तो क्या ऐसी नींबू वर्गी अगर
2: फलों के लिए, क्योंकि जब हम बाग लगाते हैं वो 1 साल के नहीं लगाते, 2 साल के नहीं लगाते, बाग लगाते हैं जब 15-20 साल 25 साल 30 साल के लिए बाग लगता है, तो उसके जो मिट्टी या गड्ढा होना चाहिए, उसके जो सराउंडिंग में जड़ें फैलती हैं वहां पर अच्छे से खाद होना चाहिए। अक्सर देखा होगा कि जब पुराने समय पे हमारे जब खेतों में हम गोबर की खाद 20-25 ट्रॉली डालते थे, हर खेतों में डालते थे, आज के समय में वो खेतों में जो मिट्टी में है हम डाल नहीं रहे, क्योंकि जानवर वगैरह कम रखने लग गए हैं लोग, तो उससे गोबर होता नहीं है गांव में। फिर दूसरा इजीली खाद मिल जाता है, यूरिया मिल जाता है, डीएपी मिल जाता है, तो पोटाश मिल जाता है, तो वो किसान सुविधाओं की तरफ भाग गया है। और अपना जो गोबर की खाद अगर डालता रहता किसान अगर जमीन में, तो जमीन की अच्छी उर्वरकता बनी रहती। इसलिए जब गड्ढा बनाया जाता है ताकि उसमें पूरे खाद वाद सब अच्छे से डाल दिया जाता है, ताकि पेड़ को मिलता रहे लंबे समय तक।
0: बागवानी करें, कोनो भी पेड़ की, कोनो भी फलदार वृक्ष की बागवानी करें, अपन को गड्ढा 1 मीटर बाई 1 मीटर खोदना,
2: 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा।
0: बहुत अच्छी अपन ने बात बताई। और डॉक्टर साहब एक चीज और हम अपन से पूछ पूछा है, जब हमारे किसान भैया आ रहे हैं पौध रोपण करें, तो उस समय का कछु बात उनको ध्यान रखना है?
2: पहले वैरायटी का हमें उसमें अच्छी वैरायटी का पौधा लेना है, जैसे पौधा लेना है कि कहीं भी नर्सरी से प्राइवेट नर्सरी में पौधा नहीं लेना।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखो बतका अपन से आगे करते हैं, लेकिन पहले उठाते हैं किसान भैया को फोन। हेलो
3: हेलो
0: हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है भैया, नमस्कार।
3: ब्रजकिशोर कुशवाहा बोल रहे हैं, ग्राम गोंदन जिला।
0: ब्रजकिशोर कुशवाहा जी अपन को हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। तो ब्रजकिशोर कुशवाहा जी, इस समय अपन खेती बाड़ी में का कछु करे हो?

0: खेती बाड़ी में कछु धान की तरफ जा रही है, कछु अपन चरू आएंगे।
1: अच्छा, और जो जायद की फसलें अपन नहीं लगाए थे का मूंग और?
0: हाँ, मूंग वगैरह नहीं है अपने थे।
1: अपन को बता देवे कि आज हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में अपन ने विषय लाओ है नए बागों की तैयारी, और आज अपन के बीच में डॉक्टर बैठे हैं अशोक यादव, जो कि वैज्ञानिक हैं केंद्रीय कृषि वानिकी से। भैया, जैसे आप हो रहे हैं, अगर बाग लगाबो चाहते हो तो बागन के बारे में आज जो भी अपन को जानकारी चाहिए वो अपने डॉक्टर भैया बताएं। तो अगली आवाज हमारे डॉक्टर साहब की है, तो करो उनसे बतकाओ और पूछो अपनी समस्या।
2: नमस्कार विश्वेश्वर जी।
0: नमस्कार सर।
2: बोलिए, आप कैसे, क्या कोई आपकी कोई समस्या है तो बताइए।
0: अपने छोटे पेड़ों से भाई एक बाग को है वो।
2: अच्छा,
0: चीकू को है।
2: अच्छा,
0: सब बाग में इस साल फूल तो आयो लेकिन फल को समस्या ऐसी तो खा रही जैसे झड़ रहा हुई।
2: अच्छा, अभी देखो ये चीकू हमारे रीजन का फल नहीं है, परंतु कुछ किसान लगाए हैं, हमारे भी ऑफिस में लगा है। एक दिन पहले भी मेरे को किसान ने पूछा, सेम समस्या उसी को भी आ रही थी, क्योंकि हमारा जो बुंदेलखंड रीजन है इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है इस समय पे, और फूल इसमें जो चीकू में आते हैं साल भर आते हैं, तो अभी टेम्परेचर इतना बढ़ जा रहा है कि कई फूल गिर रहा है। तो फूल गिरने के लिए एक प्लेनोफिक्स दवाई आती है, उसका छिड़काव करें एक, तो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं आपको खाद उसमें देते रहने होंगे। आपके पास कितने पेड़ है चीकू के?
0: फिलहाल मैं अपने ये कई पेड़ लगा,
2: कोई बात नहीं,
0: वो भी मतलब करीबन वही 4 फुट के आसपास है पेड़।
2: बिल्कुल, कोई बात
0: नहीं, गांव में फूल आया है वो गांव में।
2: अच्छा, वो पहली साल है, कोई बात नहीं, परंतु आपको उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आते हैं उसका एक पैकेट मिलता है, वो देते रहिए, और उसके बाद फिर जब पौधा और बड़ा हो तब अगर गिरे तो फिर प्लेनोफिक्स की दवाई यूज करिए, थोड़ा बोरोन उसमें यूज करिए, ठीक है? तो वो सब चीज यूज करो, क्योंकि हमारी जो मृदा है उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो उनकी कमी की वजह से कई बार फूल गिर जाता है। अभी तो मैं मेन रीजन समझ पा रहा हूँ कि अभी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हाई टेम्परेचर पे वो फल नहीं बन पाएगा। आने वाले टाइम पे इसमें जो चीकू होता है इसमें साल भर फूल चलता रहेगा आपका, ठीक है? तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको साल भर जब फूल चलेगा तो अभी नहीं बनेगा तो बाद में बन जाएगा, परंतु इस समय पे गिरने का मेन समस्या यही है कि तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है हमारे यहाँ पर,
0: तो और फिलहाल में
2: फिर तेज हवाएं चलती मतलब हैं तो इस वजह से भी गिर जाता है। और बताइए,
0: अभी मतलब चला ही रहो फूल को?
2: हाँ जी,
0: जो पोजीशन अनार की,
2: अनार में भी यही समस्या है, क्योंकि फूल अभी बहुत अच्छा आया होगा आपका, क्योंकि गर्मी के टाइम पे उसका फूल अच्छा
0: नहीं,
2: आता है।
0: तो मतलब दो पेड़ों बहुत पुराने हैं वो, मतलब
2: अच्छा,
0: कभी भी आते तो झड़ जाते हैं।
2: अच्छा, तो उसमें फिर आपको जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट का छिड़काव करना पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखिए, क्योंकि अगर पुराना पेड़ है फिर फूल गिर रहे हैं तो। दूसरा, उसमें जो मॉइस्चर लेवल है अनार में बता रहा हूँ, ऐसे नहीं करिए कि 10-15-20-25 दिन अच्छे पानी नहीं मिला फिर एकदम से आपने भर के पानी दे दिया हो खेत में या जो भी पौधे में, तो उससे क्या ना मॉइस्चर का जो फ्लक्चुएशन होता है वो उससे पौधा कई बार फूल गिरा देता है। तो आपको जो मॉइस्चर की जो नमी है उसमें समांतर बनाई रखनी पड़ेगी पेड़ में, जिससे कि वो पौधा बना रहे, और फिर भी अगर फूल गिर रहे हैं तो फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी से है, क्योंकि कई चीज रेस्पॉन्सिबल होती है जिससे फूल गिर जाता है।
0: फिलहाल पानी की कमी तो नहीं, परत ज्यादा
2: पानी की मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पानी कई बार हम ज्यादा दे देते हैं फिर कई दिन तक पानी नहीं मिलता है, तो कभी सूखा रह जाता है, कभी फिर एकदम से ज्यादा दे देते हैं, तो उस चक्कर में फूल गिर जाता है। दो चीज बताइए, तो नमी बनाए रखिए, दूसरा उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व है कैल्शियम बोरोन का छिड़काव करें उसमें तो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है?
1: अपन ने देखो हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में फोन लगाओ, फोन कर भी लाना भैया, अपन को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो जैसे ही बाग लगा रहे हैं तो बाग लगाते समय हमें पौधा जो लेते हैं
1: जी
2: एक अच्छी वैरायटी का पौधा होना चाहिए
1: जी,
2: बीज से लगा हुआ पौधा नहीं होना चाहिए। तो
1: हेलो,
3: हाँ सर,
1: हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है भैया, नमस्कार।
3: मंगल सिंह झांसी से बोले थे, 5 कैसे से हम।
1: अच्छा मंगल सिंह जी, तो अपन हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम सुनते हो?
3: हाँ सुनते हैं सर।
1: चलो, कैसा लगा था अपन को कार्यक्रम?
3: किसान से संबंधित चर्चा होती है उसके लिए।
1: हाँ हाँ, कैसा लगा था अपन को कार्यक्रम?
3: हेलो किसान फोन, तो पसंद आया
1: आपने। बिल्कुल, अपन को हर गुरुवार जो आखिरी महीना की गुरुवार होते है
3: उसमें
1: लोकगीत आउ देंगे, और आज जो अपनी समस्या होते खेती बाड़ी करा तो आप?
3: नहीं सर, खेती बाड़ी हम बिजनेस करते हैं, मतलब मैं जीरो चलाते हैं सर।
1: अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है, तो
3: चौथे गुरुवार में
1: आओ,
3: फोन करेंगे सर।
1: ठीक है ठीक है,
3: ओके
1: सर, नमस्कार। अच्छा डॉक्टर साहब, कछु किसान भैया ने कन भी लगाते हैं कि बीजू पौधा अगर होगा तो उनमें फल बिल्कुल आते ही नहीं है?
2: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ में आता है कुछ में नहीं आता, और देरी से आता है।
1: अच्छा,
2: दिक्कत यह है कि जो फलन का जो किसान जैसे कि ज्यादा समय तक वेट नहीं कर पाता है, तो ग्राफ्टेड और बडेड पौधे जो है तेजी से ग्रो करते हैं, बीजू वाला पौधा स्लो ग्रो करता है, और फलन जो ग्राफ्टेड वाले में जल्दी आता है बीजू वाले में लेट आता है, और बीजू वाले में आपको कई प्रकार के छोटे भी मिल सकता है।
1: कुल मिलाया तो कोई कोनो वैरायटी नहीं है, कोनो भी फल मिल सकता, खट्टो भी हो सकता, मीठो भी हो सकता, बेकार भी हो सकता,
2: वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरा, जब उसके बाद

0: पौधा चयन कर लिया। पौधा लगाते हैं, कई बार किसान भाई देखता है कि हमें बड़े पौधे नर्सरी में देख के आकर्षित हो जाता है, बड़े पौधे लगा देता है
1: जी।
0: बड़े पौधे में कई बार क्या होता है ना कि नर्सरी में जब लगाते हैं तो जड़े गुच्छे में बन जाती है ज्यादा ना, तो इतनी ठीक नहीं। इसलिए किसान भाई मीडियम साइज का पौधा ले, मतलब 2 फीट 3 फीट का ले, उसके बाद ज्यादा बड़ा हाइट ना ले, क्योंकि किसान ज्यादा बड़ा पौधा लेता है जो उसकी पॉलिथीन होती बहुत छोटी होती है तो जड़े उसमें उलझी हुई रहती है, तो जब वो फील्ड में लगाता है तो पौधा स्लो स्लो ग्रो करता है
1: जी जी।
0: और वही पौधा अगर छोटा वाला पौधा अगर लगाता है तो उसकी जड़े छोटी रहेंगी, जब फील्ड में लगेगा तो जड़े जल्दी फैलेंगी
1: जी,
0: और पौधा जल्दी अच्छे से ग्रो करेगा। तो एक तो वो ध्यान रखना चाहिए
1: जी।
0: पौधा लगाने के समय गड्ढे में, मैंने बताया कि गड्ढे में खाद वगैरह जो सब चीज डालना चाहिए वो डालना चाहिए, उसके बाद गड्ढा बंद करने के बाद किसान।
2: तो डॉक्टर साहब जो खाद की अपन बात करें तो इसमें हमारे किसान भैया ने जैविक ही खाद डालेंगे, डीएपी यूरिया या जो
0: थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा?
2: तो डॉक्टर साहब वैसे का हिसाब से हमारे किसान भैया ने प्रति गड्ढा में डाल सकते?
0: जैसे प्रति गड्ढा में हमें गोबर की खाद हमारे को महत्वपूर्ण है, जो कि कार्बनिक पदार्थ और की मात्रा को जमीन में बनाए रखता है
1: जी।
0: तो उसके लिए हमें 15 से 20 किलो पर गड्ढे में डालना पड़ेगा। उसके अलावा हमें नीम की खली 1 से 2 किलो डालनी पड़ेगी
1: जी।
0: सिंगल सुपरफॉस्फेट 500 ग्राम 100 ग्राम के आसपास, म्यूरेट ऑफ पोटाश, फिर अगर जमीन में दीमक की प्रॉब्लम है तो क्लोरोपाइरीफास की डस्ट डालनी पड़ेगी, अगर फंगस वगैरह आता है तो उसके लिए थोड़ा सा 50 से 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर डाल देगा। ये सब चीजें आपके पौधे को स्वास्थ्य बनाए रखेंगे और अच्छे से उसको पोषण देंगे और पौधा अच्छे से ग्रो करेगा।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारे किसान भैया ने पूरा खाद ही खाद डालेंगे जो अपन की कछु मिट्टी जो अपन रख ले बावी में लाने वहां में,
0: जो मिट्टी हमने बाहर निकाली उसी में मिला के डालना है सब
2: जी।
0: जो हमने गड्ढा खोदा, गड्ढे जब खोदते हैं तो आधी मिट्टी एक तरफ रखते हैं, आधी मिट्टी एक तरफ, और गड्ढे को मई जून में जब तेज धूप पड़ती है अच्छे से धूप लगने दे मिट्टी को
2: जी।
0: फिर जब बारिश हो तो उसके आसपास उसमें खाद जो मैंने बताया मिला के फिर उसमें लगाना है। दूसरा, जब भी किसान नया बाग लगा रहा है तो पहले मिट्टी का परीक्षण करवा लें
2: जी। मिट्टी की जांच
0: परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे पता लगेगा कि खेत में किस न्यूट्रिएंट की कमी है, पोषक तत्व कोई ज्यादा है या कम है, तो वो सब उसका पता लग जाएगा। उसकी पीएच कैसी है, तो पीएच एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। पीएच मेंटेन अगर अच्छा, जो हमारे बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ क्षारीय जमीन हो सकती है, एसिडिक तो कम पाई जाती है, तो उसके लिए फिर हम उसमें जिप्सम मिलाते हैं। तो जिप्सम भी उसके प्रति गड्ढे में हमें उसको डालना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से 2 से 2.5 किलो प्रति गड्ढे में वो डालना पड़ेगा अगर क्षारीय ज्यादा है
2: जी।
0: कुछ पौधे ऐसे आते हैं जैसे कि आपके जामुन हुआ, आंवला हुआ और खजूर हुआ, खजूर की खेती भी हमारे किसान भाई यहाँ कर सकते हैं, जैसे गुजरात राजस्थान के किसान भाई कर रहे हैं
2: जी।
0: और खजूर की ये ऐसी फसलें हैं, खजूर जो जामुन जो अधिक क्षारीय मिट्टी में भी हो जाते हैं, कम बंजर भूमि में भी हो जाते हैं, तो किसानों के पास कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन होती है बंजर, उसमें कुछ नहीं लगाते, तो किसान भाई ऐसी फसलें लगा के उसमें आमदनी प्राप्त कर सकता है
2: जी। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब अपन ने बताई। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमारे किसान भैया ने खेती करवा चाहते हैं और बागवानी, वैसे बहुत हद तक हमारे किसान भैया ने मुड़ भी गए बागवानी की तरफ, कैसे एक खेती कर रहे उसमें फायदा नहीं मिली तो हमारे किसान भैया ने बागवानी की तरफ काम भी कर रहे हैं
0: बिल्कुल।
2: तो वैसे डॉक्टर साहब, अगर हमारे किसान भैया कोनो भी किसान एक खेत को चयन करे 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर, तो अगर 1 हेक्टेयर में हमारे किसान भैया ने बागवानी करें तो कितने पौधन की अपन को खरीदने हैं, कितने हो सकते हैं और अपन कितने साल बाद उतने से आमदनी प्राप्त कर सकते हैं?
0: देखो, हर फसलों का जो अलग अलग हिसाब से चलती है, मान लीजिए कुछ फसलें ऐसी होती हैं आपको 2 साल 3 साल में भी आपको फल देने स्टार्ट कर देती हैं
2: जी।
0: कुछ फसलें ऐसी 4-5 साल में देंगी, कुछ ऐसी होती हैं जो 8-7-8 साल भी देती है, तो हमें चयन करना पड़ेगा जल्दी फली फसल लेनी नहीं लेनी है। जैसे एप्पल बेर की बात करें, ड्रैगन फ्रूट की बात करें, तो ये फसलें ऐसी हैं कि आपको 2 साल में ही फलन देना स्टार्ट कर देंगे। एप्पल बेर एक अभी ऐसा बेर आ रहा है जो एप्पल की साइज का होता है, सेम की आकार का होता है, और किसान भाई एक पेड़ से 50 से लेकर 125 किलो एक पेड़ से ले सकता है
2: प्रति पेड़।
0: अच्छे से मैनेज करेगा तो 125 किलो प्रति पेड़ से तक जा सकता है और बड़ा अच्छा साइज का होता है। तो मैनेजमेंट का खेल है, अगर किसान भाई अच्छे से मैनेज करेगा, जमीन में अच्छे से खाद देगा तो अच्छा मिलेगा। कंजूसी किया मैनेज कम किया तो फिर उसको हिसाब से मिलेगा और 2 साल में 2.5 साल में वो फलन देना स्टार्ट कर देगा आपका। ये चीज है। दूसरा, दूरी आप बोल रहे थे कि कितना पेड़ लगेगा
2: जी जी।
0: तो जैसे कि सभी की दूरी अलग अलग दूरी पर लगता है, कुछ फल होते हैं जो कम दूरी पर लगते हैं
2: जी।
0: जैसे बेर हो गया, जाम फल हो गया, आपका सिट नींबू प्रजाति हो गई, ये 5-6 मीटर पे आप इसको लगा सकते हो
2: जी।
0: जैसे कि जामुन हो गया, आंवला हो गया, बेल हो गया, आम हो गया, ये अधिक दूरी पर लगते हैं तो इनके पेड़ कम लगेंगे आपको, तो वो चीज है। जैसे कि 10 मीटर पर लगाओगे तो 100 पेड़ लगेंगे आम के या बेल के
2: जी। बहुत अच्छी बात अपन ने डॉक्टर साहब बताई। तो आशा है कि हमारे किसान भैया ने देखो जो हेलो किसान फोन कार्यक्रम सुन रहे और सुन के देखो जो बागवानी के जो अपन ने जानकारी दी है इस हिसाब से हमारे किसान भैया ने बागवानी करें तो उन्हें अच्छो मुनाफा मिल सके।
0: हमारे किसान भाई मैं जब देख रहा हूँ कि आप बरुआ सागर या झांसी के में कुछ जगह पे लगाए हुए अमरूद के बाग उसमें उकटा रोग की समस्या आ जा रही है, वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं
2: जी।
0: वो जब ट्रैक्टर चला रहे हैं तो पेड़ की जड़ जो तने के पास से ले जाते हैं जिससे जड़ कट जाती है, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन आता है और फिर उसकी वजह से उसमें पौधा सूखना स्टार्ट कर देता है। तो किसान भाई वो ध्यान नहीं देते क्योंकि अगर वो ज्यादा नजदीक से

0: उकाई करते हैं तो इससे नुकसान हो जाता है। तो उकटा की समस्या भी आती है और गहरा लगा देते हैं, कटाई छटाई नहीं करते वो
1: जी।
0: तो कटाई छटाई 2-3 साल में एक बार कर लेनी चाहिए, क्योंकि गहरा जब हो जाता है तो उसमें नीचे इतना दो पेड़ दो लाइनों की कतारों के बीच में पेड़ ऐसे उलझ जाते हैं
1: जी जी।
0: कि जमीन पे प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता है
1: जी।
0: तो कटाई छटाई से क्या है, सूरज का प्रकाश जब होती है तो उसकी कैनोपी होती है, छतरक होता है
1: जी,
0: उसमें अच्छे से जाता है और उसमें कीट और रोग का प्रभाव भी कम होता है
1: जी।
0: हमारे यहाँ बरुआ सागर में देखोगे कि अमरूद के बगीचे देखोगे तो ऐसे उलझे हुए गहरे हो गए
1: बिल्कुल,
0: और उसमें अभी जब मॉइस्चर अभी रहता है तो कीट उसमें ज्यादा अटैक करता है
1: जी जी।
0: वही अगर खुली उसकी छतरक होता उसमें सनलाइट अच्छे से अंदर जाती तो इसमें कीट का प्रभाव कम होता।
1: बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब अपन ने दी। अपन हमारे स्टूडियो में पधारे और किसान भैयन को हेलो किसान के माध्यम से जो अपन ने आज को विषय रखो तो नए बागों की तैयारी उसके बारे में डॉक्टर साहब अपन ने इतनी उम्दा जानकारी दी। आशा है हमारे किसान भैया ने सुने सुन के समझे और जिस तरीका से अपन ने बताया है उस तरीका से हमारे किसान भैया ने बागवानी करें। अपन को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी, सभी को नमस्कार।
2: और देखो पवन भैया, किसान भैयन ने देखो कितने फोन करे हैं और उनने देखो अपने जो भी नए बागन की जो तैयारी विषय है तो ऊपर देखो खूब ही उनने अपने प्रश्न पूछे। और हमारे देखो जो वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक यादव केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी से थे, उनने भी देखो उनकी समस्याओं को बड़ी अच्छी तरह से समाधान बताया।
1: और दीप्ति बहन, अब हम अपन को बता देवे, अपने किसान भैयन को बता देवे कि अपन भी ई कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। ई के लाने करने अपन को फोन और फोन कर भी को समय है हर गुरुवार को दोपहर 2 बजे से लेकर 2:30 तक। और दीप्ति बहन बता दो कार्यक्रम में जुड़ी के लाने किसान भैया को फोन नंबर।
2: बिल्कुल, किसान भैया फोन नंबर लिखो 0510320068।
1: तो ई नंबर पे अपन फोन करके अपने ई कार्यक्रम से जुड़ सका दो और जो भी अपनी खेती संबंधी समस्या है उसको समाधान अपन पा सकता हूँ। तो अब अपन को ई कार्यक्रम हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम से दो आज्ञा। नमस्कार।
2: और पवन भैया देखो अपने किसान भैया से हम चला चला जो जरूर कहें कि छोटे और नए पौधन को लू से बचावे के लाने छप्पर जरूर लगाएं।
1: बिल्कुल।
2: और भैया आप देखो हमारे कार्यक्रम को समय सोई समाप्त हो तो लिखो हमारे कार्यक्रम को पत्र
1: कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी झांसी पिन कोड है 2841 द्वार। एक संगे अपने भैया पवन
2: और दीप्ति बहन की स्वीकार करो।
1: नमस्कार।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी। यह कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित था। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। सूचना: गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन। गृह मंत्रालय भारत सरकार पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करता है। आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल HTTP awards.gov.in के माध्यम से केवल ऑनलाइन ही प्राप्त किया जाएगा। अनुशंसा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2027 है। इस संबंध में वेबसाइट HTTP awards.gov.in के माध्यम से और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सूचना समाप्त हुई। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

शाम 6:35 पर सुनिए का फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। 7:19 पर सुनिए का प्रादेशिक समाचार, जिसे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। 7:31 पर सुनिएगा बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम खुशबू माटी की।

रात्रि 8 बजे और रात 9:15 पर सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8:15 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम

गाने नगमे। रात 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे समय होगा News@9 का। रात 11 बजे सुनिएगा हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात 9:30 पर सुनिएगा फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो झांसी और रात 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। इसी के साथ ही आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण संपन्न होता है।

FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की आवाज में। फिल्म का नाम है संघर्ष। गीत लिखा है समीर ने और संगीत निर्देशन है जतिन ललित का।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत उदित नारायण की आवाज में। फिल्म का नाम है दस्तक। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत निर्देशन है राजेश रोशन।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत कुमार शानू की आवाज में। फिल्म का नाम है 1942 ए लव स्टोरी। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और धुन तैयार की है आरडी वर्मन ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम था ज्वेल थीफ। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत निर्देशन था एसडी वर्मन का। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में। फिल्म का नाम है साजन। गीत लिखा है समीर ने और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम था अनामिका। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन तैयार की थी आरडी वर्मन ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है भावना। शब्द रचना है कैफी आजमी की और संगीत निर्देशन है बप्पी लहरी का।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत उदित नारायण की आवाज में। फिल्म का नाम है और प्यार हो गया। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत निर्देशन है नुसरत फतेह अली खां का।

इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने अब यहीं पर संपन्न होता है। एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब से थोड़ी देर में सुनिएगा प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत। 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, पशुपालक समितियों को एक महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे पूरा कराने का निर्देश दिया है, जिससे मुआवजा जारी किया जा सके। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने, पेड़ गिरने और बिजली के खंभे गिरने की घटनाओं से हुई हैं। इनसे बिजली आपूर्ति और सड़क तथा रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: वहीं मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिलों में प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। चंदौली के अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व राजेश कुमार ने बताया कि नुकसान का आकलन करने के लिए संबंधित अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में तेजी से कार्य कर रहे हैं। जनहानि के प्रकरण में मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को आपदा राहत कोष से लाभ दिलाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
2: हम लोग सभी अवयवों पर, सभी कंपोनेंट्स पर काम कर रहे हैं और जो पोल इत्यादि टूटे हैं उनके मरम्मत, उनको लगवाने जाने का काम जारी है। इसके अलावा जो पेड़ इत्यादि गिरे थे उनको भी हटवाकर जो है यातायात सुचारू कराया गया है। जो मानव मृत्यु के केस हैं उनको भी नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जा रही है और इसी प्रकार जो मकान क्षति हुई है, मकान क्षति में भी नियमानुसार जो भी आर्थिक सहायता बन रही है उसको भी दिलाया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन की बचत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, कार पूलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में संरक्षित 15 लाख से अधिक गोवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट आधारित सामूहिक किचन मॉडल विकसित करने की बात कही, जिससे एलपीजी पर निर्भरता हो सके। लखनऊ में निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वो राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे।
3: अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए, आपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने, काफिला कम करने की अपील के मद्देनजर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने परिषद की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। वहीं कानपुर स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में पेट्रोल डीजल वाहनों के प्रयोग पर कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने आदेश जारी किए हैं। अब विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और दूसरे अधिकारी परिसर में आधिकारिक कार्यों के लिए ई कार्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने के भी

0: निर्देश दिए गए हैं।
1: हमने अपने स्टूडेंट्स को भी कहा है कि जो साइकिल या ई कार्ड का उपयोग, हम लोगों ने ये भी एक नियम निकाला है कि जो लोग शहर में जा रहे हैं तो ई व्हीकल सही, तो पेट्रोल बचाना और ऊर्जा को बचाना ये विश्वविद्यालय का अपना कर्तव्य।
0: इसी क्रम में अयोध्या नगर निगम ने तय किया है कि अब सप्ताह में एक दिन यानी हर सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इसके साथ ही महापौर का एस्कॉर्ट वाहन भी बंद कर दिया गया है। वाराणसी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल बचाओ जागरूकता अभियान चलाया। नई सड़क स्थित कोदई चौकी से इलेक्ट्रिक स्कूटी रैली निकाली गई और पेट्रोल की बचत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद स्थित 8वीं एनडीआरएफ बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वीर जवानों को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया और 6 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई शिलान्यास और 1 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि एनडीआरएफ ने 2 दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कार्य किया गया है बल्कि प्राकृतिक आपदा को कम करके उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
2: आज देश भर में कहीं पर भी जाते हैं आपदा सेवा सदैव सर्वत्र इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए एनडीआरएफ के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश, जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में आज स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है और प्रदेश सरकार पशुपालक समितियों को मजबूत करते हुए एक माह में ही भुगतान करने का काम करेगी।
3: निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है और इसको उत्तर प्रदेश में हम सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन है और भारत का हिस्सा उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अच्छा है। आज हम दुग्ध महोत्सव के माध्यम से पशुपालकों को दुग्ध समितियों को मजबूत करते हुए महीने के अंदर ही हम दुग्ध उत्पादकों का भुगतान कराने का काम करेंगे और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी हो।
0: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का लखनऊ के बैकुंठ धाम में आज अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, धर्मेन्द्र यादव और सैफई परिवार के सदस्यों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि अब 17 मई कर दी गई है। परिषद के अनुसार 11 मई तक कुल प्रवेश क्षमता 2,71,093 सीटों के सापेक्ष 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत, 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन, पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा पशुपालक समितियों को एक महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार।

0: प्लेटो का कथन है। बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम खुशबू माटी की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला लोकगीत शायदा कुरैशी के स्वर में।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये लोकगीत रामनाथ अहिरवार के स्वर में। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला लोकगीत शायदा कुरैशी के स्वर में।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम खुशबू माटी की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला लोकगीत अमृत सिंह बुंदेला के स्वर में।
1: कहे साई की।

श्रोताओं, इसी के साथ ही बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम खुशबू माटी की अब यहीं पर संपन्न होता है। एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब से थोड़ी देर में सुनिएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आपको ने
1: मैं लक्ष्मी हूँ, वही लक्ष्मी जिसकी तुम आरती कर रहे थे।
0: लक्ष्मी देवी माँ, प्रणाम, साष्टांग प्रणाम।
1: मैं तुमसे प्रसन्न हूँ गरीब दास, तुम्हें वरदान देने आई हूँ। मांगो, क्या मांगते हो?
0: मैं क्या मांगू देवी माँ? मैं
1: धन संपदा और ऐश्वर्य की देवी हूँ गरीब दास, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो।
0: लेकिन देवी माता, मैंने तो इस बारे में कुछ सोचा भी नहीं। मैं
1: अरे, तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है गरीब दास? मुझे देखकर तुम्हारी आंखें क्यों चौंधिया रही हैं? तुम घबरा क्यों रहे हो?
0: आपका रूप ही ऐसा है देवी माँ, ऐसी चमक, ऐसी रोशनी कभी देखी नहीं।
1: घबराओ नहीं गरीब दास, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो जी चाहे मांग सकते हो।
0: देवी माँ क्षमा करना, इस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मुझे सोचने का तनिक समय दीजिए।
1: गरीब दास, मैं तुम्हें रात भर का समय देती हूँ, खूब सोच लो। सुबह का सूरज निकलते ही मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी।
0: कृपा देवी माँ, आपकी बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत कृपा। धनिया, अरे ओ धनिया, है सो गई, अरे उठ।

0: दो हैं। और ये तो बेहोश पड़ी है, लक्ष्मी जी को देख के बेहोश हो गई। धनिया, ओ धनिया, अरे आंखें खोल धनिया।
1: अरे वो औरत गई?
0: औरत? अरे वो औरत नहीं धनिया, देवी जी थी, साक्षात लक्ष्मी माँ।
1: लक्ष्मी जी?
0: हाँ माता लक्ष्मी, हम दोनों से बहुत प्रसन्न है, वरदान देने आई थी।
1: वरदान?
0: हाँ सवेरे फिर आएंगी, पता था क्या मैं क्या मांगूंगा उनसे?
1: हाय दया, कितनी तेज रोशनी निकल रही थी उनके बदन से, मुझे तो मुरझा आ गई।
0: अरे मेरा भी तो यही हाल था धनिया, तभी तो घबराहट के मारे मैं कुछ मांग ही ना पाया। अब तू ही बता क्या मांगू, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
1: मैं बताऊं?
0: ओहो तो जल्दी से बोल।
1: सुनो, तुम कहते थे ना मेरे कानों में झुन झुन करने वाला चांदी का झुमका बहुत अच्छा लगेगा, तो मांग लो झुमका।
0: ओफो तू जब भी सोचेगी अपने झुमके की सोचेगी। अरे इतनी बड़ी देवी से इतनी छोटी चीज मांगी जाती है कहीं? अरे झुमका तो मैं खुद भी खरीद सकता हूँ तेरे लिए।
1: हाँ हाँ वो तो मैं 5 साल से देख ही रही हूँ, जब भी कहती हूँ तो कह देती हूँ पैसे नहीं है, और आज देवी जी खुद देने आई रही है और तुम मांगना ही नहीं चाहते। मैं खूब जानती हूँ तुम मुझे मेरा झुमका लाना ही नहीं चाहते।
0: अरे धनिया, ए धनिया, तू समझती क्यों नहीं, देवी जी वरदान देने रोज रोज तो आएंगी नहीं, एक बार मांगना है तो कोई ऐसी चीज क्यों ना मांगे जिससे हमारे कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। है झुमका तो बस कानों में पड़ा पड़ा झुनझुन करता रहेगा।
1: झुनझुन की आवाज कितनी मीठी लगती है, लेकिन तुम्हें तो दारू की बोतल भली लगती है ना, वही तो मांगोगे देवी जी से?
0: अरे धनिया तू कैसी बातें करती है, देवी जी से भला दारू की बोतल मांगूंगा? राम राम राम, अरे भगवान मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ।
1: क्या सोच रहे हो?
0: मैं सोच रहा हूँ धनिया, अपने पास घर नहीं है, गर्मी में हम धूप से जलते रहते हैं, बारिश में पानी में भीगते रहते हैं, जाड़े में ठंड में ठिठुरते रहते हैं, क्यों ना हम देवी जी से एक छत वाला और 4 दीवारों वाला घर मांग ले। बस हम धूप में ना जलेंगे, न पानी में भीगेंगे, न सर्दी में ठिठुरेंगे।
1: हाँ ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सोची, घर।
0: हाँ देवी जी आएंगे तो मैं उनसे यही कहूंगा, हे देवी माँ हमें घर दे दो, एक छत वाला 4 दीवारों वाला एक घर, ठीक है ना धनिया?
1: हाँ बिल्कुल ठीक है, घर।
0: हाँ तो अब तू सो जा, मैं भी सोता हूँ, देवी जी से हम घर मांग लेंगे, हम घर मांग लेंगे। धनिया सो गई क्या?
1: नहीं तो।
0: ससुरी नींद नहीं आ रही, जाने कहाँ उड़ गई है।
1: एक बात कहूँ?
0: बोल।
1: लक्ष्मी जी से जो भी मांगोगे वही मिलेगा?
0: जो मांगेंगे वही मिलेगा।
1: तो फिर उनसे ऐसी कोई चीज क्यों ना मांग ले जो थानेदार से भी बड़ी हो?
0: यही तो मैं भी सोच रहा हूँ धनिया। अरे हाँ याद आया, एक दिन मैं कलेक्टर साहब की कोठी में घास छील रहा था, मैंने देखा कि अपने थानेदार साहब कलेक्टर साहब के आगे हाथ बांध के खड़े हैं, और कलेक्टर साहब गिटर पिटर जाने क्या चिल्ला रहे हैं।
1: अच्छा?
0: अरे हर गली फूफू करने वाला वो थानेदार बेचारा कलेक्टर साहब के सामने जैसे भीगी बिल्ली बना हुआ था। अरे सुन तो, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि देवी जी से कहूँ कि हे देवी जी मुझे कलेक्टर साहब बना दो, फिर तो थानेदार भी मुझ जैसे गरीब दास को सलाम ठोकेंगे। अरे अपनी कोठी होगी, गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे, और मेरी धनिया, ओए मेरी धनिया रानी की तरह रहेगी।
1: और मेरे सोने के झुमके?
0: अरे धनिया झुमके तो झुमके, मैं तेरे लिए सोने का चंदर हार ले दूंगा।
1: हाय सोने का चंदर हार?
0: हाँ चंदर हार। अब तू सो जा, सवेरे नींद ना खुली तो देवी जी आके लौट जाएंगी, सो जा।
1: अरे हाँ हाँ तो फिर तुम ही सो जाओ, जल्दी से सो जाओ।
0: थानेदार? क्या थानेदार तो सलाम मारेगा।
1: सो जाओ सो जाओ।
0: धनिया धनिया सो गई क्या?
1: नहीं तो।
0: ससुरी नींद क्यों नहीं आ रही? धनिया मेरा तो दिमाग ही घूमने लगा है।
1: अब क्या सोचने लग गए?
0: सोच रहा हूँ देवी जी रोज रोज तो वरदान दे नहीं आएंगी, जो कुछ मांग

0: लेना है, एक ही बार मांग लो। कोई चीज ऐसी नहीं जो कलेक्टर साहब से भी बड़ी हो।
1: ए? कलेक्टर साहब से भी बड़ी?
0: हाँ धनिया, तुझे याद है एक दिन हम मैदान में घास छील रहे थे, इस सड़क से एक मोटर निकली थी, मोटर में झंडा लगा हुआ था,
1: झंडा,
0: और सड़क के दोनों तरफ दर्शन करने वालों की भीड़ लगी हुई थी, और मोटर में एक आदमी बैठा हुआ था, मालूम है कौन था वो?
1: कौन था?
0: सेठ करोड़ीमल। सेठ करोड़ीमल के पास चार मोटरें हैं, चार कोठियां हैं, चार बीवियां हैं, चार,
1: हाय दया, चार,
0: हाँ धनिया, सब कुछ चार चार। अरे रे, क्या हुआ धनिया, क्या हुआ?
1: तुम सेठ करोड़ीमल बन जाओगे तो तुम भी चार बीवियां रखोगे?
0: नहीं रे, मेरी तो एक धनिया ही चार के बराबर है। मेरा मतलब था धनिया, मैं सेठ करोड़ीमल बन जाऊंगा तो मेरे पास भी चार मोटरें होंगी, चार कोठियां होंगी, चार,
1: हाय हाय, सब कुछ चार चार, मेरे झुमके भी चार चार,
0: तेरे झुमके भी चार चार,
1: और चंदर हार भी चार चार,
0: ओ चंदर हार भी चार चार,
1: हाय हाय।
0: लेकिन धनिया सुन, अब भी समय है, खूब अच्छी तरह सोच ले।
1: अरे मैं क्या सोचूं, मेरा तो सिर दुखने लगा सोचते सोचते।
0: सारी रात गुजर गई, हम सो भी ना सके। देवी लक्ष्मी माँ आप आ भी गई?
2: हाँ, मैं आ गई गरीब दास, मांगो, क्या मांगते हो?
0: देवी माता क्षमा, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
2: कुछ नहीं चाहिए? ये क्या कह रहे हो गरीब दास?
0: मैं सच कह रहा हूँ देवी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गरीब दास को बस सुख की नींद दे दो, शांति और संतोष का वर दे दो देवी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे।
2: लेकिन क्यों?
0: देवी जी, देवी माँ, मोटर बंगला, हीरे जवाहरात और राजा महाराजा की बातें सोच सोच के हम दोनों सारी रात सो नहीं सके, आंखों से नींद उड़ गई। सिर्फ सोचने से यह हाल है, तो ये सब कुछ मिल जाने पर क्या होगा, हमारी कितनी रातों की नींद उड़ जाएगी। नहीं नहीं देवी माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी रूखी सूखी और ये आसमान की छत कबूल है। सोने का वो बंद पिंजरा हमें नहीं चाहिए जिसकी दीवारों के भीतर हमारी सांस घुट जाए, हमारी नींद उड़ जाए, हमारा सुख चैन लुट जाए।
2: गरीब दास, तुम घसियारे हो लेकिन बहुत समझदार हो, मैं तुम्हारे उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हूँ। लो, अपनी ओर से मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ, इससे न तुम्हारा सुख चैन लुटेगा, न नींद उड़ेगी, न सांस घुटेगी।
0: ये क्या है देवी?
2: ये ज्ञान का दिया है जो कभी नहीं बुझता, इसमें प्यार का तेल भरा हुआ है जो कभी समाप्त नहीं होता। तेल में डूबी हुई बाती सत्य की बाती है जो कभी नहीं चुकती, इसमें से निकलने वाली मंगल ज्योति कभी नहीं बुझती, इस ज्योत से न केवल तुम्हारे वरन समस्त मानवता के मन में ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति और संतोष का उजाला होगा। अंधेरे को भगाने के लिए फिर तुम्हें मिट्टी के ये हजार हजार दिए नहीं जलाने होंगे, ये एक अकेला ज्ञान दीपक ही बहुत होगा। इसे

0: संभाल के रखना।
1: धन्य हो देवी माँ, लक्ष्मी माता धन्य हो। मैं आपका दिया हुआ ये ज्ञान दीपक सदा संभाल के रखूंगा और इससे सारी दुनिया में उजाला करता रहूंगा, सारी दुनिया में उजाला करता रहूंगा।
0: तथास्तु। निरक्षरता अंधेरा है, साक्षरता प्रकाश। साक्षर बनो, ज्ञानी बनो, ज्ञान के दीप प्रकाशित होंगे तभी वास्तव में इस देश में दिवाली होगी। दिवाली।

मंगल वरदान हवा महल के अंतर्गत अभी आपने कुंभेश श्रीवास्तव द्वारा लिखित और पुरुषोत्तम दारवेकर द्वारा प्रस्तुत ये नाटिका सुनी।

0: ये है
1: FM 103 पर ही आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुराने नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत SD वर्मन की आवाज में। फिल्म का नाम है गाइड। गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत निर्देशन है SD वर्मन का।

किसी के ना आई, हाथ किसी के ना आई, कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुराने नगमे। श्रोताओं, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कुछ पल सुकून के मिल जाएं तो दिन बन जाता है, और सुकून का दूसरा नाम है हमारे पुराने नगमे। तो आइए सुनते हैं एक और पुराना नगमा मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुराने नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है संगम। शब्द रचना है हसरत जयपुरी की और धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है तलाश। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सवारा है एसडी वर्मन ने।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुराने नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है किनारा। शब्द रचना है गुलजार की और संगीत निर्देशन है आरडी वर्मन का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म हकीकत से। गीत लिखा था कैफी आजमी ने और संगीत निर्देशन था मदन मोहन का। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम पुराने नगमे अब यहीं पर संपन्न होता है। एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब से थोड़ी देर में सुनिएगा समाचार संध्या, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा सांझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त

0: संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
2: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने वीडी सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सीपीएम के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें एसपी वेलुमणी के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।

0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
1: एन इंडियन डो
2: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
1: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
3: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
4: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
3: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए शित कुमार वैद्यान।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए।

0: व्यवसाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
1: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
0: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आईं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पीचिंग में वार्ता और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces special intensive division phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat.

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। गुलजार का लिखा, आजी बर्मन का संगीतबद्ध किया फिल्म घर से।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: आशा भोसले का गाया ये गीत सुनिए। शहरयार ने इस गीत को लिखा है, खय्याम का संगीत है, फिल्म का नाम उमराओ जान।

0: उमराव जान फिल्म से ये गीत आपने अभी सुना, शहरयार का लिखा, खय्याम के संगीत से सजा, आशा भोसले की आवाज में।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, इस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने कितनी उड़ा

आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपके लिए की ये आखिरी प्रस्तुति। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। शागिर्द फिल्म का गीत है। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

0: शागिर्द फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत से सजा। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके लिए यहीं संपन्न होता है।
1: FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। प्रस्तुत है फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो झांसी। स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग है शिवानी वर्मा का और प्रस्तुत करता है अंजलि कुमारी।
2: हेलो झांसी।

0: Chauncey.
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी झांसी केंद्र से प्रस्तुत है आपका अपना प्यारा सा और दिलों को जोड़ने वाला कार्यक्रम हेलो झांसी। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त शिवानी वर्मा और अगले एक घंटे तक हम साथ रहेंगे बातों, मुस्कुराहटों और आपके प्यारे संदेशों के साथ। श्रोताओं, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल अगर अपनों के साथ बीत जाएं तो दिन और खूबसूरत हो जाता है और यही खूबसूरती लेकर हेलो झांसी हर बार आपके बीच में आता है। देश के अलग अलग

0: शहरों से आप हमसे जुड़ते हैं, अपने मन की बातें साझा करते हैं और यही अपनापन इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए आज की इस प्यारी सी मुलाकात की शुरुआत करते हैं एक सुंदर विचार के साथ। जहां शब्दों में मिठास हो वहां रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। और अब समय है आपसे जुड़ने का, क्योंकि फोन लाइनें खुल चुकी हैं। देखते हैं पहला कॉल किसका आ रहा है। हेलो।
1: हेलो जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है
1: जी? मैं ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया।
0: कैसे हैं आप
1: जी? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। आकाशवाणी झांसी का मैं नियमित श्रोता हूँ
0: जी। और जी, आपको आकाशवाणी झांसी के कार्यक्रम कैसे लगते हैं?
1: जी, आकाशवाणी झांसी के कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं। फोन इन प्रोग्राम में ज्यादा पार्टिसिपेट करता हूँ मैं।
0: अच्छा,
1: जैसे हमारा एक ग्रुप बना हुआ है ना, हेलो फरमाइश रेडिया एकता ग्रुप
0: जी,
1: उसके माध्यम से हमें मतलब आकाशवाणी के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी मिलती रहती है।
0: अच्छा, आप लोगों ने एक ग्रुप बना के रखा है?
1: हाँ, उसमें बताऊं दीदी आपको है ना, हमारे हर राज्य के श्रोता है, जैसे उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ऐसे सभी दोस्त उसमें जुड़े हुए हैं।
0: अरे वाह, वो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हेलो झांसी आप लोग सुन रहे हैं और बाकी जगह को भी सुन रहे हैं आप है?
1: जी, हमने ग्रुप बना रखा है ना।
0: हाँ।
1: तो जब भी कोई कार्यक्रम मतलब लाइव चलता है या रिकॉर्डेड होता है
0: जी,
1: या रिकॉर्डिंग मतलब प्रसारित होती है, तो मतलब पहले से ग्रुप में मतलब लोग अपडेट कर रहे थे सभी श्रोता जिसको कार्यक्रम के बारे में पता होता है वो।
0: ये तो बहुत अच्छी बात
1: है। तो दीदी मैं जैसे आपको बताऊँ ना, झांसी की रानी के बारे में एक थोड़ी सी एक लाइन सुनाऊं मैं आपको?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए
1: जी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता है
0: जी।
1: सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: क्या बात है, आपने तो बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां सुनाई और मजा आ गया। उज्जैन जो फेमस है जिस चीज के लिए, थोड़ा सा आप बताइए।
1: जी बिल्कुल, उज्जैन महाकालेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और खास करके सावन महीने में अपनी अर्जी एक बार बाबा के दरबार में लग जाती है ना
0: जी,
1: तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और उन्हें मतलब बार बार वहाँ पे बाबा के दरबार में आने का मौका मिलता है
0: जी। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? और
1: जी मैं बताऊँ दीदी, उस फिल्म का नाम है कुली नंबर वन और गाने के बोले जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। तो मैं सभी श्रोताओं से यही विनती करूंगा, आग्रह करूंगा, जब उनका मन करे महाकालेश्वर बाबा के दरबार में आइए, एक बार अर्जी लगाइए और अपनी मन की इच्छा पूरी करिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, हेलो झांसी में बहुत बहुत स्वागत
1: है आपका। परवाना बोल रहे हैं नाहरमन टोला जिला मधुबनी बिहार से।
0: जी
1: कैसे हैं दीदी आप?
0: बढ़िया है, आप बताएं।
1: हाँ आप लोग
0: मधुबनी बिहार में कैसा मौसम है?
1: हम तो दिल्ली में है अभी।
0: अच्छा आप दिल्ली में हैं? हाँ दिल्ली में तो गर्मी ही हो रही होगी।
1: ये दिल्ली में काम करते हैं यहाँ। आज हमको जीने की राह का गाना सुना दीजिए, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार दीदी, मैं अमर सिंह बोल रहा हूँ, छबड़ा राजस्थान से, दिलवाली पटार से।
0: जी कैसा मौसम है राजस्थान में? समय तो गर्मी हो रही होगी।
1: हाँ बहुत जोर से लू पड़ रही है, बहुत जोर गर्मी है।
0: हाँ सभी जगह गर्मी है। अच्छा वहाँ कोई आसपास पर्यटन स्थल है घूमने के लिए?
1: हाँ घूमने के लिए है यहाँ पर, मतलब में जैसे गुगोर है, छबड़ा का किला है।
0: क्या खास है वहाँ पे?
1: ये बड़ा बड़ा स्थान है, मतलब घूमने के लिए जगह है ये।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: तो कुछ देवताओं की जगह है, मतलब देवत की
0: जी। और आकाशवाणी झांसी के कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: हाँ सुनते हैं दीदी, लगातार सुन रहे हैं, मतलब साल भी सुन लगे।
0: कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: आज सात रंग के सपने पिक्चर का गाना सुनना है। चलती है तो चलते मेरे संग ले ले साथ या साथ, साथ को आत्मा, वाली पिक्चर है जी।
0: बिल्कुल सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो झांसी में। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम रामचंद माटेरिया। हाँ, मैं बहुत दूर से बोल रहा हूँ, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से बोल रहा हूँ।
0: बताएं कैसा मौसम है छत्तीसगढ़ में इस समय?
1: मौसम में अभी परिवर्तन आ गया।

0: बीच में ठंडकता थी रात को।
1: अच्छा।
0: और अभी तो कल परसों से तो वापस वही गर्मी आ गई है।
1: छत्तीसगढ़ में क्या खास है जहाँ आप रहते हैं?
0: धान ज्यादा उत्पादन होता है, धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में धान की सबसे ज्यादा धमतरी में पैदावार होती है। और दूसरा जो है यहाँ का खाने पीने में जो होटलों में चलता है बड़ा चलता है, वो पार्टियां वगैरह शादियां होती है जैसे बैनर लगता है ना ऊपर स्टॉल के ऊपर लिखते हैं डोसा ऐसा उस टाइप का, तो इसमें जो स्टॉल लगता है तो उसमें लिखा जाता है धमतरी का राजा, तो समझ जाते हैं यहाँ की बड़ा है।
1: अच्छा, वहाँ पे जैसे छत्तीसगढ़ में हम लोग घूमने जाए अगर कहीं तो छत्तीसगढ़ में
0: कौन सा पर्यटन स्थल है ना? यहाँ पर है मारमसेली डैम है और 14-15 किलोमीटर की दूरी में गंगरेल डैम है जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा हैंडओवर किया गया था।
1: अच्छा,
0: पब्लिक के लिए 1980-84 में।
1: चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: आप सुनेगा है प्रीत यहाँ की रीत सदा, मैं नित्य नित्य शीशे झुकाता हूँ और भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इसको सुनाएंगे मैडम?
1: बिल्कुल,
0: पूरा पश्चिम का है।
1: आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: शैलजा सिंह।
1: हेलो झांसी में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते,
0: मैं राम प्रसाद कुशवाहा पुरातन विद्या सागर से बोल रहा हूँ।
1: क्या करते हैं राम प्रसाद जी?
0: दुकान पे काम करते हैं।
1: अच्छा, कौन सी दुकान पे काम करते हैं?
0: कीटनाशक की।
1: कौन कौन से कीटनाशक मिलते हैं आपके यहाँ?
0: वो तो कीटनाशक है, दवाओं का स्प्रे
1: खेती के लिए। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: आज सुनना चाहते हैं एक विदाई वाला गीत है, वो वाला सुना दीजिए मेरा।
1: कौन सा?
0: पापा मैं छोटी से बड़ी क्यों हो गई।
1: बिल्कुल, सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: पापा।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: बोल रहा हूँ जी।
0: रमेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं रमेश जी?
1: जी मैं फरीदाबाद बल्लभगढ़ से बोल रहा हूँ।
0: बताएं क्या करते हैं आप?
1: बस यहाँ कंपनी में काम करते हैं और अच्छा। आपका कार्यक्रम झांसी का रेडियो सुनते रहते हैं।
0: अच्छा, कौन सी कंपनी में काम करते हैं आप?
1: प्राइवेट कंपनी है, उसी में काम करता हूँ।
0: अच्छा, कौन से गीत सुनना चाहते हैं
1: आज? हमको गाना सुना दीजिए, जुगनी जुगनी वाला, यही गाना सुनना है।
0: अच्छा, बिल्कुल सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हाँ जी नमस्कार शिवानी जी, आपको और आपकी पूरी झांसी रेडियो टीम को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हेलो झांसी में, क्या नाम है आपका?
1: मैं रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका ही रेडियो मित्र उदय भान पाल बोल रहा हूँ।
0: उदय भान जी, बताएं कैसे हैं आप?
1: बस बहन जी हम ठीक हैं। और आप
0: क्या
1: सभी के
0: करते हैं? और
1: लिए
0: आप?
1: वैसे अपना खेती बाड़ी का काम है और एक छोटा सा कंप्यूटर का भी दुकान है।
0: कंप्यूटर की
1: तो
0: दुकान है आपकी?
1: जी
0: तो
1: उसका भी
0: कंप्यूटर की दुकान
1: ऑनलाइन।
0: में क्या आप जो जॉब के फॉर्म निकलते हैं वो फिल करवाते हैं क्या?
1: जी।
0: अच्छा, और भी सरकारी योजनाओं के भी फॉर्म
1: हाँ
0: फिल करते
1: जो
0: होंगे
1: भी
0: आप?
1: जैसे किसी का कागजात निकालना, आधार कार्ड वो करना, ऐसे मतलब छोटे मोटे काम सब
0: अपडेट
1: करते।
0: करना, आधार कार्ड अपडेट
1: जी जी जी
0: करना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्र
0: कौन सी खेती है आपकी?
1: खेती बाड़ी में अपना ये गेहूं का होता है, मूंगफली होती है अपने इधर, और
0: अच्छा,
1: सरसों जो और अपना जव जवा जिसको बोलते हैं उसका भी खेती होती है।
0: अच्छा बुंदेलखंड में तो कहते हैं कि जैसे बहुत सूखा रहता है, तो पानी की क्या व्यवस्था रहे आपके यहाँ?
1: पानी की व्यवस्था तो बहन जी ये है कि अब ट्यूबवेल की सुविधा हो चुकी है, तो हर खेत पर ट्यूबवेल वगैरह लगे हैं।
0: अच्छा, और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: जी आज बहन जी गीत तो वो वाला सुनवा दीजिए, शादी ब्याह का माहौल चल रहा है तो कोई बेटी की विदाई पर गीत यदि सुनवा दें तो वो सबसे अच्छा रहेगा। बाबुल की दुआएं देती जा जसो इसको सुखी संसार में,
0: बिल्कुल आपकी पसंद
1: क्योंकि
0: का।
1: आज मोहल्ले में एक बेटी की विदाई हो रही। क्या है, बच्चियां ही ऐसी होती हैं जो पराए घर का धन होती हैं, और जब वो जाती हैं तो सच में रोना आ जाता है चाहे कोई माँ बाप को।
0: पराए घर का धन कहाँ होती है, दोनों तरफ ध्यान रखती हैं बच्चियां जो होती हैं।
1: जी जी नहीं वो तो दोनों कुलों की शान होती है,
0: हाँ
1: लेकिन कहावत है ना, कहते हैं कि छोटे से जैसे बच्चियों को पालते हैं और जब वो बड़ी होती हैं तो फिर दूसरे के घर चली जाती हैं, ऐसा कहा जाता है, वो पुरानी
0: लेकिन
1: परंपरा
0: बेटियां
1: है।
0: ही जो होती हैं जो पूरे परिवार को सभी को जोड़ के रखती हैं।
1: बिल्कुल
0: चलिए
1: बिल्कुल
0: सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार, हेलो झांसी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है?
1: राजेंद्र गंगवार बोल रहे हैं मैम जी।
0: राजेंद्र गंगवार, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: अतिथि बरेली, उत्तर प्रदेश से।
0: बरेली से बोल रहे हैं, क्या करते हैं राजेंद्र जी?
1: जरी का काम करते हैं मैम।
0: जरी का?
1: हाँ जी।
0: जो कपड़ों पे जरी का काम होता है?
1: हाँ जी, मोती सितारा, जो कोरा दबकाल और जो क्या कहते हैं रेशम का कसब का जो काम होता है वही।
0: अरे वाह, तो आप जरी का काम किस चीज में, साड़ियों में, सूट में, सभी में?
1: हाँ मैम जी, सभी में कर लेते हैं।
0: अच्छा, कैसे कैसे आप अपना काम ये करते हैं कि जरी का? बहुत सुंदर लगता है ये तो।
1: हाँ जी, अगर रेशम और कसब का काम किया जाए तो अच्छा लगता है, और उसमें अगर रेशम के साथ और कसब के साथ में अगर छोटा सा शीशा लग जाए तब तो और ही सुंदर लगता है, चाहे साड़ी हो या सूट हो।
0: क्या बात है, तो आप कब से ये काम कर रहे हैं?
1: मैम जी करते लगभग हो गए हैं, 10-15 साल हो चुके हैं।
0: अच्छा, तो आपका तो बहुत लंबा अनुभव है इस काम में।
1: हाँ जी।
0: तो कहाँ कहाँ, मतलब साड़ियाँ आपकी और सूट वगैरह ये सप्लाई होते होंगे दूसरी जगह भी और सिटियों में भी?
1: नहीं नहीं मैम जी, ऐसा है हम वीडियो से काम उठाकर अपना काम बनवाते हैं गांव में, फिर वहीं भेज देते हैं, जैसे जयपुर हुआ, दिल्ली हुई।
0: अच्छा, जयपुर, दिल्ली, यहाँ यहाँ आपका ये सब बनाया हुआ जाता है?
1: हाँ जी।
0: और रेडियो से कैसे लगाव है आपका?
1: रेडियो से तो मैम जी, रेडियो से तो इतना लगाव है कि बगैर सुने चैन ही नहीं पड़ता है। सुबह से जब खोल लेते हैं तो शाम के 11:10 तक चलाते रहते हैं, जब तक समाचार
0: कंटिन्यू चलाते हैं आप लोग। और
1: जी,
0: आपका एक तरफ जरी का काम और एक तरफ रेडियो चलता रहता है, तो दोनों।
1: हाँ जी,
0: आपको डिस्टर्ब नहीं होता है कोई काम में?
1: नहीं मैम जी, यही तो मैं बोलना चाह रहा था कि रेडियो एक तरफ स्टार्ट करके रख दिया, अपना काम करते रहो, इससे हमें दिक्कत भी नहीं होती, काम भी हमारा दोगुना होता है।
0: बिल्कुल, मतलब आप लोग सारे कार्यक्रम सुनते हैं यानी। और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: हाँ जी, मूवी का तो नाम रहेगा राजा, और रंग में एक सॉन्ग है जो मोहम्मद रफी की आवाज में, वो खिड़की वाली तू कल फिर आना।
0: बहुत ही प्यारा गीत है ये, वो खिड़की वाली तू कल फिर आना।
1: हाँ जी।
0: चलिए, कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो झांसी।
0: हेलो झांसी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं, क्या
1: हाँ,
0: नाम है आपका?
1: मेरा नाम है सिद्धार्थ गोंडाने और मैं राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ।
0: बताएं आप सिद्धार्थ जी क्या करते हैं?
1: मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, साथ में मेरा पर्सनल प्राइवेट एक जॉब है, सरकारी कार्यालय में काम करता हूँ और साथ में रेडियो का भी काफी शौक है मुझे। लगभग 25 वर्षों से रेडियो के कार्यक्रम सुनते आ रहा हूँ, देश भर के विभिन्न केंद्रों पर अक्सर मेरी फरमाइश रहती है।
0: अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि आप
1: और
0: इतने सारे काम भी कर रहे हैं और साथ में रेडियो भी सुनते हैं।
1: साथ साथ में मेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी चलती है, यूपीएससी और एमपीएससी लेवल की हमारे महाराष्ट्र में।
0: तो आपकी रेडियो कुछ मदद कर पाता है आपकी प्रिपरेशन में?
1: बिल्कुल, बहुत सारे आकाशवाणी के कार्यक्रम में जो युवावाणी कार्यक्रम रहते हैं उसमें ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है, देश विदेश और जो भी कुछ घटनाएं चलती है देश भर में उसकी जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। लाइव अपडेट जो रहते हैं साइंस के बारे में, कुछ वो नई नई जानकारी जो कुछ चेंजिंग होता रहता है, अपडेट रहता है, वो हमें आकाशवाणी के माध्यम से हमें जानकारी मिलती रहती है।
0: मतलब आप अपनी तैयारी कर पाते हैं, रेडियो में भी इतनी सारी जानकारी लेते हैं तो उसके साथ साथ तैयारी अच्छे से कर रहे हैं आप। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: आज मैं जो सुनूंगा फिल्म का नाम है राधा का संगम, इस फिल्म का गीत है ओ राधा,
0: ओ राधा
1: सुनना था
0: तेरा श्याम
1: ओ
0: है।
1: राधा।
0: बहुत अच्छी चॉइस आपकी और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद
1: हाँ
0: हेलो झांसी में कॉल करने के लिए।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहा है?
1: जी जयराम लाहौरिया जी बोल रहे हैं।
0: कहाँ से बोल रहे हैं जयराम लाहौरिया जी?
1: जयराम लाहौरिया बोल रहे हैं, रानीपुर से।
0: क्या करते हैं जयराम जी?
1: जयराम लाहौरिया जी टीचर हैं।
0: टीचर हैं, क्या बात है
1: जी।
0: कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं आप?
1: प्राइमरी में है, कुमरार।

0: है 1 से 5 तक।
1: तो कौन सा विषय है आपका?
0: 1 से 5 तक ऑल सब्जेक्ट आ जाते हैं।
1: अच्छा, सभी विषय पढ़ाते होंगे आप तो?
0: जी जी।
1: तो बच्चे आपसे बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे, आप कौन सा विषय ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं अपने आप में, आपको मतलब जो आपको लगे कि हाँ अच्छा विषय पढ़ाते हैं बताइए थोड़ा उसके बारे में।
0: पर्यावरण पर बच्चों को सिखाते हैं।
1: पर्यावरण के बारे में बच्चों को क्या सिखा रहे हैं आप?
0: जी, पर्यावरण के बारे में अभी तो हम लोग सिखा रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर जो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा
1: जी,
0: है
1: जी,
0: तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, पर्यावरण में हम लोग सजगता, पेड़ लगाएं ज्यादा से ज्यादा और इसको हरित उससे जोड़े ताकि इस पृथ्वी के जो वातावरण का हमारा जो बढ़ रहा है तापमान उसको किसी भी अवस्था में तो कम किया जा सके।
1: बिल्कुल, हमारे पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ रहा है। सही है, तो आप बच्चों से पेड़ लगवाने के लिए अपील कर रहे हैं, सभी चीजों के बारे में बता रहे हैं आप। रेडियो कब से सुन रहे हैं आप?
0: रेडियो बचपन से ही सुनते हैं।
1: अच्छा, कौन से कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगते हैं आकाशवाणी झांसी के?
0: शाम को जो आपका यो बाड़ी आता है
1: जी,
0: उसको सुनते हैं, किसानों का कार्यक्रम आता है।
1: सभी कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
0: जी जी जी, और संस्कृति से, लोक संगीत से जुड़ा हुआ प्रोग्राम आता है,
1: खुशबू माटी की।
0: खुशबू माटी की,
1: चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: वंदना कार्यक्रम सुनते ही रहते हैं।
1: अच्छा, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: ये एक किशोर दा का एक गाना है, फिल्म का नाम है पवित्र पापी, उसका गाना है, मैं थोड़ा गुनगुनाऊं?
1: हाँ बिल्कुल।
0: मुकड़ा गलत हो सकता है।
1: अरे कोई बात नहीं, आप गुनगुनाइए।

0: हेलो
1: हेलो झांसी,
0: तो उसके साथ साथ तैयारी अच्छे से कर रहे हैं आप। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: आज मैं गीत सुनूंगा, फिल्म का नाम है राधा का संगम, इस फिल्म का गीत है ओ राधा।
0: ओ राधा सुनना था, तेरा शाम है। बहुत अच्छी चॉइस आपकी, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद हेलो झांसी में कॉल करने के लिए।

0: जुड़ा हुआ प्रोग्राम आता है
1: खुशबू माटी की।
0: खुशबू माटी की,
1: चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: वंदना का एकदम सुनते ही रहते हैं।
1: अच्छा, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: ये किशोर दा का एक गाना है, फिल्म का नाम है पवित्र पापी, उसका गाना है। मैं थोड़ा गुनगुनाऊं?
1: हाँ बिल्कुल।
0: मुकड़ा गलत हो सकता है।
1: अरे कोई बात नहीं, आप गुनगुनाइए।
0: तेरी दुनिया से

0: श्रोताओं, बातों बातों में आज का ये खूबसूरत सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है, लेकिन आपकी बातें, आपका स्नेह और आपकी प्यारी आवाजें हमारे दिलों में यूं ही गूंजती रहेंगी। अगर आप भी हेलो झांसी से जुड़ना चाहते हैं तो हर रविवार और बुधवार दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक रिकॉर्डिंग का समय हमें फोन जरूर कीजिएगा। हमारा नंबर है 0510-232-0068 और सुनना न भूलिएगा हेलो झांसी का प्रसारण प्रत्येक सोमवार और गुरुवार रात्रि 9:30 से 10:30 तक आकाशवाणी झांसी केंद्र से। श्रोताओं, आप हमारे आकाशवाणी झांसी के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं और हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सुझाव व प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा करते रहिए। एक विनम्र अनुरोध भी है ताकि सभी श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सके, कृपया 2 महीने बाद ही दोबारा कॉल करें। और जाते जाते बस इतना ही कहेंगे, मीठे शब्द और सच्ची मुस्कान हर दूरी को अपनेपन में बदल देती है। तो दीजिए अनुमति, फिर होगी मुलाकात हेलो झांसी में ढेर सारी बातों मुस्कुराहटों के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि। आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी।
1: हेलो झांसी।

0: Chelsea.
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो झांसी। स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग था शिवानी वर्मा का और प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी। एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये पहली गजल हरिहरन की आवाज में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली गजल चंदन दास की आवाज में। कलाम है पयाम सईद का,

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली गजल राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की आवाज में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली गजल शैला गुलवाड़ी की आवाज में।

इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब से थोड़ी देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार, तत्पश्चात सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता

0: शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमरीका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS Foreign Ministers' meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers' meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, help countries reduce the risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for